मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। आज दिन है शुक्रवार, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 5 जून सन 2026। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 5:55 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की ये पहली सभा।

सुबह की पावन बेला और चिड़ियों की चहचहाहट के साथ आइए करते हैं दिन की शुरुआत। तो नमस्कार, लखनऊ में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करता है आकाशवाणी लखनऊ।

श्रोता हूँ, मीडियम वेव 401.61 मीटर पर इस वक्त आप हैं आकाशवाणी लखनऊ के साथ। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए आइए रुख करते हैं आकाशवाणी दिल्ली की ओर, जहां से अब से बस थोड़ी ही देर बाद यानी 6 बजे से रिले किया जाएगा हिंदी समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। श्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येविट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत यूके विजन 2035 के विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून को 1973 से हुई थी। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। खेती किसानी से जुड़ी जानकारियों के लिए आइए चलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर। तो प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा, जिसमें आज लेजर लैंड लेवलर से भूमि समतलीकरण के बारे में जानकारी दे रहे हैं इंजीनियर रमेश चंद्र मौर्य, और आपसे इस विषय पर भेंट कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय। आइए सुनते हैं।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय आप खरीफ उत्पादन की तैयारी में हैं, खरीफ अभियान की तैयारी में। जहां आपकी समतल भूमि नहीं है, वहां भूमि के समतलीकरण की तैयारी में होंगे। आजकल कई तरह के उन्नत कृषि यंत्र आ गए हैं, जिनसे आप अपने खेत को समतल बना सकते हैं, जिससे जो भी आपके संसाधन हैं, पानी का प्रबंधन होगा, आपकी प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा। तो लेजर लैंड लेवलर एक नया उन्नत कृषि यंत्र है, जिससे आप अपने खेत को समतल कर सकते हैं। इससे बहुत सारे फायदे हैं। तो लेजर लैंड लेवलर से भूमि समतलीकरण कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र धौरा उन्नाव से वैज्ञानिक इंजीनियर रमेश चंद्र मौर्य साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। मौर्य साहब, ये बताएं, जो भूमि का समतलीकरण है, ये आवश्यक क्यों है?
2: आज के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो जितने भी कृषि भूमि पर संसाधन हैं, जैसे पानी, बीज, खाद, ईंधन, इसका उचित ढंग से प्रयोग करना बहुत आवश्यक हो गया है
1: जी।
2: इन सभी संसाधनों का सीमित रूप से उपयोग करके अधिक उत्पादन करना आज के कृषि की मांग है।
1: हाँ।
2: भूमि समतलीकरण से कृषक भूमि पर उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग को काफी हद तक कम किया जा सकता है, जिससे कृषकों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से फायदा होता है। यदि किसी कृषक की भूमि असमतल है,
1: हाँ।
2: यदि उसकी कृषि भूमि का लेवल 2 इंच से ऊपर या नीचे है,
1: हाँ।
2: तो उसको संसाधनों का उपयोग फसल उत्पादन करने में ज्यादा करना पड़ता है
1: जी। यानी संसाधनों का दुरुपयोग होता है
2: जी, जी, जी।
1: संसाधन जरूरत से ज्यादा लगते हैं
2: जी, जी, जी।
1: और उसमें लागत भी बढ़ती है
2: जी, बिल्कुल। जैसा उसको, जैसे मान लिया कि उसने यदि कोई पानी लगाया अपने खेत पर, तो यदि 2 इंच से भी अगर ऊंचा नीचा है, तो उसको अपने खेत में 2 लाख लीटर पानी ज्यादा लगाना पड़ेगा। जब ज्यादा पानी लगाना पड़ेगा, तो फिर निश्चित तौर से उसका ईंधन जो है वो ज्यादा लगेगा। और यही नहीं, जब पानी ज्यादा लगता है तो जहाँ पर निचाई है तो वहाँ पर पानी भरेगा, और जहाँ पर ऊंचाई है वहाँ पर पानी जल्दी सूख जाएगा। तो दोनों ही स्थितियों में होता क्या है कि फसल उत्पादन पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा
1: और वांछित लाभ भी नहीं मिलेगा, बल्कि नुकसान होगा
2: जी। जी बिल्कुल, नुकसान होगा। इसका एक और नुकसान ये भी रहेगा, जहाँ पर पानी भर गया,
1: हाँ।
2: वहाँ पर खरपतवार बहुत ज्यादा हो जाएगी
1: जी।
2: खरपतवार ज्यादा होगी तो फसल की जो वृद्धि में उसमें रोक लगेगी, कीट पतंगे बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और निश्चित तौर से वो फसल उत्पादन को प्रभावित।
1: और जो बीज और खाद है
2: जी,
1: उसका भी तो असमान वितरण हो जाएगा
2: जी। जी बिल्कुल, असमान वितरण होता है। जहाँ पर नीचा है खेत, वहाँ पर कंसंट्रेट हो जाता है, और जहाँ पर ऊंचा,
1: मतलब खाद बह करके चली जाएगी
2: जी। जी जी, ऐसी संभावनाएं ज्यादा रहती हैं ऐसी। और जहाँ पर नीचा है, वहाँ पर जो बीज हम रोपित करते हैं, कुछ समय बाद वो काफी गहराई पर रोपित होता है बीज।
1: तो मौर्य साहब, ये जो खेत असमतल हो जाता है
2: जी,
1: ये होता कैसे?
2: देखिए, भूमि असमतल होने के मुख्य कारण तो है यंत्रों का अनुचित ढंग से उपयोग।
1: हाँ।
2: क्योंकि कृषक जो यंत्रों का उपयोग ट्रैक्टर के माध्यम से करते हैं, तो होता क्या है कि कहीं पर कम आवश्यकता है, लेकिन कृषक क्या है कि खेती को या भूमि को अच्छी दिखने के लिए उसको कई बार चला देता है,
1: जरूरत से ज्यादा चला देता है।
2: जरूरत से ज्यादा चलाने के कारण क्या है कि भूमि का संतुलन बिगड़ जाता है। अगर मान लिया, ये जरूरी है कि कृषक अपने खेत पर जो ट्रैक्टर है वो 5 किलोमीटर से ज्यादा प्रति एकड़ ना चलाए।
1: अगर स्पीड
2: नहीं, उसका रन जो है ट्रैक्टर का जो रन है 5 किलोमीटर प्रति एकड़, उससे ज्यादा ना चलाए एक बार।
1: अच्छा, अगर उससे ज्यादा चलाया तो कहीं न कहीं,
2: उससे ज्यादा चलाएंगे तो जो भूमि है वो कॉम्पैक्ट होना शुरू हो जाती है, दबाव हो जाएगी।
1: हाँ।
2: अब जब पानी डालेंगे या फिर खेत की
1: सिंचाई
2: करेंगे या वर्षा ज्यादा हुई, तो पानी जमीन के अंदर नहीं जाएगा, ऊपर से बह जाएगा। जब ऊपर से बह जाएगा तो अपने साथ साथ मिट्टी भी ले जाता है। जब मिट्टी ले जाएगा तो निश्चित तौर से भूमि का समतलीकरण बिगड़ जाएगा।
1: यानी बारिश या सिंचाई जल के साथ जो खेत की मलाई है
2: जी,
1: वो
2: जी,
1: भी
2: जी,
1: बह जाएगी।
2: वो भी बह जाएगी सर।
1: तो असमतल का कारण भी हम लोगों ने जान लिया
2: जी।
1: अब ये बताएं कि अगर खेत समतल होता है तो उसका फसल पर

0: क्या असर होता है?
1: देखिए, जैसे अभी बताया, भूमि समतलीकरण से कृषक लगभग 25 से 40% जो है पानी की बचत कर लेते हैं।
0: जो सबसे बड़ी बचत,
1: सबसे बड़ी बचत है पानी की बचत होने के कारण उतना ही आप ईंधन की बचत कर लेंगे।
0: हाँ
1: ठीक है, समतलीकरण से क्या है कि आपका जो खरपतवार है वो 40% तक घट जाती है,
0: अपने आप कम हो जाएगा।
1: अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि भाई जहाँ पर पानी भरेगा वहां पर ज्यादा संभावनाएं होती हैं खरपतवार होने की, तो वो खत्म हो जाती है। अब
0: जी
1: जब खरपतवार खत्म होगी तो 10 से 15% जो है आपका कीट और व्याधि जो है वो खत्म हो जाता है, और
0: जी
1: इन सबका जो परिणाम रहेगा वो 20% तक फसल उत्पादन में आ जाता है।
0: और खाद की मात्रा भी घटेगी।
1: खाद की मात्रा भी सर 10 से 15% खाद और बीज, ठीक
0: जी
1: है, उसकी दक्षता बढ़ जाती है 10 से 15%।
0: अच्छा,
1: जी
0: तो डॉक्टर साहब, जहाँ खेत असमतल है उसका समतलीकरण कैसे हो सकता है
1: यस
0: और ये करना कब चाहिए?
1: जी, ये जो दो तरीके हैं, पहले तो देसी कराहे के माध्यम से कृषक भाई
0: करते रहे
1: करते
0: हैं,
1: रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है कि सटीकता नहीं आती है,
0: माने
1: नहीं
0: 16 आना काम
1: जी
0: नहीं बन
1: नहीं बन
0: पाता है।
1: पाता है। लेकिन जो लैंड लेजर लेबलर है वो एक उन्नत कृषि यंत्र है, और उससे बिल्कुल सटीक आपका जो खेत है बिल्कुल बराबर हो जाता है। और यदि कोई कृषक चाहे कि थोड़ा सा हम उसको ढाल दे दें तो
0: हाँ,
1: ढाल भी उसमें उस हिसाब से बन जाता है।
0: मतलब आपकी मनचाही जो समतलीकरण है वो हो
1: जी
0: जाएगा, जैसा
1: जी
0: चाहेंगे वैसा।
1: जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा। इसमें लैंड लेजर लेबलर चलाने के लिए 55 हॉर्स पावर का जो है ट्रैक्टर चाहिए होता है।
0: यानी 55 हॉर्स पावर का
1: जी जी
0: ट्रैक्टर चाहिए।
1: वो जरूरी होता है। लैंड लेजर लेबलर में दो प्रमुख घटक होते हैं, इसको कंप्यूटर कराहा भी बोलते हैं कृषक भाई।
0: हाँ
1: तो कंप्यूटर घटक होता है और एक मैकेनिकल घटक होता है। तो कंप्यूटर वाले से जो एक ट्राईपॉड उसमें होता है जो खेत के एक कोने
0: सेट
1: में
0: करते हैं।
1: सेट करते हैं, एक खेत के एक कोने में लगा देते हैं, और वहां से जो है लेजर किरणें जो है वहां से वो लेजर किरणें ट्रांसमिट करता है।
0: जी
1: और ट्रैक्टर के पीछे जो लगा कराहा है उसमें एक रिसीवर लगा होता है जो उस किरण,
0: डिवाइस है।
1: हाँ जी डिवाइस, तो उसको रिसीव करता है। ट्रैक्टर ऑपरेटर के बगल में जो कंट्रोल पैनल होता है उसके माध्यम से वो जो कंप्यूटर कराहा है वो ऊंचा नीचा होने लगता है।
2: लेजर लैंड लेवलर से भूमि समतलीकरण, इस विषय पर अभी इंजीनियर रमेश चंद्र मौर्य जानकारी दे रहे थे और इस विषय पर इनसे भेंट कर रहे थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि चर्चा अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण, और अब प्रस्तुत है गांधी चर्चा।
3: गांधी चर्चा, गांधी चर्चा में सुनिए बापू के विचार।
4: गांधी जी के अनुसार सा विद्या या विमुक्ति है, यानी जो मुक्ति के योग्य बनाए वो विद्या, बाकी सब अविद्या। अतः जो चित्त की शुद्धि न करे, मन और इंद्रियों को वश में रखना न सिखाए, निर्भयता और स्वावलंबन पैदा न करे, निर्वाह का साधन न बताए और गुलामी से छूटने और आजाद रहने का हौसला और सामर्थ्य न उपजाए, उस शिक्षा में चाहे जितनी जानकारी का खजाना, तार्किक कुशलता और भाषा पांडित्य मौजूद हो, वो शिक्षा नहीं है या अधूरी शिक्षा ही है। गांधी जी का मानना था कि 80 से 85% लोगों के जीवन की आवश्यकताओं का विचार करने के बजाय मुट्ठी भर मनुष्यों की आवश्यकताओं अथवा राज्य के थोड़े से विभागों की आवश्यकताओं को ही ध्यान में रखकर दी जाने वाली शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा हो नहीं सकती, बल्कि गलत शिक्षा होने से ये अविद्या ही है। उनका मानना था कि ऐसी शिक्षा ने शिक्षित और अशिक्षित के बीच एक गहरी खाई खोद दी है और विद्वानों को जनता का अगुआ, पथ प्रदर्शक और प्रतिनिधि बनाने के बजाय जनता से विलग हो जाने वाला, जनता के जीवन और भावनाओं को न समझने वाला और उनका पक्ष उपस्थित करने के अयोग्य बना दिया है। इस शिक्षा ने अपना महत्व बढ़ाने के लिए भवनों, साधनों, पुस्तकों, मृत तृष्णा की भांति दूर से लुभावने लगने वाले लाभों की आशाओं और चटक मटक वगैरह का आडंबर रचाकर जनता को कर्ज में डुबो दिया है। गांधी जी का मानना था कि ऐसी शिक्षा ने लोगों के अंदर वहम पैदा कर दिए हैं, जैसे अक्षर ज्ञान और शिक्षा एक ही है और उसके बिना शिक्षा हो ही नहीं सकती। इस शिक्षा ने जनता को धर्म से विमुख किया है और अनेक पीढ़ियों से पोषित धर्म तथा संयम के संस्कारों को मिटा डालने का ही काम किया है। उनका मानना था कि चित्त शुद्धि के महत्व के अंग ईश्वर, गुरु, बड़े बूढ़ों में भक्ति, नीतिमय जीवन का आग्रह और संयम तथा तप में श्रद्धा, इन सभी विषयों में आधुनिक शिक्षा ने पढ़े लिखों को संशक और नास्तिक बना देने की दिशा में यत्न किया है। महात्मा गांधी के अनुसार वर्तमान शिक्षा शैली ने भोग और संपत्ति में ही इतनी श्रद्धा उत्पन्न कर

0: दी है कि उनके कम होने के डर से ही शिक्षित व्यक्ति डर जाता है और स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले धर्म के आचरण में असमर्थता प्रकट करता है। गांधी जी का ये स्पष्ट मानना था कि शिक्षा से निर्वाह का प्रश्न हल होना चाहिए, अतः उद्योग धंधों की शिक्षा शिक्षण का प्रधान अंग होना चाहिए। लिखने पढ़ने का ज्ञान ना होते हुए भी महात्मा गांधी का मानना था कि मनुष्य गिनना सीख सकता है, अपने उद्योग धंधे संबंधी प्राथमिक विज्ञान प्राप्त कर सकता है, साहित्य समझ सकता है, सुन सकता है, उसे कंठस्थ कर सकता है और शक्तिशाली हो तो उसकी रचना भी कर सकता है। इसके सिवा उसमें सत्य की लगन हो तो ईश्वर का ज्ञान भी वो बहुत आसानी से प्राप्त कर सकता है। गांधी जी का मानना था कि बालकों की शिक्षा का श्री गणेश अक्षर ज्ञान से नहीं बल्कि सफाई की शिक्षा से होना चाहिए। बालक को अक्षर ज्ञान तो दिया ही जाए, लेकिन उसे अपने हाथ, पांव, नाक, नाखून इत्यादि की साफ सफाई को रखना भी सिखाया जाए। इसके बाद कहानियों और भजनों द्वारा धर्म का ज्ञान उसे दिया जाए। प्रत्यक्ष अवलोकन से पदार्थ विज्ञान, वनस्पतियों और भूमि तथा आकाश का ज्ञान दिया जाए तथा प्रत्यक्ष पदार्थों से गणित में प्रवेश कराया जाए। इस तरह लिखना पढ़ना आने के पहले उसे तीसरी चौथी पोथी तक का ज्ञान करा दिया जाए। अनेक भजन, श्लोक, कविताएं उसे कंठाग्र करा के उच्चारण शुद्धि करा ली जाए और नाना प्रकार के साहित्य बच्चों को कंठस्थ करा दिया जाए। गांधी जी का यही मानना था कि ज्ञान का मूल स्रोत पुस्तकों में नहीं बल्कि अवलोकन, अनुभव, विचार शक्ति में है और इसके भूल जाने से हम पुस्तक के ज्ञानी को बहुत महत्व देते हैं।
1: इसके साथ ही आज की गांधी चर्चा संपन्न होती है।
2: अभी आप सुन रही थी गांधी चर्चा मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण और अब प्रस्तुत है आस्था और प्रार्थना से परिपूर्ण कार्यक्रम आराधना।

हे भोलेनाथ, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी माया अपरंपार है, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। यदि प्रभु की कृपा दृष्टि पानी है तो आइए चलते हैं प्रभु के धाम और जपते हैं प्रभु नाम।

हे ईश्वर, हमें सद्बुद्धि दे। तू हमारे रोम रोम में बसा है, बस पहचानने की बुद्धि दे। हमें अपने अंतर्मन पर संयम रखने की क्षमता दे। हमें अपने आशीर्वाद से शीतलता व सहनशीलता प्रदान कर, ताकि हम अपने प्रभु का नाम जीवन भर जपते रहें।

भी खाली हाथ वापस नहीं लौटाती। किस्मत के मारों का माता रानी ही बेड़ा पार लगाती हैं। हे माता, आज आप संपूर्ण जगत की जननी हैं। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन।

हमारा जीवन तो बहते पानी के समान है। अगर रास्ते में किसी को शीतलता दे पाए तो हमारा सौभाग्य है। आइए अपने जीवन को जनहित के काम में लगा दें, क्योंकि जो समय व्यर्थ चला जाता है वो कभी वापस लौट कर नहीं आता।

श्रोताओं, हम सभी पर ईश्वर की कृपा यूं ही बनी रहे और हम सभी का दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा हो, इसी शुभेच्छा के साथ आज का भक्तिमय कार्यक्रम आराधना यहीं समाप्त होता है।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से आज का संगीतमय प्रसंग।

अवध के राज सिंहासन पर बैठना अस्वीकार करते हुए भरत ने अपने हृदय में धधकती जिस ज्वाला और पश्चाताप की व्यथा कथा गुरुजनों को सुनाई, उससे सबके हृदय में मर्मांतक पीड़ा के साथ एक आनंद का संचार भी हुआ। श्री राम के प्रेम रूपी अमृत से सने भरत के प्रिय वचन सभी के हृदय में दहकती रामविरा की ज्वाला को शांत करने वाले सिद्ध हुए। सबने भरत को मुक्त कंठ से श्री रामचंद्र के प्रेम की प्रतिमूर्ति मानकर उनके वन जाने के लिए सहमति प्रकट की। भरत के इस निश्चय से जैसे शोक सागर में डूबी अयोध्या नगरी को एक सहारा मिल गया। सबके हृदय में ऐसे आनंद का संचार हुआ जैसे मेघों की गर्जना से चातक और मोर आनंद विभोर हो उठते हैं। भरत का जीवन धन्य है, इस उद्गार के साथ सभी उनके शील और स्नेह की प्रशंसा करते नहीं आघाते।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज का संगीतमय प्रसंग। स्वर थे सुरेश वाडेकर के और संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। मीडियम वेव 401.61 मीटर पर आप सुन रही हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
4: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
5: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। श्रोताओं, सुबह के 6:55 होने को हैं। अब से बस थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले संस्कृत समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: सोनकर हमें बताने जा रही हैं विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रकृति के संग स्वास्थ्य के रंग इस विषय पर। आइए सुनते हैं।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं आज हम एक ऐसे दिन की बात करेंगे जो हर साल पूरी दुनिया को एक जिम्मेदारी की याद दिलाता है, वो जिम्मेदारी जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। आज है 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस। ये सिर्फ पेड़ों, पानी या जानवरों के संरक्षण का दिन नहीं है बल्कि एक ऐसा अवसर है जब हमें अपने जीवन की उस जड़ की ओर ध्यान देना होता है जिससे हमारी हर सांस हर कदम जुड़ा है, यानी कि हमारी प्रकृति। जब हम सेहत की बात करते हैं तो अक्सर ध्यान शरीर पर होता है, खाना क्या खाएं, व्यायाम कितना करें, नींद कितनी लें, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जिस धूप और छाया में हम पलते हैं, वही हमारे स्वास्थ्य की सबसे पहली कड़ी है। अगर हमारी धरती बीमार हो रही है तो हम भी कितनी ही दवाइयां क्यों न लें, पूरी तरह से स्वस्थ कभी नहीं हो सकते। विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने का उद्देश्य भी यही है, हमें ये समझाना कि हमारा स्वास्थ्य हमारी प्रकृति की सेहत से जुड़ा है। हवा में जहर होगा तो हमारे फेफड़े भी थकेंगे, पानी दूषित होगा तो शरीर में बीमारियां घर करेंगी, मिट्टी कमजोर होगी तो अन्न में पौष्टिकता घटेगी। ये एक सीधा संबंध है प्रकृति और शरीर का, पर्यावरण और स्वास्थ्य का। आज हम जब चारों ओर बढ़ते तापमान, अनियमित बारिश, प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों की चर्चा करते हैं तो ये सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि चेतावनी भी है। खेतों की मिट्टी सूख रही है, तालाबों का पानी घट रहा है और हवा में सांस लेना दिन ब दिन मुश्किल हो रहा है। शहरों में तो सुबह की हवा भी शुद्ध नहीं रही और ये बदलाव न केवल हमारे आसपास के दृश्य को बदल रहे हैं बल्कि हमारे शरीर की भीतरी दुनिया को भी प्रभावित कर रहे हैं। बच्चों में अस्थमा, बड़ों में हाई ब्लड प्रेशर, बढ़ती एलर्जी, तनाव और थकावट, ये सब सिर्फ खान पान की वजह से ही नहीं है, एक बड़ा कारण वो पर्यावरण है जिसमें हम दिन भर सांस लेते हैं। यही वजह है कि अब सेहत की चर्चा में पर्यावरण को शामिल करना अनिवार्य हो गया है। अगर हम पौधों की बात करें तो ये केवल ऑक्सीजन देने वाले जीव नहीं हैं, इनकी उपस्थिति हमारे मन को शांति देती है, हमारी आँखों को आराम देती है और हमारे घरों को एक सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। एक छोटा सा तुलसी का पौधा, एक मनी प्लांट या एक नीम का पेड़, ये सभी हमारे स्वास्थ्य की दिशा में बड़ा योगदान देते हैं। और जब ये पौधे मिलकर एक हरित वातावरण बनाते हैं तो ये न केवल प्रदूषण को कम करता है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करता है। अब सवाल उठता है, हम क्या कर सकते हैं, इस भागती दौड़ती जिंदगी में हम पर्यावरण की सेवा कैसे करें? इसका उत्तर है, छोटे छोटे कामों से शुरुआत करें। प्लास्टिक की थैलियों की जगह कपड़े के थैले इस्तेमाल करें। अपने घर में एक छोटा किचन गार्डन बनाएं। हर साल एक पेड़ लगाएं। गाड़ी की जगह कभी कभी साइकिल चलाएं और बच्चों को भी प्रकृति से जोड़ने वाले खेतों की ओर प्रेरित करें। ये छोटे प्रयास मिलकर बड़ा परिवर्तन लाते हैं। इस पर्यावरण दिवस पर ये भी जरूरी है कि हम प्रकृति को उपभोग की चीज नहीं बल्कि जीवन दायिनी साथी के रूप में देखें। जैसे हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं वैसे ही प्रकृति की भी करनी होगी, क्योंकि वो भी हमें बिना किसी शर्त के जीवन देती है। अगर हम आज उसके आशीर्वाद को सहेजेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी स्वस्थ, सुरक्षित और संतुलित जीवन जी पाएंगी। आज की स्वास्थ्य चर्चा में मैं आपको ये सोचने को आमंत्रित करती हूँ कि अगली बार जब आप किसी पेड़ के नीचे बैठें, किसी साफ झरने का पानी पिएं या सुबह की ताजी हवा में सांस लें तो प्रकृति को धन्यवाद जरूर कहें और साथ ही ये संकल्प भी लें कि हम अपने जीवन में ऐसे कार्य करेंगे जिससे प्रकृति को बल मिले और हमारी सेहत को सार्थक आधार। श्रोताओं, विश्व पर्यावरण दिवस सिर्फ एक दिन नहीं है, ये एक दिशा है, एक सतत चेतना। अगर हम इस दिशा में बढ़ेंगे तो आने वाला हर पल हमारे लिए और इस धरती के लिए एक नई सुबह बन सकता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक प्रकृति को अपनाइए और स्वास्थ्य को सजाइए। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति, सभी को नमस्कार।
2: नीले गगन के तले धरती का प्यार पले।
0: प्रकृति के संग

स्वास्थ्य के रंग विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अभी आप सुन रहे थे नीना सोनकर से ये जानकारी स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। अब आइए डालते हैं एक नजर आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर। रात्रि 11:10 पर हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे महिला सशक्तिकरण अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्री इस विषय पर। न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण का अनुप्रसारण समय रहेगा 10:10 का। जिले की हलचल आप सुन सकते हैं 9:15 से, जिसमें आज आप सुनेंगे अयोध्या और गौतम बुद्ध नगर जिलों की हलचल। 9:30 का वक्त होगा उर्दू कार्यक्रम का। आज की पेशकश होगी आकाशवाणी लखनऊ के मरकज से, जिसमें आज बदलता मौसम बढ़ती बीमारियां के मुतालिक गुफ्तगू होगी। आज के मेहमान होंगे डॉक्टर जगदम्बा दुबे और डॉक्टर मोहम्मद अहमद। समनुदेशिति होगी सैयद मोहम्मद उमेर की। विश्व पर्यावरण दिवस इस विषय पर विविधा प्रोग्राम में 7:10 से आपके साथ होंगी सीमा शाही।

महिलाओं के लिए अपराजिता कार्यक्रम के अंतर्गत आज दोपहर 1:15 से चर्चा होगी विश्व पर्यावरण दिवस पर हरियाली है तो खुशहाली है इस विषय पर। साथ ही महिलाएं सुनेंगी पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली पर केंद्रित बोए उम्मीद के बीज और बचाएं अमृत सा पानी इस विषय पर। मंजरी उपाध्याय से प्रशंसा गुप्ता द्वारा की गई बातचीत आज इसी कार्यक्रम में महिलाएं सुनेंगी। रात्रि 8 बजे से हम लेकर हाजिर होंगे हिंदी कार्यक्रम जिसमें आज प्रसारित की जाएगी विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष भेंटवार्ता। भेंटवार्ता का विषय रहेगा जलवायु के लिए वर्तमान समय।

शाम 6:50 पर खेती किसानी कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारे किसान भाई सुनेंगे कृषि समाचार पर आधारित किसान डायरी, आलेख एवं वाचन अमरेंद्र सहाय अमर का और संपादन होगा डॉक्टर सुशील कुमार राय का। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में रात्रि 10:30 से आज आप आनंद लेंगे पंडित राजेंद्र प्रशंसा के बांसुरी वादन का, राग होगा मारवा।

तो श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। और श्रोताओं नमस्कार, लखनऊ के इस खास सेगमेंट में अब प्रस्तुत है विविधा।

नमस्कार। लखनऊ के इस खास सेगमेंट में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, आभार। विविधा, ये खास प्रोग्राम लेकर आज हाजिर हूँ मैं सीमा शाही। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो केवल हमारे वर्तमान ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। विषय है विश्व पर्यावरण दिवस।

जी हाँ, हर साल 5 जून को पूरे विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये दिन पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और लोगों को प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराने के उद्देश्य से मनाया जाता है। जी हाँ, पर्यावरण केवल हमारे आसपास का वातावरण ही नहीं है, बल्कि ये वो आधार है जिस पर संपूर्ण जीवन टिका हुआ है।

पृथ्वी पर मौजूद वायु, जल, वन, मिट्टी, पर्वत, नदियाँ और जैव विविधता मिलकर हमारे पर्यावरण का निर्माण करते हैं। यही प्राकृतिक संसाधन मानव जीवन के साथ साथ सभी जीव जंतुओं और वनस्पतियों के अस्तित्व का आधार है। इसीलिए कहा जाता है कि पर्यावरण की सुरक्षा केवल एक आवश्यकता नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक जिम्मेदारी भी है।

आज विज्ञान और तकनीक के इस युग में विकास की गति लगातार बढ़ रही है। बड़े बड़े उद्योग, बड़ी जनसंख्या, शहरीकरण और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से पर्यावरण के सामने अनेक चुनौतियां खड़ी कर दी गई हैं। वनों की कटाई, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, प्लास्टिक कचरा और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं भी आज पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुकी हैं। दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव सिर्फ प्रकृति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका सीधा असर मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। दूषित वायु श्वास संबंधी रोगों को बढ़ाती है, वहीं प्रदूषित जल अनेक बीमारियों का कारण बनता है और लगातार बदलता जलवायु चक्र कृषि और जीवन दोनों को प्रभावित करता है।

दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस हमें ये सोचने का अवसर देता है कि हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे कौन से छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं जिनसे पर्यावरण संरक्षण में योगदान दिया जा सके। तो आइए इस विषय पर गौर करते हैं। अगर हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, पानी की बचत करें, बिजली का सोच समझ कर उपयोग करें, प्लास्टिक का कम प्रयोग करें और साथ ही स्वच्छता को अपनाएं, तो हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। क्यों, सही कहा ना? भारत की संस्कृति में प्रकृति को सदैव पूजनीय माना गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने वृक्षों, नदियों और पर्वतों को सम्मान देने की परंपरा विकसित की है। पीपल, बरगद, तुलसी और नीम जैसे वृक्षों को सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना गया है। यह हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है कि हम प्रकृति को माता के समान मानकर उसका सम्मान करें। और दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि पृथ्वी हमारे पूर्वजों की विरासत नहीं बल्कि

0: आने वाली पीढ़ियों की अमानत है, और इस अमानत को बचाने के लिए यदि आज हम पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे तो भविष्य में प्राकृतिक संसाधनों का संकट और अधिक गहरा हो सकता है ना? तो दोस्तों, ये हमेशा याद रखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस का संदेश केवल एक दिन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि ये हमारे जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। जब प्रत्येक व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण को अपना कर्तव्य समझेगा, तभी एक स्वच्छ, हरित और सुरक्षित भविष्य का निर्माण संभव होगा।
1: तो

अंत में चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूंगी कि प्रकृति की रक्षा ही मानवता की सुरक्षा है। आइए हम सभी ये संकल्प लें कि पर्यावरण संरक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और बहुत ही सुंदर पृथ्वी छोड़ने का प्रयास करेंगे। तो इसी प्रेरणादायक विचार के साथ आज के विविधा कार्यक्रम से सीमा शाही को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रही थी नमस्कार लखनऊ का ये खास प्रोग्राम विविधा। मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। अब से बस थोड़ी देर में आप सुनेंगे गोरखपुर केंद्र से रिले प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य

0: समाचार। वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक के पहले दिन संस्कृति आधारित सतत विकास पर हुआ मंथन। ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएसी, एसडीआरएफ और यूपीएसएसएफ के साथ आधुनिकीकरण, क्षमता विस्तार और भावी कार्य योजनाओं सहित कई बिंदुओं को लेकर की समीक्षा बैठक। सुरक्षा बलों की प्रशिक्षण व्यवस्था को और अधिक व्यावहारिक व तकनीक आधारित बनाने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में करेंगे बायो युग ग्रीन कमांड का शुभारंभ। बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देगी यह पहल। और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए शुरू की फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली। अब समाचार विस्तार से। वाराणसी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की शुरुआत हो गई। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। बैठक की अध्यक्षता कर रहे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल ने बताया कि इस आयोजन में रचनात्मक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संस्कृति आधारित सतत विकास आदि विषयों पर विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है।
1: तो बैठक में जो मेन मुद्दे हैं कि कहाँ पे जो ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज हैं वो कैसे सहयोग कर सकते हैं, जो क्रिएटिव इकोनॉमी है, जो हमारे आर्टिसंस हैं, आर्टिस्ट हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, उनको कैसे हम आपस में कोलैबोरेट करा के जो हमारे मेंबर कंट्रीज की अर्थव्यवस्था है उसमें उनका योगदान बढ़ा सकते हैं। तो नए चैलेंजेस हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी है, उसको कैसे हम सबको मिलके उस पर काम करना है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश प्रांतीय आर्म्ड कांस्टेबुलरी पीएसी, एसडीआरएफ और उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यूपीएसएसएफ के आधुनिकीकरण, क्षमता विस्तार, प्रशिक्षण और संरचना विकास एवं भावी कार्य योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पीएसी, एसडीआरएफ और यूपीएसएसएफ को भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप तैयार किया जाए और सुरक्षा बलों की प्रशिक्षण व्यवस्था को अधिक व्यवहारिक व तकनीक आधारित बनाया जाए। श्री योगी ने महिला सुरक्षा के दृष्टिकोण से पीएसी की महिला बटालियनों के निर्माण कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर स्थित महिला पीएसी बटालियन परिसरों में क्रमशः वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी, वीरांगना उदा देवी और वीरांगना झलकारी बाई की अश्वरोही प्रतिमा स्थापित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आगामी मानसून के दृष्टिगत बाढ़ एवं आपदा प्रबंधन की तैयारियों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। साथ ही एसडीआरएफ को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से खोज एवं बचाव कार्यों के लिए ह्यूमन लिफ्टिंग ड्रोन की उपयोगिता पर विचार करने को कहा। समाचार कक्ष से मैं अरुण।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में पर्यटन विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की।
3: समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक परंपरा और ज्ञान विरासत का प्रदेश है। बैठक में भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण से जुड़े ज्ञान भारतम मिशन की भी समीक्षा की गई। श्री योगी ने कहा कि भारत की प्राचीन पांडुलिपियां हमारी सभ्यता, दर्शन, विज्ञान और सांस्कृतिक चेतना की अमूल्य धरोहर हैं। पर्यटन नीति 2022 में प्रस्तावित संशोधनों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को निवेश, नवाचार और अनुभव आधारित पर्यटन का अग्रणी केंद्र बनाया जाए। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लखनऊ के कुकरेल वन क्षेत्र में पौधारोपण कर प्रदेश व्यापी अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस वर्ष राज्य में एक दिन में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। एक रिपोर्ट।
4: प्रदेश के 17 नगर निगमों, 825 विकास खंडों, 762 नगर निकायों समेत सभी ग्राम पंचायतों में यह अभियान पूरे दिन चलेगा। वन विभाग के साथ ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि, उद्यान आदि विभागों के सहयोग से अमृत सरोवरों, तालाबों, सड़कों, एक्सप्रेसवे, नदियों के किनारे पौधे लगाए जाएंगे। इसमें विद्यालयों, महाविद्यालयों, स्वयं सहायता समूहों, सामाजिक संगठनों की भी

0: सहभागिता होगी। पौधरोपण अभियान के तहत लखनऊ मंडल में 62 लाख, वहीं बरेली और प्रयागराज में करीब 32 लाख पौधे लगाए जाएंगे। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। दौरे के पहले दिन वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आज लखनऊ में बायो युग ग्रीन कमांड 2026 का शुभारंभ करेंगे। यह पहल पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है।
2: रक्षा मंत्री आज पूर्वाहन 11:05 पर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। अपराह 12 बजे विश्व पर्यावरण दिवस पर कैंट स्थित कस्तूरबा पार्क में एक पेड़ माँ के नाम रोपित करेंगे। अपराहन 12:40 पर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के आवास पहुंचकर उनके पति के निधन पर शोक व्यक्त करेंगे। शाम को 4 बजे दिलकुशा लॉन में आयोजित बायो युग ग्रीन कमांड कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रतिभाग करेंगे। 6 और 7 जून को भी श्री सिंह लखनऊ में विभिन्न लोगों से मुलाकात करेंगे और भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद करने के साथ प्रबुद्ध नागरिकों से भी मिलेंगे। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित तथा पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। इस प्रणाली के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि आवेदन पत्र भरते समय जिस उम्मीदवार की फोटो अपलोड की गई थी वही उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा देने आया हो। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
3: 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सके। इसके अलावा 2017 में GST लागू किया गया जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई जिससे कारोबार करना आसान हो गया। वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस JEM की शुरुआत की गई। JEM पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें ऐसी छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक या गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक के पहले दिन संस्कृति आधारित सतत विकास पर हुआ मंथन। ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने PSC, SDRF और UPSSF के साथ आधुनिकीकरण, क्षमता विस्तार और भावी कार्ययोजनाओं सहित कई बिंदुओं को लेकर की समीक्षा बैठक। सुरक्षा बलों की प्रशिक्षण व्यवस्था को और अधिक व्यवहारिक व तकनीक आधारित बनाने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में करेंगे बायो युग ग्रीन कमांड का शुभारंभ। बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देगी यह पहल। और संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी

0: बनाने के लिए शुरू की फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
3: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ। श्रोताओं, सुबह के 7:31 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इसमें आइए आपको सुनवाते हैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का गायन। राग है तोड़ी।

Mama,

अभी आप सुन रहे थे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का गायन, राग था तोड़ी। इसी के साथ कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। सुबह के 8 बजने को है, अब से बस थोड़ी देर में रिले किया जाएगा समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत

0: बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4-लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज PCPIR और सरिगाम GIDC में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
2: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
2: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार

0: कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
2: खुदरा मुद्रा स्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2 से 6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसार।
1: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
3: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
4: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प

0: दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दूसरे स्तर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
1: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा न हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है, सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5,000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन, पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है, क्या हम सुन रहे हैं, पहले मौसम बदलता था अब बिगड़ता है, प्रकृति से सिर्फ लिया कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोताओ, ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। न्यूज ऑन AIR एप और FM 100.4 MHz पर रेडियो हेल्पलाइन संबंधी एक सूचना सुनिए। श्रोताओ, स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में शनिवार दिन

6 जून सन 2026 को साय 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है समय से पूर्व पैदा हुए अथवा प्रीटर्म बच्चों की गंभीर बीमारियों और उनके इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करेंगे शुक्रवार दिनांक 5 जून सन 2026 को साय 4 बजे से, यानी आज शाम 4 बजे से। यदि इस संबंध में आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें टेलीफोन नंबर 0581251700 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर सुन लीजिएगा। विषय है समय से पूर्व पैदा हुए अथवा प्रीटर्म बच्चों की गंभीर बीमारियां और उनके इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, शुक्रवार दिनांक 5 जून सन 2026 को साय 4 बजे से। और हमारा टेलीफोन नंबर है 0581251700। इसी के साथ रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना समाप्त हुई।

0: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, FM 14.4 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। आइए सुनते हैं साप्ताहिक कार्यक्रम फिल्म बी फ्राइडे।
1: Me Friday. Cut one. Take one.
2: 5, 6, 7, 8.
3: So baby.
1: Lights, camera, action. Action. Action.
4: Ladies and gentlemen. Hold your heart.

नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के बॉलीवुड गॉसिप्स के वीकली शो फिल्म माय फ्राइडे। ओह बोले तो फिल्म माय फ्राइडे। मौसम हसीन हो रहा है, हाँ हाँ, दिल भी गार्डन गार्डन हो रहा है। सोचिए गर्मी के मौसम में अगर आपको जरा सी भी बारिश की बूंदों की फुहारें पड़ जाए बदन पर तो तसल्ली मिलती है मन को, चैन को। सोचिए ऐसे ही इस प्यासी धरती को कितनी तसल्ली मिलती होगी। लेकिन ये जो वर्षा जल है, यही जल जमीन में जाता है, कुछ बाष्पीकृत होकर इन फिजाओं में उड़ जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि भाई टैप खोलिए और पानी आना शुरू हो गया, बड़ा आसान लगता है। सोचिए आने वाला वो समय जब हम टैप खोलेंगे और पानी नहीं आएगा, फिर क्या करेंगे? इधर उधर पानी के लिए तरसेंगे, ढूंढेंगे, कोशिश करेंगे। पूछिए उनसे जो मरुधर में रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं, कोसों दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं। अगर यही हालात रहे जिस तरह से हम लोग, जहां अभी पानी उपलब्ध है पर्याप्त मात्रा में, अगर उसका संरक्षण नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं एक एक बूंद पानी को तरसेंगे। सोचना शुरू कीजिए, सोचना नहीं बल्कि इसी पर अभी से अमल करना शुरू कीजिए। जल की बचत कीजिए, जल है तो कल है, पानी है तो जिंदगानी है मेरे दोस्त। फिल्में भी इल्म लेकर आती हैं, हाँ होता है कि नहीं होता है? कभी आपने किसी फिल्म से कोई इल्म सीखा है? अगर सीखा है तो आप हमें भेज सकते हैं मैसेंजर के माध्यम से। अगले कार्यक्रम में हम आपको उस इल्म के साथ शामिल करेंगे। बस फिल्मी फ्राइडे एवरी फ्राइडे के पेज पर आइए, मैसेंजर में भेज दीजिए कि आपको कौन सी फिल्म से कौन सा इल्म मिला है, यानी कि कौन सी सीख मिली है ना। फिल्मी फ्राइडे बातें फिल्मों की होती है और जिंदगी भी किसी फिल्म से कम नहीं होती, और हर फिल्म में हम अपने आप को देखते हैं उस हीरो के बराबर रखकर। लेकिन कई बार विलेन भी पसंद आ जाते हैं लोगों को, तो फिल्मी फ्राइडे आपकी उसी दबी तमन्ना को पूरी करने की कोशिश करता है। कभी आपने सोचा होगा कि इस बड़े से पर्दे पर हमारा नाम भी हो, हम भी हो, एक्टिंग कर रहे हो। एक्टिंग तो रोज करते हैं हम और आप, है ना, कभी खुश होने की, कभी दूसरों को इंप्रेस करने की। जी हाँ, तो भैया फिल्मी फ्राइडे में आपसे एक सवाल पूछा जाता है, वो सवाल जो आपको बना दे स्टार या सुपर स्टार। मेरे दोस्त कहां खोए हो?

ट्यून कर लो 100.4 FM या फिर न्यूज जोन AIR ऐप पर। प्ले स्टोर में जाइए, इंस्टॉल कर लीजिए अपने फोन में। पूरी दुनिया में कहीं भी सुने आप हमें, क्योंकि अब सिर्फ बरेली तक ही सीमित नहीं है बल्कि पूरे विश्व में आपके साथ है 100.4 MHz। तो भैया, हम आपसे पहले कह चुके हैं कि अगर आप फिल्मी फ्राइडे सुनते हैं तो आपको सितारे बनने का मौका मिलता है, या फिर आप सुपरस्टार भी बन सकते हैं। सुपरस्टार वो होते हैं जो सबसे पहले सही जवाब भेजते हैं, और स्टार वो कहलाते हैं पहले सही जवाब के बाद जितने भी राइट आंसर मिलते हैं वो सब स्टार कहलाते हैं, सितारे फिल्मी फ्राइडे के प्यारे। और हम सबसे पहले बात करते हैं अपने उन्हीं प्यारों की, उन्हीं सितारों की जो पहले सही जवाब के बाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किए। तो भैया, पहला सही जवाब तो जिनका है वो इंतजार कर रहे हैं हमारे एक फोन कॉल का, मगर दूसरे नंबर पर अजीत भावसार वीरम गांव से, मोहम्मद कलीम जख्मी साहब रेलवे रोड गंज डंडवारा से, डॉक्टर डी एच बच्चन साहब गणेशपुर गंज डंडवारा से, हाजीपुर खजुरिया फरीदपुर से, पंकज गंगवार जी बलराम गेट कासगंज से, एम असलम सैफी और यहीं से सोनी सैफी गणेशपुर गंज डंडवारा एटा से, एम फारूक शेख सेक्टर नंबर 2 आवास विकास कासगंज से, पवन गौड़ परिमल कासगंज से, आबाद खान मोहम्मद सईद अब्बासी ऊपरकोट बुलंदशहर से, तिलकराज अरोड़ा जी खुर्जा उत्तर प्रदेश से, गंज डंडवारा यूपी से मास्टर खिल्लू परवीर पटियाली रोड गंज डंडवारा से, सगीर अहमद शेख मास्टर बिठल सरो से कांटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से, छप्पर वाली मस्जिद कासगंज से मोहम्मद जाहिद अली सैफी और यहीं से लुबना खुसरो, पश्चिम थोक गंज डंडवारा से मुरब्बर लल्ला और छप्पर वाली मस्जिद कासगंज से तूबा खुसरो, फरुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा यूपी से सुरेश चौरसिया जी। ये क्या हुआ, बड़ी स्पीड पे चल रही थी जिंदगी लेकिन हल्की हो गई स्पीड, क्योंकि फरुखाबाद जाकर हमारे इस कंप्यूटर पोर्टल की स्पीड भी बहुत स्लो हो चुकी है। तो चलिए, स्लो ही सही लेकिन धीरे चलने में भी सफर का आनंद है। कहां लिखा देखा था आपने, बता सकते हो आप हमें। तो चलिए, अब कुछ दोस्तों को धीरे धीरे ही सही शामिल करेंगे। आप हैं धानबी रोड कासगंज से अब्दुल बारी अंसारी जी, आपने भी सही जवाब भेजा है। ओहो, स्पीड ब्रेकर बहुत ज्यादा हाई वाले हैं इसीलिए ये जो स्पीड है आपके मैसेज ओपन होने की वो स्लो चल रही है। मनकारा मंदिर बेडिया कॉलोनी करगना बरेली से ओम बती जी का भी सही जवाब हमें मिला है। और आपके बाद कौन कौन आए हैं जी, मोहम्मद जवान सैफी साहब हैं छप्पर वाली मस्जिद कासगंज से, कोई और दोस्त भी है क्या, चलिए एक बार सर्च कर लेते हैं। ये हमारे साथी संजय चौरसिया जी फरुखाबाद मोहल्ला नाला मच्छरट्टा उत्तर प्रदेश से हैं, पटियाली रोड गंज डंडवारा से आमिर हुसैन जी ने भी हमें सही जवाब भेजा है। कोई और साथी हैं क्या, माफ सिर्फ एक बचे हैं वो भी ओपन होने वाले हैं, इतना ज्यादा टाइम लग रहा है। चलिए आराम आराम से सही, लेकिन नाम सबके पढ़ेंगे जिन्होंने सही जवाब भेजे हैं। स्मगलर लिखकर भेजा है पटियाली रोड गंज डंडवारा से एम खलील कुरैशी साहब ने। तो मेरे दोस्त, आप सबको बहुत बहुत बधाई, फिल्मी फ्राइडे के तारे यानी सितारे यानी स्टार बनने की।

0: आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।

0: दोस्तों आपका फिर से स्वागत है प्रोग्राम वही है जिसका नाम है फिल्मी फ्राइडे। शुक्रवार सुबह 8:15 से कार्यक्रम आपकी सेवा में लाइव होता है। मॉर्निंग का टाइम है, आप ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे होंगे, अपने अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे होंगे, हमारे किसान भाई खेतों में जाने के लिए तैयार हो रहे होंगे, लेकिन ये जो आसमान में बादल छाए हुए हैं, क्या विचार है आपका? बरसेंगे या सिर्फ तरसेंगे? ये तो कुदरत के नजारे हैं और कुदरत को संरक्षित करना हम सबका फर्ज बनता है। फिल्मी फ्राइडे में जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपको वैसे मौका न मिला बॉलीवुड में, कोई बात ना, हम हैं आपके साथ। आपको मौका मिलेगा स्टार या सुपरस्टार बनने का, तो स्टार तो बन चुके, अब बारी है सुपरस्टार की। सुपरस्टार का मतलब ये है कि अब हम वहीं चलेंगे जहां काफी देर से इंतजार में है पिछले हफ्ते के सुपरस्टार है, सुपरस्टार है। अच्छा, एक चीज तो है जिंदगी में, ज्यादा हड़बड़ी हो तो हम बहुत कुछ भूल जाते हैं। ऐसे ही रोजाना सुबह को होता है, ऑफिस जाने की जल्दी और हड़बड़ी में हम बहुत कुछ भूल जाते हैं। कभी पता चला कि पर्स रह गया घर पे, कभी चार्जर घर पे रह गया, कई बार तो टिफिन भी घर पे रह जाता है। घर से फोन आएगा, फिर उसके बाद पहुंचाया जाएगा, या बीच रास्ते से हम वापस आएंगे। ऐसा ही हमें भी कुछ याद नहीं रहा हड़बड़ी में। सच मानिए, सुपरस्टार का अनाउंसमेंट तो हमने कर दिया, लेकिन सुपरस्टार हमारे साथ अभी कहाँ हैं? चलिए उन्हें कॉल लगाते हैं, देखते हैं कितनी देर में वो आते हैं। हेलो
1: जी सर, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, आपको बहुत बहुत बधाई फिल्मी फ्राइडे की सुपरस्टार बनने की।
1: बहुत बहुत धन्यवाद बरेली का और आपका गजेंद्र जी।
0: ऐसा है जैसे जैसे जैसे ही हमने, मतलब आपने तो एक रिंग भी पूरी न जाने दी तब तक तो कॉल रिसीव कर ली।
1: नहीं ऐसा है सर, मैं थोड़ा दूसरे रूम में था इसलिए सेकंड में आपका उठा पाया, अटेम्प्ट कर पाया मैं।
0: चलिए ये अच्छी बात है, हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आप जैसे दोस्तों से हमारा रिश्ता है और आपसे रूबरू होते हैं हर हफ्ते, हमें बड़ा मौका मिलता है। हम तो हर हफ्ते सुपरस्टार से मिलते हैं, है ना?
1: जी जी सर।
0: तो नाम बता दीजिए।
1: मैं सर बीपी गौतम, मेटा रोड, गंजुंडवारा, उत्तर प्रदेश से सर।
0: हाल चाल ठीक ठाक है सर?
1: हाल चाल तो बढ़िया है सर, अभी मौसम भी थोड़ा सही है।
0: हाँ, पिछले कुछ दिनों से अपने बरेली के आसपास का मौसम बड़ा सुहावना हो रहा है।
1: हाँ, थोड़ी सी कल उमस और गर्मी सी थी शाम को, वो भी सही हो गया था।
0: हाँ ये अच्छा, सोचिए फिर आने वाले बरसात के दिनों का क्या होगा, अगर बरसात और मौसम ये अभी से ऐसा हो रहा है तो क्या आगे बरसात होगी? या हम
1: तो सर बरसात तो उम्मीद कम लग रही है, दिया था मानसून विभाग मानसून का पूरा के 20% बरसात कम होगी।
0: एक अल नीनो करके एक बन रहा है, एक परिस्थिति बन रही है वायुमंडल।

0: में, और उसकी वजह से ऐसा चेताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है।
1: 50 तो पहुंच ही जाएगा सब। इंडिया में उत्तर प्रदेश का तो पहला ही नंबर था सर, बांदा।
0: देखिए, ये जो तापमान है बढ़ रहा है, इसके लिए कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार
1: हम
0: हैं।
1: सब जिम्मेदार, जब तक वृक्षारोपण नहीं होगा सर,
0: डट के
1: हर
0: वृक्षारोपण करें।
1: डट के वृक्षारोपण हो, पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी जाए, तब कुछ जाके होगा। वो भी कम से कम 4-5 साल में स्थिति सही हो पाएगी।
0: अच्छा, इंडोर प्लांट्स लगाने से कोई फायदा थोड़ी होता है। अगर आपको लगाने हैं तो आउटडोर प्लांट्स लगाइए, और वो प्लांट लगाइए जो ज्यादा जगह में अपना फैलाव रखते हैं और ढेर सारी छाया देते हैं।
1: कम अधिक से अधिक उसके ऑक्सीजन भी अधिक देते हैं सर। पीपल के पेड़ लगाएं, आम है, फलों के ले लें, आम है,
0: अच्छा, आज
1: अमरूद है।
0: एक एक नया ट्रेंड ये भी चलने लगा है कि बहुत छोटे पौधे हों, उन पे जल्दी फल आए, वो ज्यादा बेस्ट रहते हैं। ऐसा सोचना है लोगों का, लेकिन हमें लगता है कि पेड़ को, जो प्राकृतिक और अपने देसी पेड़ पौधे होते हैं, वो हमारे प्रकृति के लिए बहुत लाभदायक है।
1: जी, सर।
0: अगर व्यवसाय की दृष्टि से देखा जाए तो आजकल जो हाइब्रिड और शॉर्ट किस्में आ रही हैं, कम साइज में जल्दी फल देने वाली, वो हमारे लिए व्यवसायिक स्तर पर तो अच्छी हो सकती हैं, लेकिन
1: स्वास्थ्य
0: पर्यावरण
1: के
0: की
1: लिए भी
0: दृष्टि।
1: बहुत हानिकारक है सर।
0: हाँ, अच्छा, एक बात बताइए, पिछले हफ्ते एक सवाल हमने पूछा था आपसे,
1: हाँ,
0: जवाब
1: वो
0: क्या
1: सर
0: मिलता था?
1: आपने दोबारा पूछा था, एक बार और पूछ चुके हैं, मैंने मिस मत कर। पहले
0: हाँ,
1: भी सर मैं ही था और दोबारा भी मैं ही था सर।
0: ये हुई ना बात, मतलब ये आपको पहले से पता था।
1: ये सर आपने पहले पूछ चुके थे, ये स्मगलर।
0: अच्छा, एक चीज और भी है, जब हम पहले पूछ चुके हैं तो हो सकता है कि और दोस्तों को भी जानकारी हो, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं
1: जी
0: भेजा
1: जी जी
0: पहले,
1: सर।
0: और काफी देर बाद के आप सबके जवाब मिले हैं, पूरा दिन बीत जाने के बाद।
1: अच्छा सर,
0: हाँ,
1: मैं तो तुरंत ही डाल दिया था सर।
0: चलिए, तो आप तो बधाई के पात्र हैं, मुबारकबाद आपको फिल्मी फ्राइडे के सुपरस्टार बनने के, और आप तो सुपरस्टार हैं भाई, सबसे पहले भेजते हैं आप जवाब। देखते हैं आज के सवाल का जवाब भी
1: कोशिश
0: कौन से
1: करते
0: दोस्त पहले
1: रहना चाहिए।
0: भेजेंगे।
1: जी सर,
0: अब बताइए, हम अपने सुपरस्टार को उनकी पसंद का एक गाना सुनवाते हैं, आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: एक फिल्म आई थी सर, दौड़ धूप, 1980 में,
0: हाँ, ये तो दौड़ धूप लगी है।
1: बड़ा बड़ा रेयर सॉन्ग था रफी साहब की आवाज में, गीत के
0: हाँ,
1: बोलते उफ ये जिंदगी।
0: अच्छा, एक चीज है,
1: जी सर,
0: वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है, मतलब विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में अगर बात की जाए, और इसके अलावा ये जो चीजें रहती हैं पर्यावरण के बारे में, जो हानिकारक चीजें हैं, प्रदूषण है और भी बहुत सारे कारक हैं, और पर्यावरण में तो सभी चीजें आती हैं, जल भी आता है, वायु भी आती है, ध्वनि ध्वनि प्रदूषण भी होता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि आपके आसपास से लोग एक बाइक में बहुत तेज आवाज के साथ निकलते हैं,
1: हाँ, साइलेंसर सर बदलवा लेते हैं,
0: तो
1: ये
0: ये करना ठीक है क्या?
1: गलत है सर, ये बिल्कुल गलत है। ये
0: कई बार चिड़ सी होती है जब इस तरह की आवाजें आपके आसपास
1: सिर
0: गूंजती
1: में
0: हैं।
1: दर्द होने लगता है सर, जब एकदम जो समझते हैं कि हमारे पास ये बुलेट और किसी ने देखी ही नहीं है।
0: अच्छा, एक चीज है कि हमारा खान पान भी आजकल इतना ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक नहीं रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हम सिर्फ स्वाद के लिए लेते हैं, ऐसे में हमारा स्वास्थ्य भी खराब रहता है, और फिर पर्यावरण के ये कारक जिनमें ध्वनि प्रदूषण भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे मस्तिष्क को अस्थिर करने में।
1: जी, सर।
0: तो बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा, और आपको अच्छा लगेगा जब आप सुनेंगे आपकी पसंद का गाना। बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर से आपको बधाई फिल्मी फ्राइडे के
1: धन्यवाद
0: सुपरस्टार बनने
1: सर,
0: की।
1: धन्यवाद।
0: अपनी मिठास खोकर मैं बन गया खारा, यारो मैं जीवन से हारा।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: दोस्तों, न्यूज जोन AIR ऐप और 100.4 FM पर आप इस समय आकाशवाणी बरेली से सुन रहे हैं बॉलीवुड गॉसिप्स का वीकली शो। नाम फिल्मी फ्राइडे है और अब फिल्म को फ्राई करने की बारी है। हमारे सामने दो फिल्में आई हैं, दोनों की रेटिंग बड़ी अच्छी है, 5 में से 3.5 और 5 में से 3। तो ऐसा करते हैं 3.5 वाली को रिव्यू करते हैं। तो हमने फ्राइंग पैन निकाल लिया है, आप भी तैयार हो जाइए। अगर आप देखें तो हमें बताइए, हम देख रहे हैं तो आपको बता रहे हैं। हाँ, इसी तरह से एक दूसरे का साथ चलता है इस जिंदगी में। तो भैया, आज की जो फिल्म है द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो एलियंस का आगमन, कलाकार जैकी श्रॉफ, मेहर गोडबोले, प्रतीक स्मिता, शिवांश चोरगे, भाग्यश्री पटवर्धन, दुर्गेश कुमार, और ये एक हिंदी साई फाई कॉमेडी फिल्म है। डायरेक्शन किया है मनीष सैनी ने। दोस्तों, हमारे भारतीय सिनेमा भले ही 112 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है, लेकिन बाल फिल्मों के क्षेत्र में आज भी उंगलियों पर गिनी जाने वाली मूवीज ही बन पाई हैं। पिछले साल आई बाल फिल्म चिड़िया के बाद अब द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो एलियंस का आगमन के रूप में बच्चों को केंद्र में रखकर बनाई गई एक और फिल्म सिनेमा घरों में पहुंची है। जैकी श्रॉफ स्टारर इस फिल्म का आगमन सुखद एहसास करवाता है। फिल्म की फैंटेसी भले ही कई जगहों पर बाल सुलभ और थोड़ी बचकानी लगी, लेकिन जैकी श्रॉफ जैसे समर्थ और सहज अभिनेता की मौजूदगी और बाल कलाकारों

0: का सच्चा अभिनय इसे मनोरंजक और दिलचस्प बना देता है। फिल्म दीपू यानी मिहिर गोडबोले और उसके दादाजी जगदीश चंद्र जैकी श्रॉफ की कहानी है। पिता के तबादले के बाद नए स्कूल में पहुंचे दीपू को दोस्त बनाने और खुद को खास साबित करने की चिंता है। इसी कोशिश में वो अपने सहपाठियों से दावा कर बैठता है कि उसके दादाजी कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एलियंस से पृथ्वी की रक्षा करने वाले सुपर हीरो हैं। इतना ही नहीं, वो ये भी कहता है कि अगर ये राज 18 साल से बड़े किसी व्यक्ति को बता दिया गया तो दादाजी अपनी शक्तियां खो देंगे। दीपू का नया दोस्त लड्डू यानी शिवांग चोरगे उसकी बात पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेता है, लेकिन चाणक्य यानी जहान जितेंद्र होडार को इस दावे पर शक है। इधर छिपकली से भी डर जाने वाले दादाजी की सच्चाई छिपाने के लिए दादा पोता तरह तरह की तरकीबें अपनाते हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब सचमुच दो एलियंस सहर्ष शुक्ला और कुमार सौरभ ने रोल किया है ये पृथ्वी पर आधमकते हैं। वो चेतावनी देते हैं कि एलियंस की एक विशाल सेना पृथ्वी पर कब्जा करने वाली है। अब सबकी उम्मीदें सुपर हीरो दादाजी पर टिक जाती हैं, जबकि वे डायबिटीज कमर दर्द और कमजोर हड्डियों जैसी उम्र की संबंधी परेशानियों से जूझ रहे बेचारे एक साधारण बुजुर्ग हैं। लेकिन क्या जगदीश चंद्र सचमुच सुपर हीरो हैं या केवल बच्चों की कोरी कल्पना है? अगर एलियंस का हमला होता है तो क्या दादाजी पृथ्वी को बचा पाएंगे? इन सारे सवालों के जवाब तो आपको फिल्म देखकर ही मिलेंगे। दोस्तों, गुजराती फिल्मों के जाने माने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्मकार मनीष सैनी की ये फिल्म हमें अपने बालपन की उस फैंटेसी में ले जाती है जहां हम सब ये मानते हैं कि हमारे आसपास एक सुपर हीरो है जो अपनी सुपर पावर से सारी मुश्किलों का हल निकाल सकता है। ये हमें अपने दादा दादी या नाना नानी द्वारा सुनाई गई अलौकिक कहानियों की भी यादें ताजा करवाती है। इसमें कोई शक नहीं कि मनीष सैनी की इस फिल्म की नियत और ट्रीटमेंट बेहद ही मासूम है। फिल्म का पहला भाग मजेदार है लेकिन दूसरा भाग थोड़ा बिखरा हुआ है। हालांकि दो एलियंस के आगमन के बाद फिल्म में जान आ जाती है। अगर आप इस फिल्म से सुपर हीरोज वाली फिल्मों के हाई ऑक्टेन की एक्शन की उम्मीद करेंगे तो थोड़ी सी आपको निराशा हो सकती है। VFX की कमजोरी भी साफ तौर पर पकड़ पाएंगे आप। हालांकि 10 करोड़ से भी कम बजट में बनी ये फिल्म बड़े बड़े स्टूडियोज जैसे VFX की उम्मीद भी बेईमानी है भैया इससे। खैर, इन सभी कमियों के बावजूद बेतरतीब सी लगने वाली कहानी में देसी और मानवीय अंदाज आपके दिल को जरूर छुएगा। एलियंस आपको नाटकीय और हालात हास्यास्पद लग सकते हैं मगर इन कमियों के बावजूद फिल्म मनोरंजन की डोर को हाथ से छूटने नहीं देती। एक्टिंग के स्तर पर यह फिल्म हर तरह से दिल जीतती है। बुढ़ापे की अलामतों और सुपर हीरो की अपेक्षाओं के बीच फंसे दादाजी के किरदार को जैकी श्रॉफ ने अपनी शानदार अभिनय अदायगी से मजेदार बना दिया है। दीपू के रूप में मिहिर गुडबोले के साथ उनकी जुगलबंदी मनोरंजन की डोज को बढ़ा देती है। इस चिल्ड्रन फिल्म में बच्चों की टोली का अभिनय तारीफ के काबिल है। लड्डू के रूप में शिवांग चोरगे की शरारत और चाणक्य की भूमिका में जहान होडार की शरारत मनोरंजक है। रेस में भाग लेने वाले तमाम दादाजी भी मजेदार लगे हैं। एलियन विलेन के रूप में प्रतीक स्मिता पाटिल प्रभाव छोड़ते हैं, हालांकि उनका किरदार और विस्तार मांगता है। वीरेंद्र सक्सेना बॉक्सर की भूमिका में दमदार है, जबकि सहर्ष शुक्ला और कुमार सौरभ अपने विचित्र एलियन किरदारों से भरपूर मनोरंजन कराते हैं। खुलासा करने वाले पत्रकार के रोल में दुर्गेश कुमार छोटी सी भूमिका के बाद भी याद रह जाते हैं। इतना सब कुछ सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि हूँ देखें तो वैसे देखो भैया, आपकी अपनी मर्जी है। हमारा काम फ्राई करना था, फ्लाई भी हो गई और फ्राई भी हो गई। हाँ, जब हम फ्राई करते हैं तो कुछ फ्लाई भी होता है, चाहे वो ऑयल के छींटे ही सही या फिर मिर्च की तेज वाली खुशबू सही, जो आपको खांसने छींकने पर मजबूर कर देती है। लेकिन अगर आप अपने बचपन को फिर से जीना चाहते हैं, कुछ मजेदार मासूमियत भरी कहानी देखने की इच्छा है, तो इस फिल्म को बच्चे ही नहीं अपने पूरे परिवार के साथ आप देख सकते हैं। वैसे थारी आपकी अपनी मर्जी थी, हमने देखी आपको बताई। अगर आपकी इच्छा हो तो आप देखें, है ना? हमारा काम फ्राई करना था, कर दिया। अब आज के लिए तो अपना फ्राइंग पैन बंद करते हैं। अगले हफ्ते एक और फिल्म लेकर आएंगे आपकी खिदमत में। फिलहाल के लिए फ्रैंक पैन बंद।
1: क्या मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली, सरकारी।

0: कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: जी हाँ दोस्तों, अब बारी है सवाल की। सवाल वो जो आपको बना दे स्टार या सुपर स्टार। तो अपना जवाब भेजने के लिए सबसे पहले टाइप कीजिए BLYFM स्पेस दीजिए, उसके बाद अपना जवाब, नाम, पता और अपना मोबाइल नंबर, और इसे भेज दीजिए फिल्मी फ्राइडे एवरी फ्राइडे के पेज पर मैसेंजर के थ्रू। आज रात 12 बजे तक आप सबके जवाब हमें मिल जाने चाहिए। और आज का जो सवाल है बहुत ही आसान है। हमें उम्मीद है कि हमारे बहुत ज्यादा ज्यादा ज्यादा श्रोता इस कार्यक्रम में सवाल का जवाब भेजेंगे। ये जो गाना है कि धुन सुन रहे हैं, बताओ ये कौन सा गाना है।

ये जो धुन आप सुन रहे हैं कौन से गाने की धुन है, गाने के बोल बता दीजिए। फिलहाल हम चलते हैं, अगले हफ्ते ढेरों फिल्मी बातें लेकर आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। आकाशवाणी बरेली सुनते रहिए। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम फिल्मी फ्राइडे। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.4 MHz पर। आइए अब सुनते हैं लोकगीत। श्रोताओ, आरंभ में लीजिए सुनिए कुमारी रोहितास के स्वर में ये लोकगीत।

श्रोताओ, आकाशवाणी बरेली FM 14.4 मेगाहर्ट्ज़ पर इस समय आप सुन रहे हैं लोकगीत। आइए अब सुनते हैं अंजू अग्रवाल के स्वर में ये।

अंजू अग्रवाल के गाए इसी लोकगीत के साथ आज का यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे लोकगीत। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से न्यूज ऑन AIR ऐप और FM 100.4 MHz पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बजने को हैं। आइए अब सुनते हैं विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें हम अपनी आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।

इस ब्रेक के बाद आप सभी का कार्यक्रम चित्रलोक में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। ये है विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। और चित्रलोक में आगे बढ़ते हुए हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू की आवाजों में समीर का लिखा और नदीम श्रवण के बनाई धुन पर ये गीत। फिल्म का नाम है दिल है तुम्हारा।

श्रोताओं, आज है अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित मछली पकड़ने के खिलाफ लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड IUU फिशिंग डे। हर साल ये 5 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2017 में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी और पहला IUU दिवस 5 जून 2018 को मनाया गया था। इस महत्वपूर्ण दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा की गई थी और पोर्ट स्टेट मेजर्स एग्रीमेंट PSMA। यह दिवस PSMA की भी वर्षगांठ का प्रतीक है, जो अवैध मछली पकड़ने से निमटने के लिए दुनिया की पहली बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इस दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है ना, अवैध मछली पकड़ने और इससे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को होने वाले नुकसान से दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा पर पड़ने वाले इसके नकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना है, बढ़ाना है।

फिशिंग से महासागरों में जैव विविधता, समुद्री संसाधनों और उन मछुआरों की आजीविका को भी भारी खतरा होता है श्रोताओं, जो कि नियमों का पालन करते हैं।

अमिताभ भट्टाचार्य के बोल प्रीतम की बनाई धुन पर अमित मिश्रा और शिल्पा राव की आवाजों में ए दिल है मुश्किल फिल्म का ये गीत। और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं समीर का लिखा गीत, प्रीति पिंकी और बाबुल सुप्रियो की आवाजों में मुझे कुछ कहना है फिल्म से।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

श्रोताओं, अंतराल की बात कार्यक्रम चित्रलोक में आप सभी का फिर से स्वागत है। श्रोताओं, आज 4 बजे शाम को पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा गीतों भरी कहानी। कहानी

का शीर्षक है नजरिया। वाचन स्वर नेहा शर्मा का है, संपादन सहायक काजल भतरगी, प्रस्तुतकर्ता जुबीर खान। सुनना नहीं भूलिएगा। और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं इश्क विश्क फिल्म का ये गीत अलका याग्निक कुमार सानू की आवाजों में। समीर ने इसे लिखा है, अनु मलिक ने संगीत से सजाया है।

0: सुनिए एक खुशखबरी। कहिए
1: ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: अब आपको सुनवाने जा रहे हैं आप मुझे अच्छे लगने लगे। इस फिल्म का गीत अलका याग्निक और अभिजीत के युगल स्वरों में, इब्राहिम अश्क की शब्द रचना है, राजेश रोशन की बनाई तर्ज।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे आप मुझे अच्छे लगने लगे अलका याग्निक और अभिजीत की युगल आवाजों में। और अब आपको कार्यक्रम चित्रलोक का आखिरी गीत सुनवाने जा रहे हैं आई हेट लव स्टोरीज फिल्म से श्रेया घोषाल सोना मोहपात्रा की आवाजें कुमार का लिखा गीत विशाल शेखर का संगीत। इससे पहले आपको बता दें कि आज सुबह 9:30 पर और रात को पुनः 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार केंद्रित रहेगा अभिनेत्री सोनम कपूर पर। सुनना नहीं भूलिएगा।

अब इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक यहीं संपन्न होता है। डीजे आ गया मुझे यानी पूजा नारानिया को नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

श्रोताओ, आज के फनकार में जहां हम बात करते हैं उन सितारों की जिन्होंने हिंदी सिनेमा को अपनी पहचान दी, एक नई चमक दी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही अभिनेत्री की जिन्होंने फैशन और एक्टिंग दोनों को ही नया आयाम दिया।

सोनम कपूर, जिनका पूरा नाम है सोनम कपूर आहूजा, 9 जून 1985 को मुंबई में जन्मी बॉलीवुड के झकास हीरो अनिल कपूर की बेटी।

इसके बाद सोनम ने दिल्ली सिक्स में काम किया, जहां मसक कली गाने ने तो जैसे हर गली मोहल्ले में धूम मचा दी थी। और इसी के साथ सोनम ने दिखा दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर की दुनिया में ही नहीं, बल्कि एक कामयाब अभिनेत्री का हुनर भी रखती हैं।

अब बात करते हैं साल 2010 की, जब आई उनकी एक बेहद स्टाइलिश फिल्म आयशा। इस फिल्म को सोनम ने खुद प्रोड्यूस किया और इस फिल्म ने उन्हें फैशन आइकन बना दिया।

बाद उन्होंने रोमांटिक और अभिनय शैली के तमाम अलग अलग फन को बारीकी से पर्दे पर उतारा। ये फिल्में थीं आई हेट लव स्टोरीज, थैंक यू और मौसम।

वैसे अगर हम देखें तो सोनम कपूर की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म है रांझना। रांझना की जोया ने हमें रुलाया, हंसाया और दिखाया कि सोनम कपूर एक सीरियस कलाकार भी हैं। धनुष के साथ उनकी केमिस्ट्री ने फिल्म को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया। प्यार मोहब्बत और रोमांटिक कल्ट फिल्म में इस फिल्म का अपना एक अलग स्थान है।

इसके बाद आई खूबसूरत, एक हल्की फुल्की दिल को छू जाने वाली फिल्म। इस फिल्म में सोनम का क्यूट और चुलबुला अंदाज सभी को भा गया।

आई राशि प्रोडक्शंस की फिल्म प्रेम रतन धन पायो। यहाँ सलमान खान के साथ सोनम ने स्क्रीन शेयर की। भव्यता, संगीत और पारिवारिक भावनाओं से भरपूर इस फिल्म में सोनम की सादगी ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया।

भाग मिल्खा भाग में सोनम कपूर ने बीरो का किरदार निभाया, मिल्खा सिंह की पहली प्रेमिका जो उसकी युवा उम्र की मासूमियत और भावनात्मक संघर्षों का अहम हिस्सा बनती हैं। ये भूमिका भले ही स्क्रीन पर सीमित समय के लिए थी, लेकिन इसके महत्व को बिल्कुल भी कम आका नहीं जा सकता। सोनम ने इस फिल्म में अभिनय के लिए सिर्फ 11 रुपए की प्रतीकात्मक राशि ली, न कोई फीस, न कोई स्टारडम की मांग। उनका ये फैसला इस बात का प्रमाण है कि सोनम केवल एक कमर्शियल एक्टर नहीं बल्कि एक संवेदनशील और जुनूनी कलाकार भी हैं, जो सिनेमा को उसके शुद्ध रूप में समझती और निभाती हैं। बीरो के किरदार में सोनम ने पंजाब की परंपराओं, संस्कृति और भावनाओं को बेहद सादगी और सच्चाई के साथ पर्दे पर उतारा। उनका अभिनय न केवल कहानी में गहराई जोड़ता है बल्कि दर्शकों को ये महसूस भी कराता है कि अभिनय सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि समर्पण और संवेदना का भी नाम है। इस भूमिका के जरिए सोनम कपूर ने ये साबित किया कि जब कहानी दिल को छू जाए तो कलाकार अपनी सीमाओं से परे जाकर सिर्फ कला के लिए काम करता है बिना किसी भव्यता की अपेक्षा के।

फिर आई फिल्म संजू, जहां रणबीर कपूर के साथ उन्होंने निभाया रूबी का खूबसूरत किरदार। ये रोल भी छोटा था लेकिन फिल्म की इमोशनल गहराई को बढ़ाता है।

इसके बाद फिल्म मिर्जा आई। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारत की वीर बेटी मिर्जा भनोट को दी गई एक सच्ची श्रद्धांजलि थी। सोनम ने इस किरदार को जिस संवेदना, साहस और सादगी के साथ निभाया, उसने दर्शकों के दिलों को छू लिया। उन्होंने मिर्जा की निडरता, मानवीय संवेदनाएं और बलिदान को इस तरह पर्दे पर उतारा कि वो किरदार अभिनय से कहीं आगे जाकर एक जीवंत अनुभव बन गया। इस फिल्म में सोनम ने पूरी तरह से साबित कर दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं है बल्कि एक गंभीर और समर्पित कलाकार भी हैं, जो सच्ची कहानियों को आत्मा से जी सकती हैं। मिर्जा के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, स्पेशल मेंशन सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और प्रशंसा मिली, जो इस बात का प्रमाण है कि सिनेमा में उनका स्थान सिर्फ एक स्टार के रूप में नहीं बल्कि एक सशक्त कलाकार के रूप में भी है।

जैसी संवेदनशील फिल्म के बाद सोनम कपूर ने वीरे दी वेडिंग जैसी मॉडर्न बोल्ड और फ्रेश कहानी के जरिए अपनी अभिनय रेंज का एक अलग ही रूप दर्शाया। इस फिल्म में उन्होंने एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला का किरदार निभाया जो आज की पीढ़ी की सोच और संघर्षों को ईमानदारी से सामने ला

बाद 2018 में वो दिल्ली के उद्यमी आनंद आहूजा की शरीके हयात बनी, जो उनकी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। उनकी शादी भी उतनी ही सरल, खूबसूरत और रियल थी जितना उनका व्यक्तित्व। आज सोनम कपूर एक एक्ट्रेस के साथ साथ एक सोशल आइकन भी हैं। वो अक्सर महिलाओं के हक, फैशन और सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार रखती हैं। वो अब एक बेटी

सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार रखती हैं। वो अब एक बेटे की माँ भी बनी हैं, जिसका नाम है वायु, और इस नए फेज में भी वो उतनी ही ग्रेसफुल लगती हैं, उतनी ही खूबसूरत लगती हैं।

कपूर एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो सामाजिक जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेती हैं। महिलाओं के मासिक धर्म से जुड़े टैबू हों, LGBTQ+ समुदाय की स्वीकार्यता या मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषय, सोनम हर बार खुलकर अपनी बात रखती हैं। उन्होंने पैडमैन और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे ये फिल्मों में ऐसे मुद्दों को उठाया जिन पर बॉलीवुड अक्सर चुप्पी साध लेता है।

इसके अलावा सोनम जानवरों के अधिकारों की भी मुखर समर्थक हैं। वे पेटा की सदस्य रही और कई बार उन्होंने फर और चमड़े के उपयोग के खिलाफ अभियान भी चलाया। सोनम को पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर जैसे खिताब से भी नवाजा जा चुका है। उनके लिए सच्ची सुंदरता सिर्फ पहनावे में नहीं बल्कि संवेदनशीलता और करुणा में भी है। सोनम कपूर को उनके अभिनय और सामाजिक योगदान के लिए कई बार प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। फिल्म निर्जा में उनके दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में स्पेशल मेंशन मिला। साथ ही फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड आईफा और जी सिने अवार्ड्स में भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब उन्होंने हासिल किया। उन्हें रांझणा, सावरिया और प्रेम रतन धन पायू जैसी फिल्मों के लिए भी फिल्म फेयर में नामांकन मिला। फैशन और स्टाइल के क्षेत्र की जहां तक बात है उसमें भी वे लगातार मोस्ट स्टाइलिश वुमेन और फैशन आइकन ऑफ द ईयर जैसे अवार्ड्स जीतती रही हैं।

दोस्तों, ये थी सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सोनम कपूर के फिल्मी सफर की दास्तान। एक स्टाइलिश, स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग और संवेदनशील एक्ट्रेस। हम उम्मीद करते हैं कि सोनम आगे भी हमें ऐसे ही दिलचस्प किरदारों में दिखती रहेंगी।

0: ये था आज के फनकार कार्यक्रम, जो केंद्रित था सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सोनम कपूर पर। स्वर संगीता श्रीवास्तव का, शोध आलेख और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारी विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें हमने अपनी आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किया। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से FM 100.4 MHz पर और न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से आप हमें सुन रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, आइए सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के दीवाने। और आज के हमारे आकाशवाणी के दीवाने हैं विमल वर्मा जी।
1: मैं विमल वर्मा, मोहल्ला दुर्गा प्रसाद, ईसलपुर, जिला पीलीभीत से आकाशवाणी परिवार के 90 वर्ष पूर्ण होने पर सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आकाशवाणी के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है, नित नई जानकारियां प्राप्त होती हैं। यूं तो आकाशवाणी के कई केंद्र भारतवर्ष में मौजूद हैं, लेकिन जो बात आकाशवाणी बरेली में है वह किसी अन्य केंद्र में नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि आकाशवाणी बरेली के कार्यक्रम उम्दा और लाजवाब किस्म के होते हैं। अगर मैं आकाशवाणी से अपने लगाव या जुड़ाव की बात करूं, तो मैं लगभग सन 2008 से जुड़ा हुआ हूं, और आकाशवाणी बरेली से जो मुझे प्यार मिला वो बहुत ही मेरे लिए सुखद पल के बराबर है। आकाशवाणी बरेली का जो प्रातः की सभा में कार्यक्रम आता है भक्ति संगीत, उससे हमें अपने अंदर ऊर्जा महसूस होती है। इसके अलावा अन्य कार्यक्रमों की बात करें तो युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवाणी पेश किया जाता है, जिसमें युवा

0: नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम अंकुर, जो बच्चों के लिए बेहद मनोरंजन से भरपूर होता है। साथ ही साथ कहानियाँ, चुटकुले आदि भी इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को सुनने को मिलते हैं। और हमारी माँ बहनों के लिए, माताओं के लिए, या यूं कहें गृहणियों के लिए जो कार्यक्रम नारी संसार पेश किया जाता है, वो एकदम लाजवाब होता है। क्योंकि घर में रहने के कारण हमारी महिलाएं हैं या बहनें हैं, अपना घरेलू काम भी करती हैं और साथ ही साथ उनका स्वस्थ मनोरंजन भी होता रहता है। स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहद अच्छा रहता है। इसमें हमें अपने स्वास्थ्य के रखरखाव से संबंधित जानकारियां प्राप्त होती हैं। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो आकाशवाणी एक ऐसा माध्यम है जो आज के समय में हमें स्वस्थ मनोरंजन भी दे रहा है, साथ ही साथ हमें बहुत कुछ सीखने को भी दे रहा है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, आकाशवाणी परिवार से हमें हमेशा प्यार और स्नेह मिलता रहे, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है।
1: दोस्तों, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह विशेष कार्यक्रम अभी आपने सुना, आकाशवाणी के दीवाने। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से, FM 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। न्यूज ऑन AIRF और FM 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में शनिवार दिनांक 6 जून 2026 को साय 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है, समय से पूर्व पैदा हुए अथवा प्री टर्म बच्चों की गंभीर बीमारियां और उनके इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करेंगे शुक्रवार दिनांक 5 जून 2026 को 4:30 से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें टेलीफोन नंबर 0581251700 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर सुन लीजिएगा, विषय है समय से पूर्व पैदा हुए अथवा प्रीटर्म बच्चों की गंभीर बीमारियां और उनके इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, शुक्रवार दिनांक 5 जून 2026 को 4:30 से, यानी आज शाम 4:00 से। और हमारा टेलीफोन नंबर है 0581251700। श्रोताओं, इसी के साथ रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना समाप्त हुई। यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, न्यूज ऑन AIRF और FM 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोता मित्रों, आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम आपकी पसंद। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के आपकी पसंद के इस कार्यक्रम में, जहां हम हाजिर हो चुके हैं आपके पसंद के वही सुरीले नगमे लेकर जिनकी ख्वाहिश आप रखते हैं। तो आपको क्या करना है? जी हाँ, बिल्कुल करना यह है कि आकाशवाणी बरेली के पेज पर आइए और आपकी पसंद कार्यक्रम से संबंधित पोस्ट में कमेंट कर दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि सभी श्रोताओं के कमेंट शामिल हों। तो कहाँ खोए हैं? ट्यून कीजिए हमारी रेगुलर फ्रीक्वेंसी 100.4 FM, बोले तो 100.4 FM, या फिर प्लेयर ऑन कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में कोशिश तो यही है कि सभी दोस्तों के कमेंट शामिल हों, और साथ ही आपसे निवेदन है कि सिर्फ एक बार कमेंट करें, बार बार नहीं, और सिर्फ टेक्स्ट कमेंट ही शामिल किए जाएंगे। पिक्चर या किसी भी तरह से अन्य कोई तरीका अपनाते हैं तो शो नहीं होता है, और पिक्चर कमेंट भी बिल्कुल शामिल नहीं हो पाएंगे। देर नहीं करेंगे, आज के इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं और प्रोग्राम में पहला कमेंट पढ़ते हैं।

फिल्म 92, क्षमा कीजिए, फिल्म 1942 अ लव स्टोरी का यह गाना जो आप सुनना चाहते हैं। आप हैं धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, सुनीता पटवा, हर्ष कुमार, विनीत कुमार, कुमारी कृष्टि पटवा और रब आप सबको साथ लेते हैं। सागर लखनाधन मध्य प्रदेश से लाडला जी चौबे, लाडी जी चौबे, रिमझिम और सक्षम चौबे। आप हैं रजौनी महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदय भान पाल, जयंत पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, बिमलेश पाल, दिवांश बघेल और इनका पूरा परिवार। और आप बंडू लोहार पोपलगढ़, माया शिवांश चंद्रकला पोपलगढ़, देवीदास पोपलगढ़, हरिवाऊ बिडबे और इनका पूरा परिवार। हिंदराज रेडियो श्रोता संघ नेवासा खुपटी महाराष्ट्र से, मगलपुरा बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी और इनके सभी साथी हैं। ये कमेंट है जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन नौरीन आसना और मोहम्मद कैफ अंसारी का, मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पवार, अलमास बानो, छोटू पवार, मोइन शंकरलाल गंगराडे, वनिता गंगराडे, मोहम्मद हसनैन पवार और इनका पूरा परिवार। ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से कमेंट करते हैं। आप हैं जिला बखर पंजाब से मोहम्मद हाफिजुर रहमान, हबीब मलिक, खलील मलिक और अली रहमान। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गोगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, स्प्रीत शर्मा, मीनाक्षी तिवारी, जग्गी दुआ, प्रेमलता और इनका पूरा परिवार। न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से आप हैं सुरेंद्र खुराना जी, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर, नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्डा, अलका मिड्डा और इनका पूरा मिड्डा परिवार। गणेशपुर गंजडंडवारा से आप हैं एम फारूक शेख, शमा परवीन शेख, साइमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख, बेबी मुस्कान। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, ओम कुमार सुरलकर। एवरग्रीन रेडियो ग्रुप गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शादरा से आप हैं तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन और मेघा मस्किन। कमेंट किया है भाई प्रेम सिंह बड़वाल, सुखवीर काजल, लखवीर बड़वाल, कृष्णा छिंदो, रानू, प्रवीण, शीतल, नबीला, नबीन रंगीला, निशान अनमोल, चटकू और मटकू। दीवाना रेडियो श्रोता क्लब बहलोल नगर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से। बठिना पाठन दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय। दुबिया निवाजत जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल राय। बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति रितेश, राजेश्वरी और उत्कर्ष चौहान। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा और ये जो कमेंट मिला है वो क्यूलड़िया नवाबगंज बरेली से राजेंद्र गंगवार, प्रेमपाल, धर्मवीर, सचिन, अनुज, अनमोल गंगवार, कमलेश, तुलाराम, अंकुश मौर्य, राजू चंद्रपाल, उल्फत शर्मा, बबलू गंगवार, वेदपाल गंगवार, संजीव गंगवार। कबनूर कोल्हापुर महाराष्ट्र से रेवण अनीता और राहुल भंबिष्टे कमेंट करते हैं। सिराजपुर जिला सुपौल बिहार से मोहम्मद वकील अहमद, नाजनी बेगम, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद कासिफ कमर, मोहम्मद कामरान अहमद, शहबाज अहमद, नाज प्रवीण, नाजिश प्रवीण, मोहम्मद आकिब, मोहम्मद शाकिब और मोहम्मद जैद। गली सिखलापुर बरेली मौर्य मंदिर से रतनमाला मौर्य, मुकेश प्रिंस, प्रियांशी मौर्य, पुष्पा गौरव और चंद्र प्रकाश मौर्य। आप हैं सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से हमें कमेंट करते हैं लाल गिरी गोस्वामी, हेमलता हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। नरगुड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। हमारे यह साथी खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानकचंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुग्गू भाभी सिक्का। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर, अबरार हुसैन अंसारी, अल्ताफ हुसैन, आशिक हुसैन, मुन्ना अंसारी और इनके सभी साथी। कमेंट मिला है जिला मुरादाबाद ग्राम बीजना से रिजवान खान, आरिद रजा खान, असद रजा खान, फैजा नाज, नाजिया खान और इनका पूरा परिवार। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो का कमेंट है। जवाहरनगर उदयपुर से बाबू भाई, भारती देवी, बदायूं रोड बेहतरी, रेलवे फाटक कॉलोनी चंदोसी संभल से आमिन अली है। गुजरात पाटन से धीरज बी रवारी जी का कमेंट है और कमेंट करते हैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह, माहेश्वरी देवी जी, सोनू, मोनू, राहुल, रश्मि।

में प्रियंका सृष्टि, बन्नी आरुष और शौर्य दिनेश, बीरमगांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश कुमार भावसार और सनी भावसार, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड से और विनोद खड से कमेंट मिला है और भी दोस्तों का। गांव मई मऊ शर्की, जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश से तेज बहादुर यादव, ममता यादव, रोनित और बेबी वानिका, राजकोट से जैमिन कुमार जैन, हेतल जैन, कृष्णा जैन और राकेश जैन का भी कमेंट है, और पटियाली रोड गंजडंडवारा से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, आजाद कुरैशी, अरीबा हबीबा, ममना हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से आप है रामशरण, विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल, दिव्यांशी विश्वकर्मा और इनका पूरा परिवार। नारायण प्रधान ओडिशा से कमेंट किए हुए हैं। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल कांगड़ा, तनवी बोत और इनका पूरा परिवार। सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आफिया और मुस्तावा खान। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत, मयंक भाटिया और इनका पूरा परिवार। खरगोन सनावत से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाई जान, भाई राजकुमार बोडाना और सदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, रितु, मुकेश और मुकेश जगता। नर्मदा पार्क मंगल बेढ़ा से मास्टर आलिम पटेल, मुजाहिद पटेल, नदीम पटेल और इनके सभी साथी। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छावड़ा, इंद्रजीत कौर छावड़ा और स्वीटी छावड़ा। साहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन मनवर, रोशनी मनवर, बेबी प्रियांशी। सौंगा मंगरलोड छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हियांश चंदन और इनके सभी साथी। आइए आप सबके नाम करते हैं 1942 अ लव स्टोरी से, गाना कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने, धुन बनाई है राहुल देव वर्मन ने।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हमारी जनगणना हमारा विकास।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: इस कमर्शियल ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रोग्राम वही है जिसका नाम है आपकी पसंद, और आपके साथ है आपका अपना रेडियो स्टेशन आकाशवाणी बरेली FM 100.4 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से आप हमें सुन रहे हैं। आपकी पसंद कार्यक्रम में अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं फिल्म महबूब की मेहंदी से, और महबूब की मेहंदी फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब ने गाया है। सुनने के ख्वाहिशमंद आप सब हैं। आप हैं टोरोवाल नवरशहर पंजाब से गगनदीप थांडी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर पीएम थांडी, बेबी भामिका वाणी थांडी और इनका पूरा परिवार। दोस्तों आपको बता दें कि फेसबुक पेज पर और फेसबुक पर एक नए अपडेट के कारण पहले आपके मैसेज शॉर्ट आउट हो जाते थे, यानी कि हम अगर आपका सबसे नया मैसेज सेलेक्ट कर लेते हैं तो एक क्रमानुसार आपके मैसेज हमारे पोर्टल पर शो होते थे पेज पर, लेकिन चूंकि वो फीचर अब डिसेबल है नए अपडेट वर्जन में, तो मुझे लग रहा है कि आज कुछ तो इधर उधर हो रहा है और हो भी सकता है, लेकिन कोशिश ये है कि आप अधिकतम श्रोताओं के कमेंट शामिल किए जाएं। तो महबूब की मेहंदी फिल्म का ये गाना जिन दोस्तों ने सुनना चाहा है उनका कमेंट तो हमने शामिल कर लिया, मगर शामिल कर रहे हैं आप सबको। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण और इनके सभी साथी, मंजूलता कुशवाहा, राम और श्याम, रवि आर्यन, रंजीत कुशवाहा, रामानंद कुशवाहा और इनके सभी साथी, चनौरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से हमें कमेंट किए हुए हैं। साथ में हैं बनबारी लाल कुशवाहा जी, शाही मार्केट शोहरा बिजनौर से आसिफ चौधरी, अराफा चौधरी और अदीब और कादिर चौधरी का भी कमेंट मिला है, और हमें ये कमेंट भेजा है मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और इनके सभी साथी, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, और आप हैं मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना मुन्नी चांदनी और नंदनी कुमारी, और ओखला संगम बिहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी, सत्यम और सुंदरम गुप्ता कमेंट करते हैं। मंगल जनागल, राही रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदु, डॉक्टर सुनील जनागल, चक 5 MD पतरोड़ा से, और

आप हैं सरलाही सोकनाहा नेपाल से, अरुण कुमार शर्मा, रेणु देवी शर्मा, राहुल कुमार, वंदना कुमारी, प्रियंका कुमारी शर्मा और उनके सभी साथी, गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कबर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत और इनका पूरा परिवार, रावर करनाल से विनोद लखनपाल और इनके सभी साथी हैं, और आप हैं बन बघेरा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा नीरज, नीलेश अंजलि, रोशनी सारवा और ओरेटा डोंडी लोहारा बालूद से देवशंकर तामुरिया, प्रभा देवी तामुरिया, जय कुमार, तुषार डॉली बेबी, पूजा तामुरिया और इनका पूरा परिवार, आकूट से विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, विजय शुभम बेंडे, पवन जरिया के, संजीव डाविराओं हैं और आप हैं चक 15 PS श्रीगंगानगर राजस्थान से सर्वजीत सिंह जोशन, सर्वजीत कौर जोशन, गोरमर्न मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आदर्श पाल सिंह जोशन, वैंकूवर कनाडा से रॉबिन सिंह जोशन और इनके सभी साथी, रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया और राजू सिंह, सौरभ प्रयागराज से हमें कमेंट करते हैं और गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से माशा खिलू, परवेज बेगम, इमरान अनाज, नवाजी शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी और इनके सभी साथी, डाबकी रोड अकोला से आप हैं सुशीला देवी मंदरकर, सदानंद कुमार, गौरव मंदरकर और इनके तमाम साथी, नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और इनके तमाम साथी, लदावली जिला मुरादाबाद से कमेंट करते हैं अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना और आप हैं हमारे ये साथी भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरविंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, बेबी वैदेही जोशी और हंसिका जोशी, कुमारी अंकिता, अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयवंती केवट और खंडवा मध्य प्रदेश से इनके सभी साथी हैं, अब्दुल गफ्फार डावर जी और ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, रजत और गरिमा बगड़िया, बांडीवाली फजिलका पंजाब से हैं और सोनवर्षा खानपुर, चुनार मिर्जापुर यूपी से, अनीश राजभर, मनीष आशीष और आकर्ष राजभर, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति और कार्तिक आर्यन वर्मा हैं और आप हैं मास्टर सुनील बाबू, शिवम सिंह, अभय मीत, भगवान देई, स्वाति सिंह तान्या और इनका पूरा परिवार, ग्राम पंचायत बाकरगंज फरीदपुर से, और ये तो हमने वैसे शामिल कर लिया है, आप बार बार कमेंट न करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से आप हैं दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा, वकार हैदर, कनी सकीना, हसीना दिलशाद और सदर बाजार कुराबली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार और सोनम वर्मा कमेंट करते हैं, सोपाली सिंह राजपूत, महिपाल सिंह, शिव कुमार, लेखराज वर्मा, रिंकू वर्मा, निर्मल और कुमारी रानी वर्मा, ग्राम पारवाला बितरोई बदायूं से और ढकिया केसरपुर पीलीभीत से आप हैं ए के राजपूत, अनिल कुमार, कैलाश चंद्र, रामेश्वर दरायल वर्मा, सत्यपाल वर्मा, भगवान दास राजपूत, रवि कुमार, श्रीपाल यादव, मनोज कुमार सक्सेना और चंचल कुमारी। पीपलरोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति और शिवांश वर्मा का कमेंट है और भोजपुर तगा चिलकाना सहारनपुर से मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अदीब, अब्दुल हन्नान, जीनत जावेद, नाहिदा रानी, आयत, मोहम्मद इंतजार और इनके तमाम साथी और आप हैं रामपुर मोड आदर्श इंटर कॉलेज के पास है सगीर अहमद, एम पी सिंह, अजय गुप्ता और पवन उपाध्याय। महोबा बुंदेलखंड से ये तो कमेंट शामिल हो चुका है। बड़ी गेवी चौराहा वाराणसी से आप हैं अरुण कुमार मालवीय और इनके सभी साथी और जो रिपीट नेम है यानी जो नाम आप बार बार भेज रहे हैं उन्हें हम शामिल नहीं करेंगे। एक मैसेज में अगर आपका नाम शामिल हो गया है तो फिर अगले मैसेज में आपका नाम शामिल नहीं हो पाएगा। आप हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेरा जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड से आडार, नंद घाट, छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी भूपेश, दीपेश वर्मा और शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम अलीम, अजीम अदीम बाकी, अब्दुल गनी और इनके सभी साथी। पंचकूला चंडीगढ़ से आप हैं राहुल खुराना और इनका ये भी मैसेज शामिल हो चुका है। आप रिपीट मैसेज कर रहे हैं और ये चीटिंग कही जाती है मेरे दोस्त जी। सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम, अदीब और इनके सभी साथी, कुमार हिडा सहारनपुर से कमेंट करते हैं और रघुवीर नगर नई दिल्ली से शमशाद खान, मोहम्मद नौशाद, अशोक कुमार, पप्पू, सिकंदर खान और इनके तमाम साथी, सिद्धार्थ नगर, दरियापुर, बावली से गजानन यलेर, नवदीप, विश्वदीप और नीलेश एले हैं और आप हैं सूर्यपुर, सूर्यनगरी, जोधपुर, राजस्थान, सेक्टर 5 से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, गर्वी और हिमांश, जबलपुर मध्य प्रदेश, धनवंतरी नगर से अशोक सिंह, सुनीता सिंह, अंकिता सिंह, रितु सिंह और वेदा सिंह, देवरी भाटापर से केआर साहू, आकाश कमलेश, कनूलाल रजक, मुरली क्षत्रिय, बड़ीखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा का कमेंट है और आप हैं सुजाता चौरसिया, पंकज पीहू, दिया चौरसिया, सरिता चौरसिया, नवाबगंज कानपुर से। बड़दल जाते हैं पते आपके हर मैसेज में। फरुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा यूपी से सुरेश चौरसिया, सरोज

चौरसिया, सुबोध सलोनी, संजू लल्ला चौरसिया, शिवा शिवानी चौरसिया और इनके सभी साथी। आप हैं मनकारा मंदिर बीडिया कॉलोनी करगना बरेली से बेनी सिंह सागर, पनीलाल सागर, आशीष कुमार, अमर सिंह, हितेश सागर, बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, ओमवती भारती, खनक शगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रताप सिंह। और आप हैं अनारकली बाजार जगराओ से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, स्वच्छा सिंह पाठक, विनोद पुरी, जयपाल यादव और इनके तमाम साथी। बठिंडा रोड मंडी डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित और तानिया नारंग का कमेंट है। और महाराजा दरवाजा ईटा से नबी हसन अब्बासी, अनम अब्बासी, यशफ सहनाज, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी और रसीद वारसी। आप ग्राम भाटनी मंदसौर मध्य प्रदेश से ईश्वर लाल मेहर, सुमित्रा मेहर, रियांश मेहर, सृष्टि मेहर और इनका पूरा मेहर परिवार। लखनऊ पब्लिक स्कूल के पास बिचपुरी गांव से करण मौर्य, अनुज मौर्य, गोधन प्रेमपाल मौर्य और विजय मौर्य। और आप हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार। और आप सबके नाम करते हैं फिल्म महबूब की मेहंदी से ये गाना, लीजिए सुनिए।

दोस्तों आकाशवाणी बरेली एफएम 104 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर इस समय आप सुन रहे हैं आपकी पसंद। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं मन की आंखें फिल्म से। मोहम्मद रफी साहब की आवाज है। साहिल उद्यानवी के बोलों को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और पसंद आप सबकी। एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामोनिशा, शकील अहमद, शहनाज खान, नुसरा खान हमें कमेंट करते हैं संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से और आपको शामिल कर रहे हैं। आप हैं जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति जायसवाल और कमेंट करते हैं बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मेहत्रे और रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टपूर, पीबी कुलथे, मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक और ये हैं हमारे साथी। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति और भूमिका अरोड़ा कमेंट करते हैं। आप भी आप कौन कौन हैं? आप हैं डॉक्टर आरवी सिंह, अर्जित यादव, प्रशांत, उदित यादव, अभय यादव, दीक्षा और इनका पूरा परिवार अल्लाहगंज जनपद शाहजहांपुर से। लालकुर्ती रुड़की कैंट से आप हैं राजेश वर्मा, मंजू, निशांत कौशिक, दीपाली युवान और आरके राजा कमेंट करते हैं। लेवई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास, रानी मानिकपुरी और इनका पूरा परिवार। और आप विलेज पोस्ट 12 गांव तहसील शाहबाद डिस्ट्रिक्ट रामपुर से देवा खान, रियाज खान, सिराज खान, जुनैद अरकान खान, अरबाब खान और अदनान खान और ये कमेंट है। लसूड़िया, नरसिंहगढ़, राजगढ़, मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमलपरी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी का, जमुना प्रसाद मौर्य, किरण मौर्य, दृष्टि और मानवी मौर्य, कटराचंद का, पुराना शहर बरेली से आई हैं, ग्राम दलपुरा तहसील फरीदपुर, पातिराम, दिवाकर, सूरजमुखी दिवाकर, खुशबू, प्रियांशी, मानसी, अक्षर, सुशांत दिवाकर और इनका पूरा परिवार। और आप हैं कटराचंद का मौर्य मंदिर, वार्ड नंबर 11, पुराना शहर बरेली से अनोखेलाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, विद्राम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति मौर्य आपको भी शामिल करते हैं। गंज डुंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनबर मास्टर, लोबना अंसारी, आलिया अंसारी और इनके सभी साथी, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा, बन्ने बुजुर्ग पलेला, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से हमें मैसेज किए हैं कमेंट। आप हैं बनिया पारा धमतरी छत्तीसगढ़ राज्य से रामचंद्र मखीजा, काफिर भाई, सविता मखीजा, स्वाति मखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही, पूजा छुटकी, शरद कुमार डोडवानी और पूरा मखीजा परिवार हमें कमेंट मिला है। भोजपुर तगा सहारनपुर से मोहम्मद इंतजार, जावेद राणा, राहत अली, वकील अहमद और इनके सभी साथियों का। और आप हैं नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला, खुशबू, ज्योति ठाकुर, चरौदा बाजार, नवापारा, जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से और गिरगांव महाराष्ट्र से गजानन नादरे, मारोतराव पंचाल और इनके सभी साथी। पटेल नगर मरूड से डॉक्टर रमेश कुमार जजौरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू जजौरिया और गुड्डू। और आप हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। और आप हैं जिला पटियाला पंजाब नाभा से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मन्नू और इनका पूरा परिवार। धाणी नांदुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे और रोतम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल, लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से कमेंट किए हैं। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सभिया, अनस और रेहान का कमेंट है। और आप हैं होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन, अमन, दीपांशु खोरवाल और इनका पूरा परिवार। नगरखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश और राहुल शर्मा। और आप हैं रज्जाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से और कस्बा उघती बदायूं से धीरज गुप्ता, पंकज बजाज, डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता, डीके और इनके सभी साथी। छत्तीसगढ़ भरसूदा से भगवानी सेन, संतोषी सेन, चिराग सेन, गजेंद्र सेन और इनका पूरा परिवार। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। और हमारे ये जो साथी हैं वो गांव फरासी, जिला हिसार से राजकुमार दूधी, प्रमोद कुमार दूधी, पुष्पेंद्र कुमार दूधी और इनके सभी साथी। मीरगंज बरेली बिजली घर से आदर्श देवाकर, लव देवाकर, उमेंद्रपुरी गोस्वामी, भाई कल्लू मिस्त्री और इनके तमाम साथी। आदर्श नगर मलूट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, निवान शर्मा, सौरभ, शाइना शर्मा और मैंडी शर्मा का कमेंट है। सेक्टर नंबर 2 आवास विकास कासगंज से आप हैं

पवन गौड़, सुयश गौड़, आशीष गौड़ तन्मय और अपूर्वा, और यही कमेंट में आप भी शामिल हैं। ओसावा जिला बदायूं, वार्ड नंबर 1, सब्जी मंडी कस्बा से धनवीर कश्यप, उषा कश्यप, ध्यानपाल, संजय अनमोल, अंश करिश्मा और मुस्कान कश्यप, और आप कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, और सिटी दीवाना गांव लहूडरा बागपत से आप हैं जगमोहन प्रजापति, मुनेश देवी, अर्जुन भारती, अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन, भुवनेश्वरी देवी, करावल नगर दिल्ली से रामनाथ प्रजापति, सुमन देवी और इनके सभी साथी, पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद पराग, पुनाराम कृष्णा देवांगन, और ज्योतिनगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़ गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी, हसन सिक्का और इनके तमाम साथी, राजकमल रेडियो श्रोता संघ आष्टी जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन, नामभाव तादले और इनके सभी साथी, धोतर जोड़ा आष्टी से दशरथ सागुते, अनुष्का और इनका पूरा परिवार, उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किशु, ताशु, अर्णव, आनंद, सत्यवानंद, पाकुड़ झारखंड से, बोड़ागाशी पश्चिम बंगाल से, मुन्ना भगत और गुड्डी भगत, और आप हैं दहीगांव, नांदुरा, धौंडू, भातुरकर, मंगला भातुरकर, विवेक कुमार भारती, प्रतीक्षा कोमल, समाधान भातुरकर, और संत नगरी शेगांव से शुभम राउत, कुमार रुद्र राउत और इनके सभी साथी, हांटीखेड़ा सिरसा से आप हैं राधेश्याम शर्मा, इंदिरा और सार्थक शर्मा, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू, निसार अहमद अंसारी, महजबी निसार, नुजहत फातिमा, अबरार अहमद अंसारी, इसरार अहमद अंसारी, इकबाल अहमद, इस्लामुद्दीन, बन्ने भाई, पप्पू भाई अंसारी, नाज रेडियो क्लब करेली से हैं, गढ़ी कोटा पंचकूला से आप हैं सराजुद्दीन अंसारी, नसीबन बेगम, शानिया, मोहम्मद इलियास, मुशाहिद हुसैन अक्सा, आयशा उमर अंसारी और समीना अंसारी, शंकरपुर उसावा जिला बदायूं से आप हैं सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र आनंद, सनोज अमन यादव, सोनी, अंकिता, विनीता, अनीता, सुनीता, सूरत श्री यादव, और छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इशाक, खदीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा, पद्मा टाकेज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल शाह, नीति शाह, सुरवी शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह, और ये कमेंट मिला है रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब और इनके सभी साथियों का, और आप हैं अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी, लालिमा साहू, खुशांत, निशांत साहू, कर्मा चौक लोहारीडी कवर्धा छत्तीसगढ़ से, मुरादगढ़ करनाल हरियाणा से रमेश कुमार कंबोज, पिंकी वंश और भूपेश कुमार कंबोज का कमेंट है, बगेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक, समर्थ और शौर्य नामदेव भी कमेंट करते हैं, और हमारे ये साथी हैं दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोकेलाल वर्मा, और ग्राम नागरकोरा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्य साहू, मोहल्ला ऊपरकोट चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबाना बसी और इनके परिवारीजन, धमधा सुखरी कला से अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आर्ष्य, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंगेल का कमेंट है, और कमेंट करते हैं गनगोला दातागंज से इशरत खान, सायरा बेगम, रऊफ खान, साबरीन, शहबाज, सैफ खान, ईशान आजम और अरहान खान, शाजीनगर, देगलूर, नांदेड़, महाराष्ट्र से आप हैं संतोष भाकरे, सुनेना, सकन्या और सविता भाकरे, और कमेंट करते हैं नांदेड़ी यताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद, दुर्गेश्वरी जायसवाल और करूला मुरादाबाद से अयोब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान, सिंधौली मीरगंज वारसी क्लब के सभी साथी, जिजान वारसी, इमरान शेख और रेहान शेख, आप हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर, मोहल्ला हलवाइयान, शेरकुट बिजनौर से, हजारीबाग झारखंड से वीरेंद्र भगत, मालती भगत, ऋषि और राहुल, गाड़ी खाना चाईवास झारखंड से जीवन, विश्वकर्मा, मंजू, नितिन, सावन, सचिन और शक्ति, और कस्बा बराना जिला अम्बाला हरियाणा तो आप हैं रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह, राहुल, ऑक्सीजन पार्क, राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई, हिरामन शिंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने का कमेंट है, और आप सबके नाम करते हैं मन की आंखें फिल्म से ये गीत।

आकाशवाणी बरेली FM 100.4 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप इस समय सुन रहे हैं आपकी पसंद अनुरोध गीत अनुरोध

फिल्म से यह गीत आप सबके नजर किशोर कुमार साहब की आवाज है और पसंद आप सबने किया है। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया शामिल करते हैं आप सबको। सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ और इनका पूरा रेवाड़ परिवार, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिका और बलबीर सिंह मुरादाबाद दूलापुर उत्तर प्रदेश से कमेंट करते हैं। दुर्रा बांदा भाटापारा छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, प्रमोद साहू देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू, युवराज साहू और इनके सभी साथी आप हैं। दिवाकर दीवाना, अशोक कुमार, रंजना कुमारी, शिवम कुमार, मनीष कुमार, आरती कुमार, कहलगांव पूर्व टोला से और रागनी और मुस्कान निकट बैंक सेंटर चनेटी बरेली से हमें कमेंट करते हैं और एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से नारायण भाऊ खड़ से, ललिता आशा रानी, संजना परी, आराध्या गणेश खड़ से, वैष्णवी कार्तिक, देविका चौधरी, स्वाति प्रज्ञा चौधरी और इनका पूरा परिवार है। और आप हैं दिवाकर दीवाना, अशोक कुमार, रंजना और ये तो कमेंट हमने शामिल ही कर लिया। भाई बार बार कमेंट ना, एक ही बार काफ़ी है। और ये कमेंट हमें मिला है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पंवार, डैनी पंवार, मनीष पंवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा और इनके सभी साथी हैं, कुंडलेश्वर बाड़ खंडवा से योगेश और अभय गुजराती। और ये कमेंट करते हैं दिनेश प्रजापति, ध्रुवी प्रजापति, जहांगीरपुरा सूरत गुजरात से और आप बेडी मध्य प्रदेश से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर और इनका पूरा परिवार। आप इंदौर से हैं पूजा रघुवंशी, रेखा रघुवंशी, नंदिनी, बबीता, शोभा रघुवंशी, आराध्या, वैष्णवी, ललिता और इनका पूरा परिवार। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल निशा और इनका पूरा परिवार। बुलंदशहर से उमेश कुमार गौड़, रानी गौड़ और इनका पूरा परिवार। और आप हैं ग्राम कोठा मक्खन बरेली से अफरोज अंसारी, फारूक अंसारी, घीसू दिलवारे, लक्ष्मी माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, अस्मिता, सौरभ, कुणाल दिलवारे, राजपुर मध्य प्रदेश से। और कमेंट करते हैं जलालपुरा, सहारनपुर यूपी से श्रवण कुमार प्रजापति, शिवम, आर्यन, लविश और इनका पूरा प्रजापति परिवार। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश शावले पाटिल, राजदीप, राजेश, राशि, राजेश, शीतल, राजेश और अलकनाथ मंदिर बरेली से आप हैं बेचलाल गंगवार, गुड्डी देवी, प्रशांत देव, ज्ञानेंद्र देव, इला देवी गंगवार, बर्फा देवी, सुनील यादव, संजय अग्रवाल, अश्वनी कुमार मौर्य, मास्टर विनोद दीक्षित और महावीर कश्यप, रमेश चंद्र सैनी, रॉबिन भाई और इनके सभी साथी। राम सिंहपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से अशोक, बब्बर, पवन, राजेश, अजय, राहुल और मनु, रश्मि, झरना, भरत कुमार राजकोट गुजरात से कमेंट करते हैं। बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल हर्ष, मनीष, अंशिका यादव, सूफिया खान और यूनुस खान। और आप हैं चमनपुरा उदयपुर से नजीब खान, जब्बार मोहम्मद, अशरफ खान, सबिया खानम और ये हमारे साथी आप बाजार रोड मोंगीसापुर मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब के सभी साथी। आपका कमेंट शामिल हो चुका है। मालवा रेडियो श्रोता संघ हिंगली आलोट से, रतलाम से जगदीश धाकड़, नाइमा रंजुबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़। आप हैं नालापार बाग रामपुर से रामपुर लिसनर क्लब के सभी साथी। नवाबुद्दीन, निजामुद्दीन, मोहम्मद जमालुद्दीन, सादी अक्सा और अहमद। इटा रोड गंज डोंडवारा यूपी से बीपी गौतम, सरिता गौतम, एम कलीम जख्मी, डीएच बच्चन, बोरखेड़ा, पीतरामल उज्जैन जिला मध्य प्रदेश से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूड़त, चेतन नाठा और इनका पूरा परिवार। और फुलाईनगर बीड महाराष्ट्र से बाला प्रसाद करवा, गीतांजलि करवा, आकाश और आकांक्षा करवा कमेंट करते हैं। भेरूलाल बख्तरिया धाकड़, भोला बख्तरिया, प्रवीण, रियांश और प्रतीक बख्तरिया उन्नैल उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं। आप हैं पूर्णापुर बालीपुर जिला बरेली से वीरेंद्र पटेल, प्रवीण, अतुल और इनके सभी साथी। कृष्णपाल सिंह चौहान, तारा देवी, नवदित सिंह चौहान, वैभव पाल, ध्रुवी और प्रद्युम्न सिंह चौहान चौकड़ा धाम कॉलोनी सनाबत खरगोन मध्य प्रदेश से हैं। और ये कमेंट हमें मिला है जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल और इनके पूरे परिवार का। आपने ये कमेंट हमें कहाँ से किया है? होली चौक उत्तम नगर से। तो चलिए यहां तक 220 कमेंट शामिल हुए। आप सबके नाम करते हैं फिल्म अनुरोध से ये गाना।

जी हाँ दोस्तों, हम भी आपको पुकारते हैं और आप आएंगे ऐसी उम्मीद करते हैं, हमें सुनेंगे और अपनी फरमाइशें भेजेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म दीवाना से। दीवाना फिल्म का ये गाना आप सब दोस्तों ने सुना चाहा है। आप हैं रामपुर रोड हल्द्वानी उत्तराखंड से, गंगा सिंह रावत जी और इनके सभी साथी। अब इस गीत में शामिल करते हैं आप सभी दोस्तों को। कौन कौन है भाई आप हैं? हमारे ये साथी हैं चंदौसी रोड चमनपुरा उत्तर प्रदेश से, मुकेश गौतम, सुनील गौतम, अमन गौतम, बुद्धनगर खंडवा से नदीम भाई, बहजोई से राजू भाई और इनके सभी साथी, और आप हैं ग्राम बीरपुर बिलसड़ अलीगंज एटा से, विपिन कुमार शाह के सपना, रविंद्र, राजेश, रमेश चंद्र शाह के राजीव, प्रदीप, रंजीत, सिद्धार्थ शाह के, कुमारी सुजाता शाह के, संगमित्रा शाह के, प्रज्ञा, प्रतिज्ञा और इनका पूरा शाह के परिवार। कोई और साथी हैं क्या? चलिए, आप हैं ग्राम व डाकखाना कोट बिल्ला पंचकूला से, अब्दुल हमीद, अब्दुल रशीद, बंतो, रुल्दी, खदीजा, सुहाना, रिजवाना, जावेद, परवेज, जाहिदा और रिजवान खान। और आज आपके कमेंट कुछ बिखरे बिखरे हैं क्योंकि शॉर्ट आउट नहीं हो रहे हैं, न्यूएस्ट में नहीं जा रहे हैं, या फिर हम जिन्हें पसंद कर रहे हैं या जिनके नाम सुनना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, वो एकदम नहीं मिल रहे हैं। और ये

अपडेट हुआ है पेज पर, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो चलिए आप सबके नाम करते हैं फिल्म, फिल्म का नाम तो वही है हाँ जी हाँ, दीवाना। विनोद राठौर और साथियों की आवाज़ों में ये गाना आप सबके नज़र करते हैं, लीजिए सुनिए।

श्रोताओं, हमें खेद है कि दीवाना फिल्म का यह गाना कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से हम आपको नहीं सुनवा पा रहे हैं, और इसी स्थान पर, इस गीत के स्थान पर इसी फिल्म का एक और गीत आप सबके नाम करते हैं। आप सबने बहुत खूबसूरत साथ निभाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आज के आपकी पसंद कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत, कीजिए स्वीकार, सप्रेम नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आपकी पसंद, ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, FM 100.4 MHz पर।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30।
0: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.4 MHz पर। आइए अब सुनते हैं सबरंग।

0: मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: दोस्तों इस समय आप सब रंग सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली से। एल्बम मेरे महबूब से ये एल्बम सॉन्ग आपको सुनवा रहे हैं, अलका याग्निक की आवाज है। म्यूजिक डायरेक्शन डॉक्टर राजकुमार ने किया है और बोल लिखे हैं सतीश और बेताब लखनवी ने।

दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी बरेली और इस समय आप सुन रहे हैं सबरंग। सबरंग में आइए अब सुनते हैं अलका याग्निक के स्वर में ये भोजपुरी गीत।

आकाशवाणी बरेली एफएम 104.4 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप सब रंग सुन रहे हैं। अगली पेशकश शुभा मुद्गल की आवाज में लीजिए सुनिए।

श्रोताओं, सबरंग इस समय आप आकाशवाणी बरेली से सुन रहे हैं। आइए नागण धौरारी एल्बम से ये राजस्थानी गीत आपको सुनवाते हैं। प्रकाश गांधी और नीता नायक की आवाजें हैं।

दोस्तों, इस गीत के बारे में आपको बता दें कि ये बेहद लोकप्रिय पारंपरिक राजस्थानी और हरियाणवी लोक गीत के साथ मिश्रित है। ये गीत खासतौर पर शादियों, त्योहारों और डीजे पार्टियों में अपने खास नागिन डांस और नागिन डांस म्यूजिक के लिए मशहूर है। तो सुनते रहिए सब रंग, आकाशवाणी बरेली से।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे सबरंग। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से FM 100.4 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। आइए अब सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: पतंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कठोर परिश्रम और लगन।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा,
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी,
0: और बेगूसराय बिहार से इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा,
2: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य,
0: और डोंडी दुहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया,
2: और मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव।

0: जाटव, आफताब जाटव, महताब जाटव, मेराज जाटव और अल्ताफ जाटव।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। साथियों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
0: अब तक हम चर्चा कर चुके हैं अंटार्कटिक, गोबी और लद्दाख के शीत मरुस्थलों की, तो चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं भारत के एक और शीत मरुस्थल की, जिसे लाहौल स्पीति के शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसे लामाओं की भूमि भी कहा जाता है। तो अजीत जी, एक बार फिर से मैं श्रोताओं की ओर से उसी प्रश्न पर आती हूँ, इसे शीत मरुस्थल क्यों कहते हैं?
1: विमलेश जी, जैसा कि हमने बार बार चर्चा की है ना, कि मरुस्थल केवल गर्म ही नहीं होते, जरूरी नहीं है कि वहाँ रेती हो या गर्मी हो जैसी कि आम धारणा है। ऐसा है कि जहाँ वर्षा मानक औसत से बहुत कम हो, जहाँ वनस्पतियों का अभाव हो, जनजीवन कठिन हो, वो स्थान मरुस्थल कहलाते हैं।
0: जी अजीत जी, लाहौल स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि ये क्षेत्र हिमालय की वर्षा छाया यानी रेन शेडो में पड़ता है। हिमालय क्षेत्र की ओर आने वाले मानसूनी बादलों को रोक लेता है, इसी कारण से यहाँ हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है। अजीत जी, ये तो बता दें श्रोताओं कि लाहौल स्पीति कहाँ है?
1: विमलेश जी, लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में।
0: जी,
1: आमतौर पर हम इसे लाहौल स्पीति कह देते हैं, लेकिन दरअसल ये दो अलग अलग घाटियां हैं।
0: जी,
1: यहाँ का तापमान सर्दियों में -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
0: जी,
1: गर्मियों में दिन के समय तेज धूप होती है, लेकिन शाम होते ही तापमान गिरने लगता है, रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं।
0: श्रोताओ, जहाँ तक जनजीवन का प्रश्न है, कम ऑक्सीजन, भारी बर्फबारी और लंबे सर्द मौसम के बावजूद लोग यहाँ छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। खेती करने का मौसम बहुत छोटा होता है। मुख्य रूप से यहाँ आलू, जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कई गांवों में तिब्बती संस्कृति और बौद्ध मठ देखे जा सकते हैं। अजीत जी, कल आप बात कर रहे थे यहाँ के आसमान की, कोई खास बात है क्या?
1: जी विमलेश जी, यहाँ का आसमान सच में रात के समय अद्भुत होता है। आसमान इतना साफ होता है कि आप आंखों से अनगिनत खूबसूरत तारों और यहाँ तक कि आकाशगंगा के अनोखे दृश्यों का भी आनंद उठा सकते हैं।
0: क्या बात है।
1: इसीलिए तो यहाँ कुछ वेधशालाएं भी बनाई गई हैं। खगोल प्रेमियों के लिए तो ये जगह खास है।
0: क्या बात है। श्रोताओं, आपको एक बड़ी रोचक जानकारी दे दें कि कॉमिक गाँव स्पीति क्षेत्र का सबसे अधिक ऊंचाई वाला गाँव माना जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर सड़क से जुड़े गांवों में गिना जाता है।
1: और श्रोताओं, ये भी बता दें कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए नए लोगों के शरीर को अनुकूलित होने तक धीरे धीरे चलना पड़ता
0: जी।
1: है। यहाँ के घर भी लद्दाख की तरह पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं ताकि अंदर गर्मी बनी रहे।
0: और अब बात करते हैं इस क्षेत्र के स्कूलों की। इतनी ऊंचाई और कठिन मौसम के बावजूद यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं। कभी कभी भारी बर्फबारी के कारण स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी के अलावा बच्चे भूटी और तिब्बती भाषा भी सीखते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए वे पास के काजा जैसे कस्बों में जाते हैं। काजा घाटी के नीचे समतल मैदान में है। बच्चे पढ़ाई के अलावा पानी लाना, भेड़ों और याक की देखभाल करना जैसे भी काम करते हैं।
1: एक और बेहद रोचक जानकारी आपको दे दें, और वो ये है कि स्पीति घाटी में एक गांव है जिसका नाम है हिक्किम। यहाँ स्थित डाकघर दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघरों में गिना जाता
0: जी।
1: है। यहाँ आज भी लोग पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय पत्रों का इस्तेमाल करते हैं।
0: जी।
1: इस डाकघर की स्थापना 5 नवंबर 1983 को हुई थी।
0: सन 2022 में इस डाकघर को फिर से बनाया गया और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसे एक विशाल पत्र पेटी या लेटर बॉक्स का रूप दे दिया गया। श्रोताओ, सर्दियों में डाक पहुंचाना कठिन हो जाता है, यहाँ के डाक कर्मियों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। वो कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर पैदल चलकर डाक पहुंचाते हैं। तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी भारत के शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति के बारे में।
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है?
1: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो उन्हें NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर या दीक्षा पर सुन सकते हैं।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम नकली हीरे।
1: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस नाट्य प्रधान कार्यक्रम के द्वारा विशेष रूप से संदेश दिया

0: काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। वे दिन रात अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे। वे इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनके बाद बेटे का क्या होगा।
1: मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए जो मेरे बाद उसे सही रास्ता दिखा सके।
0: सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया।
2: महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की
3: जय। बहुत अच्छे से शासन कर रही है
4: उसका खास ऐलान।
1: शांत शांत, आप सबका स्वागत है। मैंने एक विशेष कार्य के लिए आप सबको दरबार में बुलाया है।
5: हाँ हाँ महाराज, महाराज बताइए,
1: हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर।
5: हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं महाराज।
1: मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा।
6: जी महाराज, पूछिए, क्या प्रश्न है आपका?
1: प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? मुझे सिर्फ सत्य ही जानना है।
7: निसंदेह महाराज, आप संसार में आप सब बुद्धिमान, सारे संसार में कोई नहीं है।
0: सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया।
1: आप सभी के उत्तर से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि भेंट स्वरूप आप सभी को एक एक हीरा दिया जाता है।
0: हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया।
8: जी महाराज,
9: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
1: आप सभी के उत्तर के लिए धन्यवाद।
0: सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा।
1: नवयुवक, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तुम चुपचाप खड़े रहे, क्या तुम्हें मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया?
5: महाराज ऐसी बात नहीं है, परंतु महाराज दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है।
1: हम फिर भी आपका उत्तर सुनना चाहते हैं।
5: इसमें संदेह नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान भी हैं और ईमानदार भी हैं, परंतु क्षमा करें महाराज, आपसे पहले भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं, जो बुद्धिमत्ता में आपसे तो बढ़ चढ़कर थे ही, ईमानदारी में भी वे आपसे बढ़ चढ़कर थे।
1: हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये लो आपका इनाम, हीरा।
5: धन्यवाद महाराज।
0: अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। उनके बीच कुछ चिंता का विषय था। वे आपस में कुछ दबी दबी आवाज में बातें करने लगे।
5: भाई क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा
10: हो? मुझे भी ऐसा हो सकता है।

0: नकली कैसे आ गया?
1: अरे मैंने तो कई लोगों से पता करवा,
0: सभी ने बोला कि नकली है।
2: महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय।
3: शांत, क्या समस्या है? आप सब इतने व्याकुल क्यों हैं?
1: महाराज क्षमा करें, हम सभी के मन में एक दुविधा है महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो हम पूछ ले महाराज।
3: कहिए, मेरी आज्ञा है, आप सभी निसंकोच कहिए।
1: धन्यवाद महाराज। महाराज हमने इन हीरों की जांच जौहरी से करवाई थी महाराज, लेकिन पता चला कि सारे हीरे तो नकली हैं महाराज।
3: क्या? और कोई शंका?
1: जी नहीं महाराज, आपने हमें जो भी दिया वो तो हमारे लिए उपहार ही है, बस केवल यही प्रश्न था महाराज, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया महाराज?
3: ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए, पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार होगा।
2: महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय।
3: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नकली हीरे, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। जरा सोचिए, राजा ने दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? सोचिए। आप कहेंगे उन्होंने झूठी प्रशंसा की थी। जी बिल्कुल सही। साथियों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा हम ना करें। यदि कोई बात अच्छी है तो उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर नहीं। और हाँ, याद रखिए, किसी की प्रशंसा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, लेकिन उसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे, कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनि अंकन मंजू कुमारी, कलाकार चांद मोहम्मद और मोहम्मद शमीम खान, मार्गदर्शन विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन और निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे।
6: नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ, अलग रूम में चल चलू।

0: तो सुनिए अपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्ता पूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और इस कार्यक्रम के बाद आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पोंगल।
2: ये कार्यक्रम भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध त्योहार पोंगल की रोचक जानकारी देते हुए उसके पौराणिक कारणों को भी विस्तार से बताता है और इस त्योहार के मनाए जाने की परंपराओं का बखान करता है।
1: पोंगल।
3: भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वो प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वो मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं, वो उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। यह संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का यह प्रमुख त्योहार है। ये जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बागीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष मास में आरंभ के 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है, इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठता है, तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं।

माडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा

माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है।

0: चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं, लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मानते हैं। महाराष्ट्र में ये तिल गुड़ का त्योहार है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। अरुणाचल प्रदेश में पानुंग का त्योहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्योहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोंगल।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से FM 100.4 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12 बजने को हैं। आइए अब सुनते हैं FM रेनबो लखनऊ के कार्यक्रम।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि राज्य की प्रगति के लिए उनका काम सराहनीय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने हमेशा लोगों के जीवन स्तर को सुधारने और सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। चालू वित्त वर्ष के लिए दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से अल्पकालिक उधार दर या रेपो दर को 5.25% पर तटस्थ रुख के साथ बनाए रखने का निर्णय लिया है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी सुरक्षा बल की वास्तविक शक्ति उसके प्रशिक्षित, अनुशासित और तकनीकी रूप से दक्ष कार्मिक होते हैं। ऐसे में ये आवश्यक है कि सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण व्यवस्था को अधिक व्यवहारिक और तकनीक आधारित बनाया जाए। कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश प्रांतीय आर्म्ड कांस्टेबलरी पीएसी एसडीआरएफ तथा उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के आधुनिकीकरण, क्षमता विस्तार, प्रशिक्षण अवसंरचना विकास एवं भावी कार्य योजनाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएसी एसडीआरएफ और यूपीएसएसएफ प्रदेश की सुरक्षा प्रणाली के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और इन्हें भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप तैयार किया जाना चाहिए। वाराणसी में ब्रिक्स देशों के कल्चरल वर्किंग ग्रुप की 2 दिवसीय बैठक जारी है। बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधि सांस्कृतिक सहयोग के विभिन्न प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक के दौरान रचनात्मक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संस्कृति आधारित सतत विकास तथा जन से जन संपर्क को मजबूत बनाने जैसे विषयों पर चर्चा हो रही है। बैठक का समापन आज होगा। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: नमस्कार आदाब। 100.7 FM रेनबो पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती है आपकी होस्ट फातिमा। वक्त हो गया पटापट आपको वक्त बताने का। 12:04 और कुछ सेकंड्स हमारे स्टूडियो की कुकू क्लॉक में ये टाइम है प्रोग्राम स्वयं सिद्धा का। जी हैं, आज है शुक्रवार का दिन, तो आज प्रोग्राम स्वयं सिद्धा में क्या कुछ है, डिस्कशन का मौजू क्या है, सब बताऊंगी आपको। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पॉजिटिव नोट जिस पर आगाज करेंगे प्रोग्राम का, और वो ये है कि भाई अपने अंदर इतनी पॉजिटिविटी ले आइए कि चलते फिरते भी आप जिससे भी बात करें, चाहे वो आपका नोन हो या अननोन, आपके एंड से निकला हुआ, आपके मुंह से निकला हुआ हर एक अल्फाज अगले आदमी को किसी ना किसी पॉइंट पर हिट कर जाए, थोड़ा सा पॉजिटिव कर जाए। देखिए, ये जो कुछ पल कुछ क्षण आप दे सकते हैं ना अगले को, ये इतने इत्मीनान भरे होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो बस इसी नोट पर आगाज करेंगे इस प्रोग्राम का और आज के इस दिवस की। जी हाँ, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, इसकी आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। और एक जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है कि भाई हमें अपने पर्यावरण को संरक्षित करना है। तो बस इसी नोट पर आगाज करेंगे इस प्रोग्राम का एक बेहतरीन से ट्रैक के साथ। लेकिन उस ट्रैक को आप तक पहुँचाने से पहले एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर, जो है धड़कन लखनऊ की।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

ऑलराइट, 12:10 का वक्त हो गया है और उम्मीद है कि अब तक सब लोग नाश्ता कर चुके होंगे। जी हाँ, कई लेट राइजर्स होते हैं ना, जिनको नाश्ता करने में बहुत देर हो जाती है, दोपहर के खाने का टाइम हो जाता है। तो अगर ऐसा है तो प्लीज, नाश्ता का टाइम आप ऑलरेडी गंवा चुके हैं, तो थोड़ा सा जागरूक हो जाइए इस बारे में भी। अच्छा, फिलहाल आज का जो प्रोग्राम है उससे जुड़ी कुछ बातें कर लेते हैं भाई। आज स्वयं सिद्धा में हम सेलिब्रेट करेंगे उन फीमेल्स को, उन विमेन को, उनके काम को जो वर्किंग भी हैं और जिन्होंने बहुत अपने एंड पे, अपने स्तर पे जो भी हो सका पर्यावरण के लिए किया और काफ़ी सराहनीय काम किया है उन्होंने। देखिए भाई, अगर हम मतलब बहुत ही जनरलाइज्ड वे में बात करें तो कोई भी बड़ा सामाजिक परिवर्तन महिलाओं के बिना नहीं हो सकता है। पर्यावरण प्रबंधन और विकास में महिलाओं का योगदान बेहद ज़रूरी है। इतिहास से लेकर प्रेजेंट टाइम तक अगर हम माने तो भाई कहा जा सकता है कि महिलाओं ने साबित कर दिखाया है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं भारतीय इतिहास में, कई ऐसी महिलाओं का नाम दर्ज है जिन्होंने खास तौर से पर्यावरण के लिए तमाम स्टेप्स, तमाम कदम उठाए हैं। और खासकर से आदिवासी महिलाओं ने वन संपदा, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ऐसी कुछ महिलाओं का जिक्र हम आज इस प्रोग्राम में ज़रूर करेंगे आपके साथ, और आप से उन महिलाओं के जो इनिशिएटिव्स हैं उनको भी साझा करेंगे। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको रहना पड़ेगा कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर। और फिलहाल वक्त हो गया एक और छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, और उसके बाद बातें हमारी कंटिन्यूड रहेंगी। सो स्टे ट्यून एंड कीप एंजॉइंग।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: जिंदगी बहुत कीमती है,
3: उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

मतलब इन्होंने अपना जो जीवन है उसको समर्पित कर दिया पर्यावरण के लिए। अब इस फेरिस्त में अगर हम थोड़ा डिटेल में बात करें तो राजस्थान का खेजड़ली आंदोलन महिलाओं में स्थित पर्यावरण चेतना को सामने लाने का एक सशक्त उदाहरण है। अब हुआ ये था कि भाई उस दौर में सन 1730 की बात है तकरीबन, ये उस दौर में जो महाराजा थे जोधपुर के, उन्होंने मतलब किसी वजह से उनको लकड़ी की ज़रूरत पड़ी जिसके लिए गांव गए उनके सिपाही। लेकिन एक महिला थी उसी गांव की, अमृता देवी जी, तो इन्होंने काफ़ी विद्रोह किया और विरोध किया इस बात का कि पेड़ों को नहीं कटने देना चाहिए, और अपने साथ बाकी कई महिलाओं को साथ में जोड़ा, जो आगे चल करके सब मतलब मिल करके सब ने इस चीज़ के ऊपर, इस बात पर विरोध किया कि अपने इर्द गिर्द के जो पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, उसे हम नहीं काटने देंगे और उसको उसकी संरक्षण उसका संरक्षण किया। इसके अलावा अगर इस तरीके से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो चिपको आंदोलन, जी हाँ, हम सब इस आंदोलन से इत्तेफाक रखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। ये आंदोलन पेड़ों को बचाने का एक ऐतिहासिक और नायाब संघर्ष है। इस आंदोलन की मुख्य संचालक महिलाएं ही थीं और गौरा देवी इस आंदोलन की प्रमुख महिला थी, जिन्हें चिपको आंदोलन की जननी भी कहा जाता है। गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने अपने प्राणों की परवाह किए बगैर पेड़ों से चिपक कर खड़ी रही महिलाएं, और मजबूत इरादों को दिखाया, उस मजबूत इरादों की जो झलक थी वो दिखी उनके इस अप्रोच के साथ। और फाइनली सबको हार माननी पड़ी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और आंदोलन मेरे जहन में आ रहा है और काफ़ी फेमस भी है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। पर्यावरण और विकास के नए पैमानों को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनाया था। ये आंदोलन आम लोगों के बीच काफ़ी चर्चा में रहा है। मेघा पाटकर ने इस आंदोलन में सक्रिय मुख्य भूमिका निभाई है और वो वर्तमान में भारत की प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, जिसके लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन रिबन पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया है। इसके अलावा उन्हें कई स्वदेशी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये सब महिलाएं कहीं ना कहीं इन्होंने सशक्तिकरण किया है, इन्होंने एम्पावरमेंट प्रोवाइड किया है हमारा जो पर्यावरण है उसको बचाने के लिए। तो इस तरीके की बहुत सारे लोग हैं जो कनेक्टेड हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो कनेक्टेड हैं, आपके आसपास आपके नेबरहुड में बहुत सी महिलाएं होंगी जो कनेक्टेड होंगी। तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके बारे में हम आज शायद प्रोग्राम में डिस्कशन ना भी कर पाए, लेकिन हाँ, हम सब की बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जिम्मेदारी है कि उनकी हम वैल्यू करें और उनके जो पर्सपेक्टिव है उसको समझें और उसको अपने दिनचर्या में फॉलो करें। तो बस इसी नोट पर एक और बेहतरीन सा ट्रैक एंजॉय करिए, रहिए कनेक्टेड हमारे साथ।

अगर हम अपनी संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं और रीति रिवाजों को देखें तो साफ झलकता है कि प्राचीन काल से ही महिलाएं किसी न किसी बहाने से पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं। भारत में महिलाओं ने पर्यावरण के प्रति मनुष्य के लगाव को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया है। और कहीं ना कहीं देखिए, ये जब इन आंदोलन में ये सब महिलाएं कनेक्ट हुई, तो ये

0: चलते चलते फिल्म का ये ट्रैक अभी आपने एंजॉय किया 100.7 FM रेनबो पर, और मैं भी आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ. सुनाना ये चाहती हूँ कि अगले कुछ ही पलों में, अब आज के इस विशेष दिन पर, हम सुनेंगे बातचीत अनुराधा गुप्ता जी के साथ. लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक. सो स्टे ट्यून एंड कीप एंजॉइंग 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की.
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है.
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा. जानो फिर मानो.
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण.
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी. देश के विकास में सहभागी बने.
5: मेघा, आज ना हमारे कार्यक्रम में आई हुई हैं अनुराधा गुप्ता जी, जो कि सोशल इनोवेटर हैं, वेलनेस मेंटोर हैं और संस्थापक हैं पृथ्वी इनोवेशंस की. और पता है वो क्या कहती हैं?
6: क्या?
5: पेड़ लगाएंगे तो रुमित्र बन जाएंगे. तो चलो इनका स्वागत करते हैं.
6: नमस्कार अनुराधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी लखनऊ में.
7: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेघा जी और सीमा जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है.
6: अनुराधा जी, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को आसान सी भाषा में बताइए कि मिशन लाइफ आखिर है क्या.
7: मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ये बहुत ही अच्छा एक सुंदर सा विचार था जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2021 में उन्होंने इस विचार को लेके एक पहल शुरू करी, और 2022 में 2 अक्टूबर को मिशन लाइफ ऑफिशियली लॉन्च हुआ और हमारे पूरे विश्व ने इस विचार को अपनाया. और लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इसका अच्छा. संक्षेप में ये मतलब है कि कैसे हम अपनी रोजमर्रा की जीवन में अपनी जीवन शैली को पर्यावरण के अनुकूल रखें. तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मिशन लाइफ में हमारे 7 बिंदुओं पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है. मैं जल्दी से आपको नाम बताती हूँ कि कैसे हम पानी के संरक्षण, सेव वाटर, सेव एनर्जी, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, रिड्यूस वेस्ट, रिड्यूस ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, और अडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम, कि हमारा जो खाने की जो पद्धति है, जो हमारे खाने का तरीका है, वो भी कैसे हम सस्टेनेबल बना सकते हैं. और फाइनली अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल, जो बहुत ही अहम हिस्सा है इस पूरे मिशन का. और मैं एक प्यारा

0: ऐसा कबीरदास जी का दोहा है जो पूरे मिशन लाइफ का एक निचोड़ है, वो हेल्दी लाइफस्टाइल जो बहुत ही अहम हिस्सा है इस पूरे मिशन का। और मैं एक प्यारा सा कबीरदास जी का दोहा है जो पूरे मिशन लाइफ का एक निचोड़ है वो प्रस्तुत करता है आपके सामने। मैं श्रोताओं के बीच ये दोहा जरूर रखना
1: जी
0: चाहूंगी।
1: बिल्कुल।
0: साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। कबीरदास जी ने इतनी प्यारी अपनी वाणी में इस बात को रखा है कि हम लोग जो एक ओवर कंजम्पशन की तरफ भाग रहे हैं, तो अगर हम सब लोग संतुष्ट हो जाएं, कंटेंटेड हो जाएं, हम भी खुश रहेंगे और हमारी प्रकृति भी हमेशा हरी भरी, सुंदर, स्वच्छ और स्वस्थ रहेगी।
2: अनुराधा जी, अभी आपने प्रकृति के बारे में इतनी अच्छी बातें कही, क्यों ना अपने श्रोताओं को कोई गीत सुनवा दें, आप क्या कहती हैं?
0: बिल्कुल, आपने तो मेरे मन की बात ले ली। एक बहुत प्यारा सा गीत है, आपने सुना होगा, ये पौधे, ये पत्ते, ये फूल और हवाएं।

लगाओ। वाकई अनुराधा जी, बहुत ही खूबसूरत गाना है। और अभी आप हमें पहले बता रही थी कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल से संबंधित बातें, तो ऐसी कौन सी रोजमर्रा की आदतें हैं जिन्हें हम

0: अपनाकर अपनी जीवन शैली को तो स्वस्थ बनाएंगे ही और साथ में हम पर्यावरण की मदद भी कर सकते हैं।
1: मेघा जी, मैं बताना चाहूंगी कि हमारे सभी श्रोता सुन रहे होंगे और डेली हमारा जीवन शुरू हो जाता है, तो पूरे दिनचर्या में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनका हम ध्यान रख के, तो एक छोटा सा प्रिंसिपल है, आप सबने रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल करके ये तीन शब्द सुने होंगे, बट इसी को मैं थोड़ा सा बढ़ा के बताना चाहूंगी कि सबसे पहले हमारे अंदर रिस्पेक्ट, सब चीजों के लिए सम्मान अगर हमारे दिल में होगा तो जिसका हम सम्मान करते हैं हम उसको बर्बाद नहीं करेंगे या उसको दुख नहीं पहुंचाएंगे। तो मैं बस ये 10 प्रिंसिपल्स हैं जो 10 आर्स के नाम से मशहूर हैं, हमारी पूरी फिलॉसफी ये रही है। तो रिस्पेक्ट, रीथिंक, पुनः सोचें, विचार करें कुछ भी करने से पहले, कोई डिसीजन लेने से पहले। फिर रिवाइव, जो हमारी बहुत अच्छी कल्चरल जो रीतियां थी जिसमें पर्यावरण रचा बसा था, मतलब हम लोग बहुत सस्टेनेबल थे बिगनिंग ईयर्स की अगर हम बात करें, बट ओवर द ईयर्स हम लोग मतलब मूव कर गए सस्टेनेबिलिटी की तरफ से हटके, हम बहुत ज्यादा उपभोगी बन गए। तो रिस्पेक्ट करें, रीथिंक करें, रिवाइव करें अपनी पुरानी अच्छी आदतों को, रिपेयर करें, रिपेयर का कल्चर बिल्कुल चला गया, अब जो चीज होती है यूज एंड थ्रो, जरा सा भी कुछ फट गया तो लगता है नया खरीद लूंगा, क्यों दोबारा, चाहे जूता हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे कोई भी चीज हो, तो रिपेयर कल्चर। फिर हमारा आता है रीयूज, रिड्यूस, रिफ्यूज, बहुत ही अहम है, कोई भी संसाधन आप ले तो रिफ्यूज करना जरूरी, एक्स्ट्रा पैकेजिंग, आजकल ग्लैमर की दुनिया हो गई है, सब लोग इतना ज्यादा पैकेजिंग करते हैं, इतनी सारी चीजें उसमें लग जाती हैं और वो हमारा वेस्टेज होता है, गिफ्ट के बाद वो सारा चीज हमारा वेस्ट में चला जाता है और सिंगल यूज है वो। और रिवाइव करें अपनी अच्छी आदतों को, अच्छे विचारों को, और एक अच्छी जीवन शैली जीने के लिए जो हमारे हमारे सभी पूर्वजों ने भी बताया है कि नेचर के साथ कनेक्ट कब होता है, जब हम सुबह उठे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना, योग करना, टहलने जाना, अच्छा खाना खाना, जो लोकल हमारा फूड है जो हमारे आसपास मिलता है, तो उससे हमारे जो लोकल फार्मर्स हैं उनको भी मदद मिलेगी, और हम प्रोसेस्ड फूड की तरफ तो बिल्कुल ही ना बढ़ते जाएं, क्योंकि जितना ज्यादा हम प्रोसेस्ड और केमिकल से भरा हुआ खाना अपने फ्रिजों में रख रहे हैं, खा रहे हैं, उससे हमारा, आप जानते हैं, आप प्लास्टिक वेस्ट भी जनरेट हो रहा है,
2: बिल्कुल, और बीमारियां भी कितनी बढ़ रही हैं,
1: बीमारियां भी बढ़ रही हैं, बिल्कुल। और जो हमारा उत्पादन हो रहा है, जब ये बनाया जा रहा है, उनको प्रिजर्व करा जा रहा है, तो प्रिजर्व करने के लिए कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ सके उस खाने की और आप तक पहुंच सके, तो जितना ज्यादा हम ऑनलाइन, ये जो हमारा फूड जो चेन है पूरी हमारी सस्टेनेबल डाइट की तरफ से हम बिल्कुल हट गए, तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल के साथ साथ रिस्पेक्ट, रीथिंक, रिवाइव, रिफ्यूज, रिपेयर और रीपर्पस। अगर हमारा कोई चीज वेस्ट होगी, हमारे कपड़े हैं, पहले हमारी सब दादी नानी अच्छे से करती थी, क्यों सीमा जी आपको भी याद होगा।

0: फास्ट मिलता है, तो उससे हमारे जो लोकल फार्मर्स हैं उनको भी मदद मिलेगी, और हम प्रोसेस्ड फूड की तरफ तो बिल्कुल ही ना बढ़ते जाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा हम प्रोसेस्ड और केमिकल से भरा हुआ खाना अपने फ्रिजों में रख रहे हैं, खा रहे हैं, उससे हमारा, आप जानते हैं, आप प्लास्टिक वेस्ट भी जनरेट हो रहा है
1: बिल्कुल,
2: और बीमारियां भी कितनी बढ़ रही हैं,
0: बीमारियां भी
2: ना?
0: बढ़ रही हैं बिल्कुल। और जो हमारा उत्पादन हो रहा है, जब ये बनाया जा रहा है, उनको प्रिजर्व करा जा रहा है, तो प्रिजर्व करने के लिए कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ सके उस खाने की और आप तक पहुंच सके, तो जितना ज्यादा हम ऑनलाइन, ये जो हमारा फूड जो चेन है पूरी, हमारी सस्टेनेबल डाइट की तरफ से हम बिल्कुल हट गए, तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल के साथ साथ रिस्पेक्ट, रीथिंक, रिवाइव, रिफ्यूज, रिपेयर और रीपर्पस। अगर हमारा कोई चीज वेस्ट होगी, हमारे कपड़े हैं, पहले हमारी सब दादी नानी अच्छे से करती थी, क्यों सीमा जी आपको भी याद होगा, आपके घर में कुछ भी चीज फट जाती थी तो दादी लोग फेंकने नहीं देते थे, कहते थे इसका पोछा बन जाएगा,
2: पुराने कपड़ों से नए कपड़े बना दिए,
0: कपड़े बन, थैला बन गया, पोछा बन गया, झाड़न बन गया,
2: कुछ भी इस्तेमाल हो जाता था, पंखे भी बनते,
0: पंखे
2: पंखे बनते थे।
0: तो अभी क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, क्लाइमेट एक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, तो मिशन लाइफ जो है हमें इन सब चीजों को जोड़ के कि कैसे हम अपने जीवन में सब चीजों का

0: अभी हम लोगों ने गाने में सुना तारे कितने अच्छे लगते हैं, और कहीं ना कहीं मैं सोच में पड़ गई कि क्या हमारा आसमान स्वच्छ बचा है। जब नए नए प्रयोग होते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात चिंता का विषय बन जाती है। अब एक और मेरे मन में सवाल आपकी बात को सुन के आया, 10 हमारे आर्स हैं, तो आप रिड्यूस में ई वेस्ट के लिए आप श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे कि इस पर वो कैसे कमी ला सकते हैं जब प्रयोग करते हैं?
1: बिल्कुल, ये बहुत ही अहम सवाल है क्योंकि आजकल हम लोग डिजिटल एज में जी रहे हैं
0: जी।
1: और जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी का साथ भी जरूरी है विकास के लिए। बट जब हम टेक्नोलॉजी के साथ की बात करते हैं तो हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है, और जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदते हैं तो सबसे पहले एक मूल्यांकन करें कि क्या सच में हमें इसकी जरूरत है।
0: बिल्कुल।
1: और अगर जरूरत है तो अगर हमारे पास पुरानी पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल्स पड़े हैं, बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, तो पहले हम उनको कैसे सही तरह से निस्तारित करें। तो उसको निस्तारित करने के दो ऑप्शन हमारे पास रहते हैं कि या तो हम जिसके पास नहीं है
0: हाँ।
1: उसको डोनेट करने की पहल करें, और या कोशिश करें कि अगर हमारा वही मोबाइल कुछ छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है उसमें तो उसको क्या हम रिपेयर करा सकते हैं, रिपेयर करा के क्या वो ठीक हो सकती है, चाहे वो हमारा लैपटॉप हो, चाहे हमारा डेस्कटॉप हो, चाहे हमारे इलेक्ट्रॉनिक और भी गैजेट्स हमारे घर में यूज होते हैं। तो रिपेयर का कल्चर बहुत जरूरी है, रिस्पॉन्सिबल खरीद बहुत जरूरी है कि हम जब भी खरीदें बहुत रिस्पॉन्सिबली खरीदें। डिस्पोज करने के लिए नॉर्मल गार्बेज में डाल देते हैं जो कि बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि उसमें बहुत तरह के ऐसे पदार्थ होते हैं जो बहुत डेंजरस होते हैं, केमिकल्स
0: हाँ,
1: होते
0: हाँ.
1: हैं, लेड होता है, सिलिकन होता है, आर्सेनिक होता है, कैडमियम होता है। रीपर्पस या

0: रीयूज करने के लिए सही, हाँ सही जगह पे
1: सही
0: गई,
1: हाथों में
0: हाँ
1: पहुंचे।
0: सही हाथों में पहुंचा है, उसको नॉर्मल वेस्ट की तरह अपने घर के वेस्ट के साथ मिक्स ना करें।
1: हाँ, मैं वो बात ज्यादा अच्छी लगी कि हम डोनेट कर दें।
2: बिल्कुल
1: उसे
2: डोनेट
1: क्या है
2: कर
1: ना,
2: दें।
1: हमने तो इस्तेमाल किया ही, साथ में हमने किसी को अगर इस्तेमाल के लिए दे दिया तो चीज काम भी आएगी, बचाव भी होगा हमारी
2: बिल्कुल
1: प्रकृति का।
2: जी। और अनुराधा जी आपने एक बहुत अच्छी बात कही। अक्सर क्या होता है ना हमारे घर में कि अब जैसे ये चलन हो गया है कि घर में चार कमरे हैं तो चार कमरे में अलग अलग टीवी होगा,
0: जी
2: तो
0: बिल्कुल
2: लोगों की जरूरतें बहुत ज्यादा बढ़ गई
0: बढ़ गए
2: हैं।
0: हैं
2: ऐसे में बिजली का कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा बिजली खर्च होती है।
0: जी
2: बिजली का बचाव भी हमारी
0: बिल्कुल।
2: बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है पर्यावरण को बचाने के लिए। तो इस बारे में आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना
0: मिशन
2: चाहेंगी?
0: लाइफ में सेफ एनर्जी एक अपने आप में बहुत बड़ा बिंदु रखा गया है। और जब हम बिजली की बात करते हैं तो बिजली आती कहाँ से है, सबसे पहला सवाल ये उठता है। तो बिजली सब हमारे श्रोता जानते
2: हाँ
0: हैं
2: हाँ
0: कि बिजली हमारी कोयले से आती है, और कोयले में
2: बिल्कुल
0: जब आती है तो हमारे फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं। तो ये सारी जो ऊर्जा जो उत्पादन में जो हमारी क्षमताएं इस्तेमाल हो रही हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी क्लाइमेट चेंज जो हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी निर्भर है। तो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में देखें कि कहाँ पे हम बिजली के प्रयोग को सीमित कर सकते हैं। अक्सर जो आपने बात कही चार कमरों में लोग अलग अलग बैठे हुए हैं, तो क्या हम एक साथ नहीं बैठ के टीवी देख सकते? क्या हम जब कमरे से निकल के बाहर जा रहे हैं तो क्या हम स्विच बंद नहीं कर सकते? ये बहुत छोटी छोटी चीजें और सबको पता है, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूं, बट हम कर नहीं पाते। तो मिशन लाइफ का पर्पस ही ये है कि हम करने की तरफ अग्रसर हों। तो सेव एनर्जी में यही सारी चीजें कि हम गैजेट्स भी खरीदें तो 5-स्टार एनर्जी रेटिंग देखें उसकी, खरीदते
1: जी
0: समय की एनर्जी रेटिंग क्या है, सही जगह से खरीदें,
1: हाँ
0: और बिजली का कोई प्रोडक्ट अगर हमारा वो हो गया तो उसको सही तरह से डिस्पोज करें, और सबसे पहले रिस्पॉन्सिबली हम हर चीज को यूज करें, अल्टीमेटली वही बात आ जाती है।
1: जी ये तो बहुत अच्छी आपने बात कही। इसी तरीके से एक और बात मेरे दिमाग में आती है कि सिंगल यूज प्लास्टिक, ये भी एक बड़ा मुद्दा है आज के दौर में। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी?
0: सिंगल यूज प्लास्टिक, बिल्कुल आपने ठीक कहा। हर चीज में, पैकेजिंग में, आप चाहे गिफ्टिंग हो, पैकेजिंग हो, कुछ भी सामान खरीदते हैं तमाम हमारे पास पैकेजिंग मटेरियल आ जाता है और वो किसी काम का नहीं होता। तो ये शायद पहले हमें खुद
1: हाँ
0: सीखना है
1: हाँ
0: कि बिजली हमारी कोयले से आती है, और कोयले में जब आती है तो हमारे फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं। तो ये सारी जो ऊर्जा जो उत्पादन में जो हमारी क्षमताएं इस्तेमाल हो रही है, तो उसकी वजह से भी हमारी क्लाइमेट चेंज जो हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी निर्भर है। तो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में देखें कि कहाँ पे हम बिजली के प्रयोग को सीमित कर सकते हैं। अक्सर जो आपने बात कही चार कमरों में लोग अलग अलग बैठे हुए हैं, तो क्या हम एक साथ नहीं बैठ के टीवी देख सकते? क्या हम जब कमरे से निकल के बाहर जा रहे हैं तो क्या हम स्विच बंद नहीं कर सकते? ये बहुत छोटी छोटी चीजें और सबको पता है, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूं, बट हम कर नहीं पाते। तो मिशन लाइफ का पर्पस ही ये है कि हम करने की तरफ अग्रसर हों। तो सेव एनर्जी में यही सारी चीजें कि हम गैजेट्स भी खरीदें तो 5-स्टार एनर्जी रेटिंग देखें उसकी,
1: जी
0: खरीदते समय की एनर्जी रेटिंग क्या है, सही जगह से खरीदें,
1: हाँ
0: और बिजली का कोई प्रोडक्ट अगर हमारा वो हो गया तो उसको सही तरह से डिस्पोज करें, और सबसे पहले रिस्पॉन्सिबली हम हर चीज को यूज करें, अल्टीमेटली वही बात आ जाती है।
1: जी ये तो बहुत अच्छी आपने बात कही। इसी तरीके से एक और बात मेरे दिमाग में आती है कि सिंगल यूज प्लास्टिक, ये भी एक बड़ा मुद्दा है आज के दौर में। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी?
0: सिंगल यूज प्लास्टिक, बिल्कुल आपने ठीक कहा। हर चीज में, पैकेजिंग में, आप चाहे गिफ्टिंग हो, पैकेजिंग हो, कुछ भी सामान खरीदते हैं तमाम हमारे पास पैकेजिंग मटेरियल आ जाता है और वो किसी काम का नहीं होता। तो ये शायद पहल हमें खुद से करनी होगी कि कहाँ तक हम प्लास्टिक को रिफ्यूज कर सकते हैं।
1: हाँ
0: हम अक्सर बाजार जाते हैं तो इतनी सी जहमत नहीं उठाते कि हम अपने साथ थैले रख लें,
2: बिल्कुल
0: चाहे मोटरसाइकिल से जा रहे हो, चाहे कार में जा
1: हाँ,
0: रहे हो।
1: ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही।
0: बच्चों को भी मैं चाहूंगी कि मदर्स जो है बच्चों को भी, बच्चों की तरफ से ये पहल होती है कि बच्चे अपने बैकपैक में एक थैला रखे रहे,
1: हाँ
0: हस्बैंड जा रहे हैं ऑफिस तो वो भी एक कुछ ना कुछ अपने गाड़ी में कार में रखे रहिए थैला। तो जब भी आपको कुछ इमरजेंसी में भी खरीदना है तो आप पॉलिथिन नहीं लेंगे वेंडर, और कोई देता भी है आपको तो आप उसको मना करिए
2: मना कर
0: कि
2: दें।
0: नहीं
2: हाँ
0: मेरे पास थैला है। तो सबसे सरल तो जो हमारे पुराने बुजुर्ग लोग करते थे कि जाते थे तो थैला लेके जाए, दूध भी आता है तो दूध के पैकेट्स तमाम है, टेट्रा पैक्स तमाम है, और
1: हाँ
0: सिंगल यूज प्लास्टिक में तमाम चीजें आती हैं, जितना भी हम जो चीजें फूड से रिलेटेड हमारे कंटेनर्स हैं, ब्लैक कंटेनर्स जो बहुत ही डेंजरस होते हैं, फिर फोक्स हैं, तो अब स्ट्रॉ जो होता था प्लास्टिक
1: हाँ
0: स्ट्रॉ जब
1: हाँ
0: हम कुछ
1: हाँ
0: पीते हैं, तो ये सारी चीजों को हम एक कंज्यूमर की तरह अवेयर हों और जागरूक होकर मना करें जब भी हम कुछ उपभोग करें तो ये सब चीजों का उपयोग ना करें। तो हम रिफ्यूज जब तक नहीं करेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक खत्म नहीं होगा, और रिफ्यूज करें, रिड्यूस करें, और साथ में उसको अगर आ जाते हैं तो रीयूज करते जाएं। अगर गलती से एक पॉलिथिन आ भी गया तो उस पॉलिथिन को ही हम पूरा हफ्ता पूरा महीना चलाते रहें जब
2: बिल्कुल,
0: तक वो
2: जब तक कि
0: बिल्कुल,
2: वो बिल्कुल
0: और
2: वेस्ट ना हो
0: हाँ
2: जाए,
0: जब वो वेस्ट हो जाए तो
2: खत्म।
0: उसको सेग्रीगेट करके डालें, उसको मिक्स करके ना डालें, ये बहुत ही जरूरी है।
2: हाँ ये
0: हम
2: बात
0: अपने वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ
2: जी, ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि जैसे कि कहा जाता है कि जागरूक भी करती है सरकार समय समय

0: पर कि जब हम अपने घरों से कूड़ा बाहर निकालते हैं
1: जी
0: तो उसमें गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा को अलग अलग कर दें।
1: जी
0: रसोई से डस्टबिन तक का जो सफर होता है ये इसके लिए पूरी जिम्मेदारी होती है घर की महिला की।
1: बिल्कुल।
0: तो आप ये बताइए कि घर की महिलाएं भी मिशन लाइफ में अपना योगदान कैसे दे सकती हैं?
1: मैं तो चाहूंगी कि घर की महिलाएं नहीं, पूरा घर, पूरा परिवार प्रबंधन करें। हमारे
0: बिल्कुल
1: सब लोग कचरे को जनरेट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे
0: सही।
1: हैं, तो सबकी उतनी ही जिम्मेदारी है। हमारा ड्राई कचरा जो रिसाइकलेबल है, प्लास्टिक वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, हमारा लोहा लकड़ी, तो ये सारा हमारा ड्राई वेस्ट है जो रिसाइकल रिपर्पस हो सकता है, उसको हम अलग रखें और गीले कचरे के साथ कभी भी मिलाएं नहीं। और फिर हमारा एक होता है हजार्डरस कचरा, जो हमारी बैटरीज हैं, जो हमारे पेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी तमाम चीजें हम यूज करते हैं जिसमें केमिकल्स होते हैं, हमारे डायपर्स हैं, सैनिटरी नैपकिन हैं, तो ये सब हम बिल्कुल अलग रखें। तो तीन कैटेगरीज में सेग्रीगेशन कायदे से होना चाहिए घर के स्तर पे भी, और सिस्टम भी वैसा ही होना चाहिए। सरकार की तरफ से भी ये पहल होनी चाहिए कि वो तीनों को अलग अलग ही ले जाने की व्यवस्था बनाए। तो पहली बात तो ये। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक व्यक्ति क्या कर सकता है कि अलग अलग रखने की कोशिश तो करे। मुश्किल
0: बिल्कुल
1: है,
0: कर सकते
1: चैलेंजिंग
0: हैं।
1: होता है,
0: हाँ
1: बट क्योंकि आदत नहीं पड़ी है, आदत मिला है, ठीक है। और उसके बाद फिर खाद बनाने की जो पहल है, तो हमारा जितना भी सब्जी के छिकल है उससे कितनी सुंदर, सीमा जी और मेघा जी आपने कभी उपयोग करा है कि नहीं, बट
0: बिल्कुल
1: इतनी
0: किया है।
1: सुंदर खाद
0: नहीं, मैंने
1: बनती है।
0: कोशिश की ही खाद
1: हाँ
0: बनाने की, थोड़ा सा फल हुई, लेकिन हाँ थोड़े से कई बार उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं, तो ऐसे में लगता है कि छुआ कैसे जाए, तो ऐसे में ग्लव्स पहन के हम इस्तेमाल करते हैं उनका, लेकिन कोशिश मैंने की। देखिए
1: तो वही मैं बता रही हूँ कि मिशन लाइफ बार बार इस बात के ऊपर जोर देता है कि हम खुद से करें, प्रयास करेंगे तो बदलाव आएगा। तो मैं वही कह रही हूँ कि खाद बना के आप अपने ही घर में, छोटे से आंगन में, घर आंगन को सुंदर सब्जियां, फल फूल आप गिफ्ट करिए, फिर अच्छी अच्छी ताजी सब्जियां गिफ्ट करिए, और इससे आप स्वस्थ भी रहेंगे और संसाधन भी बचेंगे, पानी की भी बचत होगी, बिजली की भी बचत होगी, क्योंकि तो सारी चीजें इंटीग्रेटेड है, मतलब सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जीवन का ताना बाना भी वैसा ही है और हमारे मिशन लाइफ भी वैसा ही है। तो ये जो सारे सात बिंदु हैं, सारे कनेक्टेड हैं, कोई थीम अपने आप में इंडिविजुअल आइसोलेटेड थीम नहीं है, सब मिलजुल के एक स्वस्थ स्वच्छ जीवन शैली की तरफ हमें बार बार धक्का देते हैं कि आप जाइए और इसको अपनाना शुरू करिए।
0: अब थोड़ा सा गीत संगीत और कर लेते हैं, क्यों हाँ मेघा, बिल्कुल,
1: है ना? तो अब आप कौन सा गाना सुनना
0: मुझे
1: चाहेंगे?
0: लगता है हम जिंदगी की बात कर रहे हैं, पर्यावरण की बात कर रहे हैं और एक सुंदर जीवन शैली की बात कर रहे हैं, तो बहुत प्यारा सा गाना है, आपने सुना होगा, लव यू
1: चलिए
0: जिंदगी।
1: सुनवा देते हैं मेघा इनको,
0: आइए
1: लव यू
0: सुन, लव यू
1: जिंदगी।
0: जिंदगी।

0: अनुराधा जी, बातें तो आपने ढेर सारी बताई, अब चलते चलते आप हमारी सखियों को क्या टिप्स देना चाहेंगी?
1: तो मिशन लाइफ में चाहूंगी हमारे सभी श्रोतागण इस बात का ध्यान रखें कि क्लाइमेट चेंज होने नहीं वाला है, हो रहा है, राइट? तो एक्शन हमें लेना है, कुछ आज से ही हमें ये सारी बातों को अपने जीवन में उतारना है। और कबीरदास जी का फिर से मुझे दोहा, मुझे कबीरदास जी बहुत पसंद है, उनकी सारी जो बातें हैं वो हमारे रोजमर्रा के जीवन में बहुत बहुत लागू होती हैं। तो प्यारा सा दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुर करे गो कब। तो हम टालते ना रहे चीजों को, प्रलय हो रही है, हम देख रहे हैं सारी चीजें किस तरह से हमारा पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, हमारी नदियां दूषित हो रही है, हमारे तालाब सरोवर सब खत्म होते जा रहे हैं, हरियाली खत्म हो रही है, फिर भी हम जग नहीं पा रहे हैं, हम सचेत नहीं हो पा रहे। तो बस करने की इच्छा होनी चाहिए।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी कि आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने हमें और हमारे श्रोताओं को जागरूक किया, इस मिशन लाइफ के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, बहुत अच्छे अच्छे टिप्स बताए।
1: आकाशवाणी लखनऊ को सबसे पहले मैं धन्यवाद जरूर देना चाहूंगी कि एक अवसर दिया कि हम लोग मिलके चर्चा कर सके। तो सीमा जी और मेघा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातचीत करते हुए।
2: हमें भी बहुत अच्छा लगा।
3: बारह बजकर 54 मिनट का वक्त और इस फ्रूटफुल टॉक के बाद मुझे लगता है कि काफी सारा माइंड

0: दिया कि हम लोग मिलके चर्चा कर सके। तो सीमा जी और मेघा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातचीत करते हुए।
1: हमें भी बहुत अच्छा लगा। बारह बजकर 54 मिनट का वक्त और इस फ्रूटफुल टॉक के बाद मुझे लगता है कि काफ़ी सारा माइंड में हमारे जो कहते हैं ना, जिसे कि हमारा जहन एक दूसरे डायरेक्शन में भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। कई बार हम कुछ ऐसी बातें सुन लेते हैं तो ऐसा कुछ ना कुछ हुआ ज़रूर होगा। मतलब आपकी जो डेली लाइफ है उसी को थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, और उसके बाद देखिए आप अपने आसपास के पर्यावरण और इन ऑल कहीं ना कहीं आप सोसाइटी के लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होने वाले हैं। तो बस इसी नोट पर वाइंड अप करेंगे इस प्रोग्राम को, इस बेहतरीन से ट्रैक के साथ, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर, जो है धड़कन लखनऊ की। और मुझे लग रहा है शायद एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक का टाइम है, सो स्टे ट्यून्ड।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

0: नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में इस वर्ष के 65 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषणाएं, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विश्व बैंक के सहयोग से 2741 करोड़ रुपए की लागत वाली एयर शेड आधारित उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया। उन्होंने पौधारोपण महाअभियान 2000
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एफएम रेनबो लखनऊ के कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, एफएम 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, आकाशवाणी बरेली एफएम 100.4 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। आइए अब सुनते हैं अनुरोध गीत।

अनुरोध गीत कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, आप भी तैयार हो जाइए अपने अनुरोध भरे पत्रों पर जो फरमाइशें आपने भेजी हैं वो गीत सुनने के लिए, और हम तैयार हो चुके हैं। जी हाँ, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। तो आज के कार्यक्रम अनुरोध गीत का आगाज करते हैं और पहला गाना आपको सुनवाते हैं फिल्म दो रास्ते से।

फिल्म दो रास्ते का ये गीत लता जी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा और इनका पूरा परिवार। इसी गीत में शामिल करते हैं आप सबको गाड़ी खाना चाईवासा झारखंड से जीवन विश्वकर्मा, मंजू विश्वकर्मा, नितिन सावन, सचिन और शक्ति। ये पत्र मिला है हजारीबाग झारखंड से वीरेंद्र भगत, मालती भगत, ऋषि और राहुल का। और हमारे ये साथी हैं शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनेना, सुकन्या, सविता भाकरे। और पत्र हमें भेजते हैं आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरज जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल, नंदनी जंघेल, धमधा ग्राम सुकरी कला से।

अमित जंघेल, शकुन आरुषि ओशिका आदित्य और अंजलि जंघेल। जिला मुरादाबाद, ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से आप हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून और इनका पूरा परिवार। तो आप सबके नाम करते हैं फिल्म दो रास्ते से ये गाना।

तो आकाशवाणी बरेली से अनुरोध गीत इस समय आप सुन रहे हैं। ये जो गीत अब आप सुनेंगे फिल्म नाम से है, मोहम्मद अजीज और साथियों की आवाजें। पसंद करने वाले आप सभी दोस्त हैं, आप हैं बरेली जंक्शन से गरीब भाई, नासिर भाई, सादिक भाई, मोहनलाल, विक्की भारद्वाज, पदम भारद्वाज, वीरेश सिंह चौहान, सोनू मिश्रा, प्रदीप पाल, नमन, शकूर मोहम्मद और इनके तमाम हमनवा। इसी गाने में शामिल करते हैं कस्बा शीशगढ़ से गुड्डू इदरीसी, मोहम्मद फरहान इदरीसी और इनके सभी साथी। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभ चंद्र बजाज और बिट्ठा बजाज, साहिल बजाज, मल्ला हलबैयान, शेरकोट जिला बिजनौर से आप हैं मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, राजी परवीन, बिट्टू, साजदा रानी, हिना कौसर और इनके सभी साथी। तो आप सबके नाम फिल्म नाम

आकाशवाणी बरेली एफएम 104 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर ऐप पर इस समय आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत। बाबू फिल्म से यह गाना है, लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को सुनना चाहते हैं कटर चांद खां, मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11, पुराना शहर बरेली से, अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल मौर्य, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोही और स्वाति मौर्य। इसी गीत में आपको साथ लेते हैं। आप हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां। हमारे ये साथी हैं मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गोगलानी, सुनीता जैन, सुनीता शर्मा, जगमोहन प्रजापति और इनके सभी साथी। तो आप सबके नाम फिल्म बाबू से ये गाना।

दोस्तों, ये आकाशवाणी बरेली FM 100.4 MHz है और इस समय आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत। अगला गाना ओह बेवफा फिल्म से हिमलता की आवाज है और गीत को पसंद करते हैं आप सब साथी। आदर्श ग्राम रोंधी चौबारी बरेली उत्तर प्रदेश से भगवान दास साहू, राम सेवक साहू, हीरा कली, मोहन पाल, सुनीता साहू और इनका पूरा साहू परिवार इसी गीत में साथ लेते हैं। छावनी अशरफ खां पानी की टंकी के पास होली चौक बरेली से राम प्रसाद शर्मा, जयश्री देवी, वंदना, मनोरमा देवी, अजय और इनके सभी साथी। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, राही सरिता गवाणकर, प्रिंस गवाणकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाणकर, प्रणीता अर्जुन और टुकटुक। बहादुरा नागपुर से आप हैं वैशाली, शैलेश गवाणकर, सुमित गवाणकर और ध्वनि गवाणकर, साथ हैं परी। तो आइए सुनते हैं आप सबके नाम फिल्म ओह बेवफा से ये गाना।

जी हाँ, आकाशवाणी बरेली है ये, और इस समय आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत। आइए अगला गाना आपको सुनवाते हैं फिल्म तीसरी आंख से। किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें हैं, आनंद बख्शी के बोलों को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और सुनना चाहते हैं कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिया निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कलंग गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। इसी गीत में आप सब दोस्तों को भी शामिल करते हैं। आप हैं मोहल्ला तलैया उड़ा जागीर से फजरुद्दीन भाई, अबरार भाई, अफजाल भाई और इनके सभी साथी। गैंगटा काशी धर्मपुर बरेली से फहीम खां, सिद्दीक अली, साबिया और इनके सभी साथी। और हमारे ये जो श्रोता हैं वो हैं ग्राम करेली पुरानी मस्जिद जिला बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद तबरेज अंसारी, अबरार हुसैन, बबलू, कैप्टन निसार और मस्तान बाबा। तो आप सबके नाम फिल्म तीसरी आंख से ये गाना।

अनुरोध गीता आप आकाशवाणी बरेली एफएम 14.4 मेगाहर्ट्ज पर इस समय सुन रहे हैं। जी हाँ, अगला गाना आपको सुन पा रहे हैं, फिल्म का नाम वक्त की दीवार। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें, अनजान के बोलों को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनना चाहते हैं रामवर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया और इनके सभी साथी। इसी गीत में साथ लेते हैं आप सबको। आप हैं पटेल नगर मलोड पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जजौरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू जजौरिया और इनका पूरा परिवार। और आप हैं बहेड़ी से अंजुम भाई, खालिदा बेगम, कहकशा और इनके सभी साथी। तो आइए सुनते हैं फिल्म वक्त की दीवार से ये गीत।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है एफएम 100.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बरेली और आप सुन रहे हैं न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से भी। हमें कार्यक्रम चल रहा है अनुरोध गीत, और इस कार्यक्रम में आपकी फरमाइश के पत्रों पर आधारित जो हमें फरमाइशें मिलती हैं उनके गीत हम प्ले करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको अगला गाना सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है गद्दार। बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की आवाजों में यह गाना है, और जिन दोस्तों ने इस गीत को सुनना चाहा है वो आप सब हैं। आप हैं हमारे ये साथी, कौन कौन हैं भाई? शिवाजी चौक राजीव छत्तीसगढ़ से, अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। इसी गाने में हम शामिल कर रहे हैं आप सब दोस्तों को। आप हैं दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता, सुरुचि, दिशा और लबी श्रीवास्तव अमरपुर पेंड्रा से। खुर्जा उत्तर प्रदेश से आप हैं तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। तो फिल्म गद्दार से ये गाना।

दोस्तों आकाशवाणी बरेली एफएम 104.4 मेगाहर्ट्ज और न्यूज होनी आईआरए पर इस समय आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत। अगला गाना आपको साजन का घर फिल्म से सुनवाते हैं। आवाजें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू के। आप सबके नाम ये गाना सिंधौली मीरगंज से जेशान वारसी इमरान शेख रेहान शेख, करूला मुरादाबाद से अयूब खान इरमगुड़िया शोएब खान और इनके सभी साथी। आप हैं जिला नांदेड़ यताला महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद, दुर्गेश्वरी जायसवाल और इनका पूरा परिवार। और आप सबके नाम फिल्म साजन का घर से यह गाना।

दोस्तों इस समय आप अनुरोध गीत सुन रहे हैं और आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म का नाम जानी दुश्मन। अब अजय किशोर कुमार, आशा भोसले, महेंद्र कपूर व साथियों की और अनुरोध भरे पत्र आप सबके। आप हैं विपिन कुमार शाके, सपना शाके, रविन्द्र शाके, राजेश, रमेश चंद्र, राजीव, प्रदीप शाके, रंजीत शाके, सिद्धार्थ शाके, कुमारी सुजाता शाके, संगमित्रा, कुमारी प्रज्ञा शाके और प्रतिज्ञा शाके, वीरपुर, बिलसड़, अलीगंज, एटा से। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इशहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा और इनका पूरा परिवार। शंकरपुर उसावा जिला बदायूं से सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र, आनंद, सनोज, अमन, सोनी, अंकिता, विनीता, अनीता, सुनीता, सूरत, श्री यादव और इनका पूरा यादव परिवार। तो आप सबके नाम आज के इस कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति लीजिए, सुनिए।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज के अनुरोध गीत कार्यक्रम से हमें चलने की अनुमति दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपका सफर खूबसूरत रहा होगा। फिलहाल हम चलते हैं। नमस्ते।

अभी आप सुन रहे थे अनुरोध गीत, हमारे साथी गजेंद्र यादव के साथ। यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। लीजिए प्रस्तुत है रसरंग। रसरंग में पहली प्रस्तुति है कैसर आजाद बदायूनी के स्वर में, ये कव्वाली।

0: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

या समोसे और रसगुल्ला रबड़ी थोड़ी थोड़ी ओ देवर रबड़ी थोड़ी थोड़ी हरिंदर अकेला।

0: रस रंग, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। आइए सुनते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
1: मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। कार्यक्रम की शुरुआत वासना फिल्म के गाने से, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें हैं, साहिल लुधियानवी के बोल।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सरस्वती चंद्र फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। इंदिवर के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है

0: और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

लता मंगेशकर की आवाज थी, साहिर लुधियानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था, फिल्म थी ताजमहल। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, जब हम किसी से मिलते या बात करते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में, उसकी सोच के बारे में पता करने के लिए एक छोटी सी मुलाकात ही काफी होती है। वो एक छोटी सी मुलाकात अक्सर ताउम्र के लिए हमें एक प्यारा सा दोस्त दे जाती है। बेपरवाह अल्हड़ सवालों और जवाबों से परे होती है ये मुलाकात। कई बार तो रोज रोज मिलने वालों से वो दिल की बात नहीं हो पाती जो एक छोटी सी मुलाकात से बने दोस्त से हो जाती है। इन छोटी छोटी मुलाकातों से ही रिश्ते उम्र दराज होते हैं। तो हाँ, मुलाकातों का सिलसिला चलते रहना चाहिए और हर मुलाकात के लम्हों की अहमियत को समझना चाहिए, क्योंकि इन छोटी छोटी मुलाकातों की यादों से पूरा जीवन खुशबू से भर जाता है। तभी तो हमें भी रहता है ना इस छोटी सी मुलाकात का इंतजार, जो हेलो सहेली के माध्यम से हमें हमारी सखियों से मिलवाती है और दे जाती है यादों में सहेजने वाले ढेर सारे खूबसूरत पल। तो खत्म हुआ इंतजार, देखते हैं कौन और कहां से है आज की हमारी पहली कॉलर।
1: हेलो
0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रही हैं?
1: मैं भावना बोल रही हूँ, आदमपुर बिहार से, हरियाणा से।
0: अच्छा, हरियाणा से बोल रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैम मैं घर से ही अपना बुटीक है मेरा, सिलाई करती हूँ।
0: यानी आपका बढ़िया कपड़ों का है ना?
1: हाँ जी।
0: तो इस समय अच्छा चल रहा है?
1: हाँ जी।
0: आप महिलाओं के कपड़े केवल बनाती हैं या सब मिक्स?
1: हाँ जी, महिलाओं के बनाती हूँ मैम, बच्चों के और महिलाओं के, सारी गारमेंट्स बनाती हूँ मैम।
0: बहुत अच्छी बात है, आप अपना खुद का काम कर रही हैं। और बताइए आप आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं सुनना चाहूंगी आज तेरा मेरा साथ है फिल्म का, तेरा मेरा साथ है।
0: बहुत प्यारा गाना है, तो चलिए सुनवाते हैं आपको ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम, नमस्ते। मैम
0: नमस्ते। कौन बोल रही हैं आप और कहाँ से?
1: स्वाति सिंह बोल रहे हैं, मनकापुर गोंदा उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं आपसे।
0: जी अच्छा, तो आप बताइए अब कि आप क्या कर रही हैं?
1: मैम हम पढ़ाई तो पूरी कर चुके हैं, आईटीआई कर रहे हैं और मैम घर का काम करते हैं और आपका प्रोग्राम सुनते हैं। रेडियो सुनने का शौक बहुत ज्यादा है।
0: अरे वाह, बहुत ही अच्छा शौक है आपका। और
1: हाँ मैम,
0: तो आप जो पढ़ाई कर रही हैं उसमें आपको अच्छा पूरा इंटरेस्ट आता है, पूरी दिलचस्पी रहती है उसमें?
1: हाँ मैम बैठी है, लेकिन इस समय गर्मी ज्यादा हो रहा है मैम, तो कहीं आना जाना नहीं हो पा रहा है, बस घर पे ही अपना तैयारी कर रहे हैं।
0: तो आपको मिल जाता है समय रेडियो सुनने
1: जी
0: का?
1: मैम मिल जाता है मैम, आज बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे तो आज आके मेरा कॉल लग गया, मेरा इंतजार खत्म हो गया और मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके।
0: बधाई हो आपको बहुत ज़्यादा। और आप अच्छे
1: यस
0: से अपनी
1: मैम
0: पढ़ाई करिए और साथ ही रेडियो भी सुनते रहिए। और आप
1: जी
0: अपने
1: मैम,
0: पसंद का कोई गीत बताइए जो आप सुनना चाहती हैं।
1: मैम मूवी का नाम है इज्जत और गाने की बोल है क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फिक्र छिपी रहे।
0: अच्छा, अरे वाह, बड़ी अच्छा गाना है।

0: शादी नहीं हुई और घर का काम काज करती हूँ और सभी कार्यक्रम सुनती हूँ आकाशवाणी के सभी केंद्रों के कार्यक्रम सुनती हूँ।
1: पढ़ाई आपने करी है, पढ़ाई करती हैं?
0: हाँ, पढ़ाई तो खत्म है, कब से मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है।
1: अच्छा, तो बताइए आपने क्या किया है?
0: मैं 10वीं पास हूँ जी।
1: अच्छा,
0: 10वीं पास।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: जी अभी अभी तो हमारे जो सिंगर है सुमन कल्याणपुर जी, उनका निधन हो गया है,
1: जी
0: तो
1: हाँ,
0: उनकी याद में एक गाना सुनेंगे। उनकी आवाज में तो जो भी उनके जो भी फिल्में हैं, मुझे तो याद नहीं फिल्मों के नाम, तो एक बढ़िया सा गाना उनकी याद में दे दीजिए।
1: बिल्कुल, मैं सुमन कल्याणपुर जी का ही मैं आपको एक गीत सुनवाती हूँ प्यारा सा।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: कौन बोल रहा है?
1: मैं बरगढ़ जिला उड़ीसा से सन प्रभाकर बोल रही हूँ।
0: अरे वाह, उड़ीसा से बोल रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: जी मैं तो घर में हूँ अभी तो।

0: अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो सहेली में। तो देखते हैं कौन और कहां से है हमारी सखी जिनका कॉल लगा है अभी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप पहले तो अपना नाम बताइए और फिर अपने शहर का नाम।
1: मैं इंदौर से ललिता मंडली।
0: अच्छा ललिता जी, इंदौर से बोल रही हैं। तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं अभी हाउसवाइफ हूँ
0: जी। तो अभी इस समय गर्मियों के दिन चल रहे हैं, तो आप क्या करती हैं गर्मियों से थोड़ा सा राहत पाने के लिए?
1: गर्मियों से राहत पाने के लिए अपने पारंपरिक तरीके, नींबू शरबत,
0: बढ़िया,
1: और दिन में धूप में कम निकलना।
0: ये तो बहुत अच्छा।
1: ज्यादा जरूरत है धूप में निकलना तो फिर डॉक्टर जाना।
0: हाँ, तो आपके घर में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में हम पति पत्नी और दो बच्चे हैं मेरे।
0: बच्चे छोटे हैं कि बड़े? बच्चे छोटे हैं आपके?
1: बड़े हो गए।
0: बड़े हैं, चलो सब सही है, परेशान नहीं करते होंगे आपको ज्यादा।
1: आप बड़े हो गए तो ज्यादा परेशान करते हैं।
0: अच्छा अच्छा, ऐसा है। ऐसा भी होता है कि छोटे बच्चों के पीछे पीछे भागो और बड़े बच्चों के भी पीछे पीछे भागो। जी बिल्कुल। तो
1: आपसे बात करके बहुत आनंद आ रहा है मैम, आपसे पहली बार बात हो रही है।
0: अच्छा जी, तो आप बताइए कि आप जैसे कि अपने जो बच्चे हैं उनको आप जो गर्मियों के दिनों में बढ़िया बढ़िया नींबू के शरबत और बढ़िया बढ़िया चीजें बना बना के देती हैं?
1: देती हूँ, एक ऑफिस आता है तो उसको थोड़ा कम समय दे पाते हैं, वो सुबह 9 बजे निकल जाता है।
0: अच्छा,
1: तो रात को ही आता है 9 बजे। अच्छा, छोटा वाला रहता है तो हम दोनों माँ बेटे मजे करते हैं घर में।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है फिर तो। क्या नहीं क्या, अच्छा टाइम अपना निकलता होगा आपका। तो आप बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं अनिल कपूर की फिल्म है कसम, उसका शीर्षक गीत सुनना चाहती हूँ। कसम क्या होती है, कसम क्या होती है, जो तोड़ी ना जाए, जो छोड़ी ना जाए।
0: चलिए ठीक है, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप बताइए कौन बोल रही हैं और कौन से
1: मैं
0: शहर से?
1: रेखा वर्मा बोल रही हूँ। मैं उज्जैन से।
0: अच्छा रेखा जी बोल रही हैं उज्जैन से। तो बताइए रेखा जी आप क्या करती हैं?
1: मैम हाउस वाइफ हूँ।
0: अच्छा तो आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ, एक लड़की है मेरी और एक बेटा है। अभी बेटे की शादी हुई है,
0: अरे
1: बहू
0: वाह,
1: जी ने।
0: यानी आप भी सासू माँ बन चुकी हैं ना।
1: जी, मैम अभी 2-3 महीने हुए हैं।
0: अरे वाह, तो आप कैसी सासू माँ हैं, कड़क वाली की अच्छी वाली?
1: नहीं,
0: नहीं, आप अच्छी वाली होंगी, आपकी आवाज से मुझे लग रहा है ऐसा कुछ। तो आप बताइए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है दिन में, मतलब अपने लिए जो समय बचता है उसमें आप क्या करना पसंद करती हैं?
1: मैम हम लोगों को तो घूमना अच्छा लगता है और शाम की टाइम तो हम रोज घूमने जाते हैं। मेरे साथ वाली फ्रेंड है बराबरी की,
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: हम रोज मतलब खाना खाने के बाद हम निकल जाते हैं साथ में घूमने के लिए।
0: चलिए इतनी अच्छी बात है ना, क्योंकि अपने दोस्त का जब साथ मिल जाता है ना तो समझिए फिर तो
1: जी
0: आप
1: मैम,
0: थोड़ा वॉक भी हो जाती है इस बहाने आपकी, और आपकी बातें भी हो जाती हैं, तो आपका जो तनाव भी
1: जी
0: थोड़ा बहुत रहता है ना वो भी खत्म हो जाता है। तो बहुत
1: हाँ
0: बहुत ही
1: बिल्कुल
0: अच्छा
1: जी,
0: आप करती हैं जो ये वॉक करती हैं और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वॉक करती हैं।
1: इसलिए मैम अच्छा लगता है उनके साथ। और अब थोड़ा टाइम और मिल जाता है, घर पे बहू आ गई तो अब टेंशन फ्री है थोड़े से।
0: बिल्कुल, यानी कि आप किसी सास हैं और आप भी किसी की
1: जी
0: सास
1: हाँ
0: हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बताइए आप कौन सा
1: जी,
0: गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे राजा और रंग मूवी का सुनना है मैम। तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है। तू
0: अरे वाह, क्या प्यारी सी पसंद है आपकी, तो सुनवाते हैं आपको ये आपका पसंद का गीत।
1: कितनी

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए आपका नाम पहले और अपने शहर का नाम।
1: मैं बोल रही हूँ भगवती सोलंकी, दिल्ली से।
0: दिल्ली से बोल रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती हैं।
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, यानी आप जो चार दीवारें हैं ना उनको घर बनाती हैं।
1: हाँ जी
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपकी
1: वो तो संभालना जरूरी है।

0: घर में तो सबसे, मैंने सब बाहर ही जाएंगे तो घर को ही कौन संभालेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा ना आप चार दीवारों को घर बनाती हैं। तो आपके परिवार में कौन कौन है?
0: मेरे परिवार में है, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरे बेटे, दो बेटे हैं, बहू है, मेरी एक पोती है 6 साल की।
1: अरे वाह, यानी आप, यानी आप सास भी बन चुकी हैं और दादी भी बन चुकी हैं।
0: हाँ जी, दादी भी बन चुकी हूँ
1: जी। तो बताइए आप अपना जो समय रहता है, कोई खाली समय रहता है जो, उसमें आप अपना समय बिताने के लिए क्या करती हैं?
0: सबसे पहले तो मेरा का शौक है म्यूजिक सुनना, तो मेरा रेडियो चालू हो जाता है, रामायण से चालू होता, भूले बिस्तर संगीत सविता, भूले बिस्तर गीत, ये सारा प्रोग्राम चलता रहता, सुन किचन में चलता रहता हूँ, मैं काम करती रहती हूँ।
1: बहुत बहुत अच्छी बात है ये, संगीत में हाँ, अगर रुचि है ना आपकी तो समझिए आपका जीवन हाँ, बहुत बहुत बहुत शांत है, बहुत अच्छा है।
0: हाँ, और फिर गुनगुनाती भी हूँ और गाने भी सुनती हूँ, फिर मुझे घर का काम करना, साफ सफाई करना मुझे बहुत पसंद है,
1: ये अच्छी चीज है।
0: हाँ, और दूसरा सबसे बड़ा है मुझे पौधे लगाना घर में। मैंने अपने आगे पीछे बालकनी में मैंने पेड़ ही करीब कम से कम 30-35 पेड़ लगाए हुए हैं गमलों में सब में।
1: अरे वाह,
0: सबसे ज्यादा तो मैंने गुड़हल लगाया हुआ, मेरे घर में तुलसी इतनी है कि मेरे से भी बड़ी तुलसी का पेड़ है।
1: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। देखिए जिस तरीके से पर्यावरण दिवस भी है और आपने इतनी अच्छी हाँ, बात कही है कि आप पौधे लगा रही हैं, यानी कि सोचिए आप कितना अच्छा कर रही हैं।
0: मेरा पीआर जो है जबलपुर का है
1: जी,
0: तो हाँ जबलपुर में है, तो जबलपुर में भी हम बचपन से इतने पौधे लगा के आए कि अब हम बाद में जाते रहे तो वहाँ पर हमें शरीफा इतना पेड़, अमरूद, शरीफा, सहजन की फलियाँ, इतने पौधे में पेड़ मतलब फल लगते रहे कि मुझे देख के खुशी होती थी। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज अपने आसपास हरियाली बना के रखो, जो हमारी हमारी जीवन देते हैं जवाब।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: गाना सुनूंगी गागो साइड पान का, नाचो तू बंसी बजा। हाँ
1: जी बिल्कुल, सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

सखियों, अब कार्यक्रम हेलो सहेली में हो चला है समय एक अंतराल का, तो मिलते हैं इस अंतराल के बाद।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं यानी कि आरती श्रीवास्तव। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं पूर्णिमा बोल रही हूँ
0: जी।
1: पूर्णिमा सैगम, अभी तेलंगाना में रह रही हूँ।
0: अच्छा अच्छा,
1: गाना सुनती रहती हूँ।
0: आप बताइए क्या करती हैं आप?
1: कुछ भी नहीं, अभी तो सिर्फ मेरी बच्ची को संभालती हूँ।
0: कितना छोटा है आपको बच्चा?
1: अभी 2 साल की हुई है।
0: ओहो, इतनी छोटी सी है। तब तो आपको बहुत भाग दौड़ करते रहना पड़ता होगा उसके पीछे।
1: वो ज्यादा नहीं कर पाती, पर मैं फिर भी उसके पीछे भागती हूँ।
0: जी बिल्कुल, छोटे बच्चों का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है जी।
1: हाँ, समझदार है, ज्यादा परेशान नहीं करती,
0: यानी अच्छी बच्ची है।
1: हाँ।
0: जी तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम बचता है?
1: मुझे डांस करना अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है।
0: तो आप अपना डांस करती हैं या ऐसी अपनी मतलब भी आप छोड़ रखा है इस समय?
1: अभी ये छोटी है इसलिए छोड़ रखा है, बाकी मैं करती ही हूँ। मैं क्लासिकल डांस टीचर भी रह चुकी हूँ।
0: अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो आपने सीखा हुआ यानी कि क्लासिकल?
1: जी, मैंने कथक सीखा हुआ है, भरतनाट्यम भी सीखा हुआ है।
0: अरे अरे वाह, बहुत बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मुझे ये जो नृत्य की जो कला होती है ना, ये जो आप सीख लेते हैं तो हमको इतना एकदम तरोताजा रखती है। कोई परेशानी हमें एकदम आसपास भी नहीं आती, क्योंकि हम इतने ज्यादा उसमें खो जाते हैं ना, सारी परेशानियों का हल हमें अपने संगीत में मिल जाता है। तो
1: बीमारी सही कर दे डांस,
0: बिल्कुल
1: म्यूजिक तो ऐसी चीज है।
0: जी, एकदम फिट भी रहते हैं उसकी वजह से।
1: हाँ, फिट भी रहते हैं बहुत।
0: जी तो आप बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप?
1: मैं कभी कभी मूवी का लता मंगेशकर की आवाज में मेरे घर आई एक नन्ही परी।
0: अच्छा, आपके घर एक नन्ही परी आई है। तो उसको सुनाने के लिए हम आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: जी।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं।
1: मैं ओडिशा गरम गंजाम जिला से बोल रही हूँ।
0: जी, आप अपना नाम बताइए।
1: ममता दास मेरा नाम।
0: अच्छा, तो आप क्या करती हैं ममता जी?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, तो और आपके परिवार में कौन कौन है?
1: घर में मैं और मेरा हस्बैंड और मेरी, मुझे सिलाई आती है तो मैं कभी खाली नहीं रहती। काम खत्म, घर की काम खत्म होने के बाद सिलाई कर लेती
0: बहुत
1: हूँ।
0: अच्छी बात है ये। आप अपना ये अपना जो मनपसंद काम है वो आप करती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ना हमें, हम सभी को कोई ना कोई शौक होता है, कोई ना कोई हॉबी होती है, लेकिन क्या ना हम उसको
1: हाँ
0: पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं अरे घर के
1: हाँ
0: काम है, ये सब कर लें फिर समय काम।
1: मुझे सिलाई आती है तो मैं कभी खाली नहीं रहती। काम खत्म, घर की काम खत्म होने के बाद सिलाई कर लेती
0: बहुत
1: हूँ।
0: अच्छी बात है ये। आप अपना ये अपना जो मनपसंद काम है वो आप करती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ना हमें, हम सभी को कोई ना कोई शौक होता है, कोई ना कोई हॉबी होती है, लेकिन क्या ना हम उसको
1: हाँ
0: पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं अरे घर के
1: हाँ
0: काम है, ये सब कर लें फिर समय कहाँ मिलता है। लेकिन आपने उस चीज़ को अच्छे से किया है। तो आप क्या क्या
1: मुझे
0: चीज़ें
1: आज
0: सिल
1: बहुत
0: लेती हैं?
1: खुशी हो रही है कि आज सखी सहेली तो मेरी फोन लगी है। तो जून 5 में मेरी छोटी बेटी की बर्थडे है, जो जून 25 में मेरी बड़ी बेटी की बर्थडे है। तो
0: अरे वाह,
1: मुझे
0: जून में ही है दोनों
1: हाँ
0: बेटियों का बर्थडे।
1: हाँ और मेरी

0: आपको कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपकी कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं, जो हैं 4002-4662 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। नंबर फिर से एक बार 4002-4662 और एसटीडी कोड है 022। अब आप दूसरा नंबर भी नोट कर लीजिए, जो है 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। फोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना भूलिएगा नहीं। और हमारी जिन भी सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई, वो बिल्कुल भी निराश ना हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और ध्यान रहे, लगातार किए जाने वाले प्रयास कभी ना कभी तो कामयाब होते ही हैं। और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था, उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल नहीं लगाइए और अपनी सखियों को भी अवसर दीजिए अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

आज के हेलो सहेली कार्यक्रम का समय जैसे पंख लगाकर तेजी से निकल गया। आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने तो हमें बांध ही लिया और पता भी नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी। चलते चलते आपको कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपकी कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली

0: आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। आइए सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के दीवाने में रेडियो श्रोता मीनाक्षी अस्थाना को।
1: श्रोता नमस्कार, मैं मीनाक्षी अस्थाना हूँ और आकाशवाणी की बचपन से

फैन रही हूँ। आकाशवाणी ने अपना 90 वर्षों का ये सफर तमाम उतार चढ़ावों के साथ निश्चित रूप से पूरा किया होगा। मुझे याद है अपने बचपन में भी मैं हमेशा रेडियो की फैन रही हूँ, आकाशवाणी की फैन रही हूँ। इसके अनेकों कार्यक्रम जैसे विविध भारती की उर्दू सर्विस हुआ करती थी, अनेकों प्रकार के रंग महल में नाटक आया करते थे, हवा महल में नाटक आया करते थे, बिना का गीत माला, या यूं कहूं कि मैं आकाशवाणी सुनकर और उससे प्रेरित होकर उत्साहित होकर मुझे एंकरिंग का शौक लगा और एंकरिंग के लिए मुझे अनेकों तरह के मटेरियल सामग्री आकाशवाणी से सुगम रूप से मिल जाया करती थी। बरेली आकाशवाणी ने 1993 से जो अपना सफर शुरू किया है, मैं उस सफर में उनके साथ रही हूँ और आकाशवाणी बरेली के अनेकों ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें बच्चों का प्रोग्राम है, नन्हे मुन्ने बच्चे आकर अपनी कविताएं सुनाते थे, कहानियां सुनाते थे, घर आंगन नारी संसार की तो मैं बहुत ही फैन हूँ क्योंकि यहाँ पर दी जाने वाली जानकारियां सूचनाएं न केवल शहरी स्त्रियों के लिए बल्कि ग्रामीण महिलाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी होती हैं। नारी संसार में और घर आंगन में दिए हुए कार्यक्रमों से प्रेरित होकर मैंने अनेकों बार रेसिपी आदि भी ट्राई करी है और उसमें सफल भी रही हूँ। मेरा ये मानना है कि रेडियो एक ऐसा साधन है, आकाशवाणी एक ऐसा साधन है जो कि सबको सुलभ है और इसका लाभ समाज को निरंतर प्राप्त होता रहा है। आकाशवाणी के 90 वर्षों के इस सफर पर मैं उन तमाम श्रोताओं को बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ जो इस सफर में हमेशा से उसके साथ रहे हैं और आगे भी रहेंगे। मेरा मानना है कि रेडियो जैसे आकाशवाणी जैसे साधन को हम घर घर तक पहुंचाएं और जब से ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आए हैं तब से तो आकाशवाणी हर व्यक्ति के हाथ में ही जैसे पहुंच गई है। 90 वर्षों के आकाशवाणी के सफर पर मेरी तमाम श्रोताओं को और आकाशवाणी के को प्रसारित और प्रचारित करने में साथ देने वाले तमाम टेक्नीशियनों को, प्रस्तुतकर्ताओं को मेरी अनेकों अनेक बधाई तथा शुभकामनाएं।

अभी आपने सुना आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर रेडियो श्रोता मीनाक्षी अस्थाना को आकाशवाणी के दीवाने में। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आपकी बात।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर आपने सुना आकाशवाणी के दीवाने। आपने ट्यून किया है 100.4 एफएम पे आकाशवाणी का बरेली केंद्र। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ, और आज का विषय है आपने अपनी याद में सबसे पुराना पेड़ कौन सा देखा है। अपनी यादें साझा करें, तो देखते हैं इस विषय पे जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ पहले कॉलर कौन है। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी।
1: हेलो, नमस्कार सर।
0: नमस्कार।
1: हाँ, आपकी बात आकाशवाणी के साथ।
0: हाँ, आपकी बात आकाशवाणी के साथ, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं सिद्धार्थ नगर, जत नगर बरेली से राजेश श्रीवास्तव बात कर रहा हूँ।
0: राजेश भाई, कैसे हैं आप?
1: सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपकी मीठी सी आवाज़ सुन के तो और अच्छे हो गए सर।
0: हम भी आपकी आवाज़ सुन के हमें अच्छा लगा। और राजेश जी, आज जो हमारा विषय है वो है आपने अपनी

0: याद में सबसे पुराना पेड़ कौन सा देखा है? अपनी यादें साझा करें।
1: सर मैं बहुत छोटा था, 7 साल का था, तब मेरे जहाँ हमारा पुराना मकान है इज्जत नगर में
0: जी,
1: तो वहाँ बहुत पुराने बरगद का पेड़ था, वो आज भी है, उसकी चटाई इतनी लंबी लंबी हो गई है तो लोग वहाँ पे पूजा करते हैं, थान बना दिया है। सबसे मैं देखा हूँ पुराना पेड़, अपनी यादों में मैंने वही देखा है सर।
0: जी जी, तो वो अभी भी विराजमान है वो पेड़?
1: जी जी विराजमान है, लोगों ने चबूतरा बना दिया, लोग उस पर आराम करते हैं दोपहर में
0: जी, वहाँ पूजा पाठ भी होती है
1: जी, पूजा होने लगी है वहाँ पे, बहुत पुराना पेड़ है, हमने जब से होश संभाला अपनी यादों में उसको ही देखा, आज तक देख रहा है।
0: तो ये समझ लिया आपके पुरखों का लगाया हुआ पेड़ होगा वो, है ना?
1: जी जी,
0: जो अब भी आपको अपनी छाया प्रदान कर रहा है पुरखों की तरह, है ना?
1: कई बहुत लंबा समय हो गया इस बात को और आज भी वो हरा भरा पेड़ है।
0: तो कौन सा गीत सुनेंगे साहब?
1: सर आशा भोसले की आवाज में गाया हुआ गीत है फिल्म लोफर से, कोई शहरी बाबू दिल लहरी बाबू।
0: तो सुनते हैं ये गीत आप और हम और सारे श्रोता।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं?
1: हेलो, हाँ कौन बोल रहे हैं?
2: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ सर, ग्राम बचोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
1: महाकाल की नगरी उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ हैं, कैसे हैं आप?
2: जी सर, मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके मुझे और भी अच्छा लग रहा है।
1: हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। और कैसा मौसम हो रहा है आपकी तरफ का?
2: जी यहाँ पे कल भी बारिश हुई थी रात में और आज सुबह भी बारिश हुई है और बहुत ठंडी हवाएं चल रही है और साथ में बादल भी छाए हुए हैं।
1: चलिए, आज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है और उसकी आपको और हम समस्त श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं।
2: जी बिल्कुल, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में बताऊं कि मैंने 2019 में 20 पौधे लगाए थे छोटे छोटे।
1: जी जी।
2: तो उसमें से आपको बताऊं, अमरूद के पेड़ थे 6-7 पेड़ और पौधे, उसके बाद में केले के पौधे थे, पपीते के पौधे थे, तो अब 6-7 साल में वो बड़े हो गए हैं और अभी हमें फल भी देने लगे हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। और हमारा विषय भी इसी प्रकार का है कि आपने अपनी याद में सबसे पुराना पेड़ कौन सा देखा है, आप अपनी यादें साझा करें।
2: जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा पुराने पेड़ तो जैसे कि हमारे घर पास में ही है, जैसे कि पीपल है, उसके बाद में इमली है और बरगद, ये 3 पेड़ हमारे घर के पास में है और काफी पुराने हो चुके हैं। उनकी कोई टहन या मतलब ऐसे सूखे के नीचे भी गिर चुकी है, लेकिन फिर भी वो पेड़ इतने बड़े हैं और मतलब अभी भी खड़े हुए हैं।
1: हाँ, विशालकाय पेड़ होंगे और अपनी छाया और फल से आपको लाभान्वित करते होंगे, है ना?
2: जी बिल्कुल, जैसे बरगद के पेड़ जो है ना सर, इनकी जो लताएं जो होती है ना वो काफी बड़ी बड़ी हो चुकी हैं और उनको लताएं के मतलब बच्चे पकड़ के झूलते भी हैं।
1: अच्छा जी। हाँ, मतलब बच्चों का खेल का साधन भी है।
2: बिल्कुल, खेल का साधन भी, बच्चे जब ठंडी से छाया में खेलते दोपहर में, शाम को, सुबह, जब अभी तो स्कूल की छुट्टियां है ना बच्चों की,
1: जी जी,
2: तो ज्यादातर बच्चे मतलब पेड़ की छाया के नीचे ही खेलते हैं।
1: हाँ, वही धमा चौकड़ी उनकी मचरी होगी।
2: जी हाँ सर। और मतलब आपको बताऊँ, जैसे पशु भी होते हैं ना,
1: जी,
2: उनको भी मतलब जो बड़े पेड़ होते हैं ना उनकी छाव में ही बांधा जाता है।
1: बिल्कुल सही बात, उनको भी छाव की जरूरत होती है, गर्मी उनको भी लगती है ना।
2: जी बिल्कुल सर।
1: तो आज कौन सा गीत सुनेंगे साहब?
2: जी सर, फिल्म का नाम है दबंग और गाने के बोले तेरे मस्त मस्त दो नैन।
1: बहुत ही बेहतरीन गीत आपने पसंद करा है, सुनते हैं आप और हम ये गीत।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं राम प्रसाद शर्मा बोल रहा, कृपा सावनी साहब जी।
0: राम प्रसाद शर्मा जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया साहब, जय कृपा मालिक साहब, बढ़िया है सब।
0: तो मालिक की कृपा हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो राम प्रसाद जी, आज जो हमारा कार्यक्रम का विषय है वो ये है कि आपने अपनी याद में सबसे पुराना पेड़ कौन सा देखा है, और अपनी यादें साझा करें।
1: बिल्कुल सर जी, ऐसा है, हमने अपने सबसे समय में पुराना पेड़ हमारा ये गंगा मंदिर लगवा बरगद का पेड़ है, हम वहाँ जाते थे। बहुत पुराना पेड़ है, हम तो अपने बचपन से ही देख रहे हैं, वो बहुत पुराना पेड़ है।
0: अच्छा अच्छा
1: पुराना पेड़ था।
0: तो पेड़ पौधे लगाने चाहिए हमें?
1: बिल्कुल सर, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पेड़ पौधे होंगे तो हमारे लिए पर्यावरण हमारा हरा भरा होगा, तो हमारे हमें सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी सर।
0: बिल्कुल सही बात। और तापमान में भी गिरावट आएगी, है ना?
1: हाँ सर, तापमान की गिरावट आएगी।
0: तो बहुत अच्छी बात आपने बोली। कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: कोई अपनी पसंद से कोई सुनाने सर जी।
0: ठीक है, आज पर्यावरण दिवस है तो सुनते हैं ये गीत, आप और हम और सारे श्रोता। दिवस है तो सुनते हैं ये गीत, आप और हम और सारे श्रोता।

0: भारत सरकार ने देश भर में 21वीं पशुधन गणना आरंभ कर दी है।
1: सरकारी कर्मचारी आपके घर भी आते ही होंगे। सभी पशुपालक अपने पशुओं की सही जानकारी दें ताकि सरकार आपके लिए बेहतर योजनाएं बना सके।
0: याद रहे, अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 की 21वीं पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा संग्रह किया जा रहा है। कोई भी पशु छूटने ना पाए।
1: मेरे पशु मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी।
0: पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा देश हित में जारी।
2: तो
3: हेलो,
2: हाँ जी, कौन बोल रहे
3: हैं? हेलो,
2: कौन बोल रहे हैं साहब?
3: मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ सर, चनेटा से। जो पेंटिंग बात करेगी,
2: चनेटा से सुनील कुमार जी बोल रहे हैं, कैसे हैं आप?
3: बढ़िया है सर, आप दुआ है सब, आप लोग कैसे हैं?
2: बस सब आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है। तो सुनील कुमार जी, आज हमारा विषय है, आपने अपनी याद में सबसे पुराना पेड़ कौन सा देखा है, अपनी यादें साझा करें।
3: जी जी सर, हमने तो पीपल और लीव बहुत थे हमारे गांव में, लीव बहुत थे, अब वो पता ही ना के बराबर रहे।
2: तो पेड़ों की घटती संख्या को लेके आप क्या कहना चाहेंगे?
3: हाँ सर, लीव के पेड़ बहुत कम हो गए, बरगद क्योंकि ये पेड़ सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं ऑक्सीजन के।
2: जी जी जी,
3: अब तो सर पॉपुलर और लिप्टिसी दिखाई देती है जगह।
2: हाँ, तो आपका क्या कहना है कि मतलब इस प्रकार के पेड़ लगने चाहिए?
3: जी जी, पेड़ लगाना चाहिए और सब ऐसे पेड़ जो ऑक्सीजन दें।
2: बिल्कुल सही बात, अच्छी बात आपने बोली। कौन सा गीत सुनेंगे?
3: हवाई फिल्म का तेरे प्यार की तमन्ना।
2: तो ठीक है, सुनते हैं गीत, हम और आप और सारे श्रोता।

0: भारत सरकार ने देश भर में 21वीं पशुधन गणना आरंभ कर दी है।
1: सरकारी कर्मचारी आपके घर भी आते ही होंगे। सभी पशुपालक अपने पशुओं की सही जानकारी दें ताकि सरकार आपके लिए बेहतर योजनाएं बना सके।
0: याद रहे, अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 की 21वीं पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा संग्रह किया जा रहा है। कोई भी पशु छूटने ना पाए।
1: मेरे पशु मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी।
0: पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा देश हित में जारी।
2: हेलो।
3: हेलो,
2: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
3: नमस्कार सर, मैं सद्दाम अली बात कर रहा हूँ, ग्राम चंद्रगढ़ चंपतपुर तहसील आंवला जिला बरेली से।
2: सद्दाम भाई, कैसे हैं आप?
3: सर हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
2: बस आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है। तो सद्दाम भाई, आज जो हमारा विषय है वो ये है कि आपने अपनी याद में सबसे पुराना पेड़ कौन

0: सा देखा है।
1: सर ये बहुत अच्छा विषय है, और सर मैंने अपनी याद में सबसे पुराना पेड़ जो है मेरे ही चौक में लगा था, नीम का, कम
0: जी
1: से कम 200 साल पुराना होगा। मैंने अपने दादाजी से पूछा था क्या ये पेड़ आपने लगाया, तो वो बोले थे कि बेटा इसका तो मुझे भी होश नहीं है कि किसने लगाया है,
0: जी
1: वो मेरे जीवन का सबसे पुराना पेड़ था सर।
0: बहुत बड़ा विशाल पेड़ हुआ है ना,
1: जी सर बहुत बड़ा था।
0: तो मतलब पूरा गांव का चौक पे छाया करता होगा, है ना।
1: जी, पूरा चौक उसकी छाया से भरा रहता था, बहुत बड़ा पेड़ था सर।
0: अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे विश्व पर्यावरण दिवस पे कि पेड़ पौधे हमें लगाने चाहिए।
1: जी सर मैं यही कहना चाहूंगा लोगों से, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लोगों से, कि हमें नए पौधे लगाना चाहिए और वनों का कटान कम से कम करें और ज्यादा से ज्यादा वन लगाएं, जिससे कि पर्यावरण तो अच्छा बना रहे, स्वच्छ तो हवा मिले सबके लिए।
0: बहुत अच्छी बात आपने बोली। कौन सा गीत सुनेंगे आप।
1: पर फिल्म का नाम है सड़क और गीत के बोल हैं तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है।
0: महेश भट्ट जी की निर्देशित फिल्म थी और संजय दत्त और पूजा भट्ट और सदाशिव अमरापुरकर ने इसमें अभिनय किया था, और बहुत ही हिट फिल्म थी अपने समय की, और सारे ही गीत इसके बहुत खूबसूरत थे। तो सुनते हैं ये गीत, हम और आप और सारे श्रोता।

0: हेलो,
1: कौन बोल रहा है?
0: शाहरुख खान बात कर रहा हूँ मैं, तिजड़ी कस्बा छत्तीसगढ़ से।
1: शाहरुख खान जी, कैसे हैं आप?
0: जी सर, हम तो बढ़िया हैं, आप कैसे हैं और आकाशवाणी की फैमिली सभी लोग कैसे हैं?
1: सभी लोग कुशल से हैं और आप सब लोगों की कुशलता की दुआ करते हैं। तो शाहरुख भाई, आज जो हमारा जो विषय है आपकी बात आकाशवाणी के साथ का, वो ये है कि आपने अपनी याद में सबसे पुराना पेड़ कौन सा देखा है?
0: ये हमारे पास में जंगल में ही है, काफी हम छोटे से थे, लगभग 12-14 साल हो गए, वो अभी तक पीपल का पेड़ है
1: जी।
0: और वो अभी तक है, हमने देखा है वहाँ पर।
1: जी, और आपके आसपास और कौन से पेड़ लगे हुए हैं?
0: पीपल का है, गुलड़ का है, और मेरे पास तो वैसे ही बागवानी थोड़ी बहुत है,
1: जी
0: घर
1: जी
0: पौधे उधे हैं, भी कम से कम 8 साल पुराना एक पौधा मैं लेकर के आया था, वो अभी तक मेरे पास में है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए, ऑक्सीजन मिलता है।
1: अच्छा शाहरुख भाई, आपने देखा होगा कि लोग पेपरों में छपने के लिए या सोशल मीडिया में छापने के लिए पर्यावरण दिवस पे पेड़ लगाते हैं, है ना, लेकिन उसके बाद उसको भूल जाते हैं, है ना? तो ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए?
0: जी, पेड़ लगाकर उनको भूलना नहीं चाहिए, पेड़ों से भी बात करना चाहिए, पेड़ भी इस तरह से बात करते हैं, पौधे से,
1: हाँ,
0: बड़े पेड़ से,
1: एक छोटे बच्चे की तरह उनका ख्याल रखना चाहिए, उनको समय समय पे सिंचित करना चाहिए, है ना?
0: जी बिल्कुल, मेरे पास में पौधे हैं, घर पर भी पौधे हैं,
1: जी
0: मैं
1: जी
0: शॉप पे रहता हूँ वैसे तो, और शाम सुबह दोनों टाइम उनको पानी देता हूँ, साफ सफाई सब चीज का ख्याल रखता हूँ, ध्यान रखता हूँ।
1: और मन भी इस कार्य से आपका प्रसन्न रहता होगा, है ना?
0: जी बिल्कुल, एकदम शांति मिलती है और बहुत बढ़िया लगता है,
1: बहुत सुकून मिलता होगा आपको, है ना?
0: हरियाली रहती है सुबह सुबह,
1: हाँ,
0: मॉर्निंग में हरियाली देखो टहलो तो बहुत बढ़िया लगता है,
1: और ताजी हवा भी रहती है। तो आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
0: नाम मूवी का कोई भी गीत सुनवा दे।
1: ठीक है, सुनते हैं ये गीत, आप और हम।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं जिला बरेली थाना मेहरगंज पोस्ट रोड ग्राम रसूलपुर इमामबाड़े के पास से अल्ताफ हुसैन अंसारी बात कर रहा हूँ सर।
0: अल्ताफ हुसैन साहब कैसे हैं?
1: बस ठीक है एकदम। और आप आकाशवाणी परिवार में लोग कैसे हैं? आपके लोगों की खैरियत चाहते हैं।
0: बस आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है। और आज जो हमारा विषय है आपकी बात आकाशवाणी के साथ का, वो ये है कि आपने अपनी याद में सबसे पुराना पेड़ कौन सा देखा है?
1: तो सर मैंने अपनी याद में सबसे पुराना पेड़ जो देखा है वो एक गुलर का पेड़ है
0: जी।
1: जो गुलर का पेड़ मुझे पसंद है और उसकी गुलर भी मैंने खूब खाई है और खिलाई भी है, सब्जी भी बनाकर खाई है उसकी
0: जी।
1: तो ये गुलर का पेड़ मेरी यादों में सबसे ज्यादा पुराना पेड़ है। और इसके बाद फिर मेरा जामुन का पेड़ आता है। और मैंने जो अपने हाथों से जो पेड़ लगाए हैं वो नीम के और आम का पेड़ लगाया है मैंने अपने हाथों से।
0: बहुत अच्छा कार्य किया आपने। तो उन पेड़ों की देखभाल भी आप करते रहते होंगे समय समय पे?
1: जी हाँ, और उन लोगों की मतलब देखभाल भी करता हूँ मैं पेड़ों के, और पेड़ों के साथ में मैं रहता भी हूँ और कहीं पर भी मैं जाता भी हूँ तो मैं पेड़ को याद पहले करता हूँ कि पेड़ कहीं अगर होता है तो मैं उसकी छाया के नीचे बैठकर और बस अपनी बहुत पुरानी यादें मतलब ताजा करता हूँ जो मैंने अपने बचपन में जो किए हैं और अपने हाथों से मैंने जो उनकी मदद की है।
0: तो बहुत अच्छा कार्य किया आपने अल्ताफ साहब। तो आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: जी आज मैं मुजरिम मूवी फिल्म का गाना सुनूंगा, नयो जीना तेरे बिना नयो मरना तेरे बिना।
0: तो ठीक है, सुनते हैं गीत आप और हम और सारे श्रोता। इसी गीत के साथ आज का आपकी बात आकाशवाणी।

आइए देखते हैं इस विषय पे हमें किन किन श्रोताओं ने कमेंट्स भेजे हैं। आप हैं रवि कुमार राहुल, कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से। आप कहते हैं, पीपल का पेड़ सच में विशाल होता है। सदियों पुराने पीपल तो पूरे मंदिर के आंगन को छाया दे देते हैं। इसकी जड़ें, तना और फैलाव तीनों ही बहुत बड़े होते हैं। भारत में कुछ पीपल 100 फीट से भी ज्यादा फैले हुए मिलते हैं। अक्सर गांव के चौपाल या पुराने मंदिरों के पास वाले पीपल सबसे विशाल लगते हैं। कासगंज से पवन गौड़ जी लिखते हैं, हमारे शहर में करीब 100 बरस पूरे कर चुका है बरगद का पेड़ जटाधारी। जटाएं जमीन पर छू रही हैं, मानो की धरती मां को नमन कर रही हैं। शार्दुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ लिखते हैं, हमारे शार्दुल शहर में एक पीपल का पेड़ है जो सैकड़ों साल पुराना है, जो आज भी बरकरार है। जब से हमारा गांव बसा था उसी समय बुजुर्गों ने लगाया था। गांव के बाद शहर कस्बा बन गया और वो पीपल का पेड़ आज भी धरोहर के रूप में लोग देखने के लिए आते हैं। पीपल है, पीपल के पास राजकीय कुआं है जिसमें हमारे बुजुर्ग पानी निकालकर पिया करते थे। उस समय नहरें नहीं हुआ करती थी, कुएं से ही प्यास बुझाई जाती थी। उस समय का पीपल का पेड़ आज भी हमारे जीवन को, पर्यावरण को और हमें ऑक्सीजन देकर हमें जीवन देता है। ये पीपल का पेड़ हमारे लिए प्रेरणा है। विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

उम्मीद करता हूँ कि आज के प्रोग्राम को सुनकर हमारे श्रोता साथी अधिक से अधिक वृक्षारोपण अवश्य करेंगे आने वाले बारिश के मौसम में। हम हर साल सावन के महीने में पौधे लगाते हैं, उनकी परवरिश करते हैं और हमारे लगाए हुए पौधे आज पेड़ बन चुके हैं, जिनका आशीर्वाद हमें आज भी मिल रहा है। रामपुर रोड, हल्द्वानी, जिला नैनीताल से गंगा सिंह रावत जी लिखते हैं, बात उन दिनों की है जब मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। उन दिनों हमारे कॉलेज से एक टूर ऊधम सिंह नगर में संजय वन नाम की जगह पर गया था, जहां हम सभी स्टूडेंट्स ने पॉपुलर के पेड़ फॉरेस्ट लैंड पर लगाए थे। एक दिन उन पेड़ों को बड़ा होते हुए मैंने सपने में देखा था। अगले दिन मन में विचार आया कि मैं जाकर उस जगह पर जाऊं और उन पेड़ों की ग्रोथ को देखूं, लेकिन मैं वहां जा नहीं पाया। मगर मुझे पूरा यकीन है कि हमारे द्वारा लगाए गए वे पेड़ अब काफी बड़े हो गए होंगे, इसलिए पेड़ लगाने के साथ साथ उनको देखना भी जरूरी होता है। विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अगला कमेंट है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा का। आप कहते हैं पेड़ तो बहुत से देखे हैं, पीपल एवं नीम का पेड़ हर जगह दिखाई देते हैं, आज ये सब गायब हो चुके हैं। दीपक जलाने के लिए हमको घर से बहुत ही दूर जाना पड़ता है। दांत साफ करने के लिए पूरे शहर में नीम का पेड़ अब दिखाई नहीं देता। हर वर्ष वन विभाग भी हजारों पौधे लगाता है, ना जाने ये पौधे कहां गायब हो जाते हैं। गांधीनगर गुजरात से जी के परमार जी लिखते हैं, हमारे गांव में बरगद के तीन बड़े पेड़ थे, जिनमें से आज केवल एक ही जीवित है। इस बरगद के पेड़ के

गांधीनगर गुजरात से जी के परमार जी लिखते हैं, हमारे गांव में बरगद के 3 बड़े पेड़ थे जिनमें से आज केवल एक ही जीवित है। इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर दोस्तों के साथ की गई बातें और दोपहर में इसकी शीतल छाया में ली गई नींद आज भी याद है। आज भी जब गांव ना जाना होता है तो यादें ताजा हो जाती हैं। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेल से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी लिखते हैं, यहां करेली में एक बरगद का पेड़ है जो 100 साल से भी अधिक का है और आज भी हरा भरा है। जब भी वक्त मिलता है उस पेड़ के नीचे जाकर बैठते हैं और ठंडी हवाओं का आनंद लेते हैं। प्रवीण चौहान जी लिखते हैं, बरगद का पेड़ और पीपल का पेड़। पारस कुशवाहा जी लिखते हैं, पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रदान करता है, उसकी छाया भी घनी होती है।

अभी आप सुन रहे थे आपकी बात आकाशवाणी के साथ। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। संध्या के 5 बजे हैं। अब समय हो चला है हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करने का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप विभिन्न कार्यक्रमों को सुनेंगे रात 8 बजे और 10 बजे। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9 बजे मुंबई केंद्र से। अब से थोड़ी देर में शाम 5:05 पर आप सुनेगा भजन संध्या। 5:10 पर आप

सुनेंगे प्रकृति की बात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 5:20 पर आप सुनेंगे भजन संध्या। साप्ताहिक कार्यक्रम लकी थ्री का समय रहेगा 5:30। काव्य पाठ में आप सुनेंगे कवि पी के दीवानक से कुछ काव्य रचनाएं, शाम 5:45 पे। साप्ताहिक कार्यक्रम लकी थ्री का समय रहेगा 5:30। युवाणी आप सुनिएगा आबिदा के साथ शाम 6:00। इसमें कुछ खास है, आज में विश्व पर्यावरण दिवस पे जानकारी दी जाएगी। साथ में होगा नजराना, शाम प्रस्तुति रहेगी गौरव सक्सेना की। ग्राम जगत सुनेगा हरद्वारी लाल भैया के साथ शाम 6:30 पे। इसमें चर्चा सुनेगा, विषय रहेगा विश्व पर्यावरण दिवस। साथ में होगी भेंटवार्ता में कृषक अनुभव सुनेंगे सुनील कुमार गंगवार से। आपसे जानकारी प्राप्त करेंगे धारा सिंह। क्षेत्र संकलित कार्यक्रम में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना से एक भेंटवार्ता सुनेगा हरद्वारी लाल वर्मा की। विषय रहेगा पर्यावरण को कैसे करें संरक्षित। साथ ही होंगे लोकगीत, प्रस्तुति रहेगी मिथिलेश श्रीवास्तव जी की। कृषि पाठशाला आप सुनेंगे शाम 7:00। इसमें परिचर्चा सुनेंगे, विषय रहेगा सहफसली खेतों को लाभकारी बनाएं। प्रतिभागी रहेंगे सुरेश चंद और पप्पू। कार्यक्रम का संचालन करेंगे कृष्णपाल मौर्य। रेडियो हेल्पलाइन आप सुनेंगे 7:31 पे। विषय रहेगा गुर्दे की पथरी व पेशाब संबंधी समस्याएं और उनका आधुनिक इलाज, शंकाएं एवं समाधान। विशेषज्ञ रहेंगे यूरोलॉजिस्ट एवं एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज कुमार अग्रवाल। हमारी कल की सभा आरंभ होगी 5:50 पे। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 5:50 पे, दोपहर 12:00, रात 8:00 और 10:00। विविध भारती प्रसारण सभा के कार्यक्रम सुनेंगे सुबह 9:00, 9:45 पे, दोपहर 2:30 पे और रात 9:00। नमस्ते बरेली सुनिएगा गजेंद्र के साथ 8:15 पे। लोकगीत 8:45 पे। आकाशवाणी के दीवाने 10:00। आपकी पसंद 10:05 पे। सबरंग का समय रहेगा 11:00। लोकगीत सुनेंगे 11:30 पे। और पत्रों पर आधारित अनुरोध गीत का समय रहेगा दोपहर 1:00। प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है का समय रहेगा 9:30। जनमन सुनिएगा 2:00। आकाशवाणी के दीवाने का समय रहेगा 4:00। आपकी बात आकाशवाणी के साथ सुनिएगा शिप्रा मिश्रा के साथ 4:05 पे। भजन संध्या 5:00। हेलो बरेली सुनेंगे गजेंद्र के साथ 5:30 पे। युवाणी सुनिएगा आबिदा के साथ शाम 6:00। किसानवाणी सुनेंगे धारा सिंह और हरद्वारी लाल वर्मा के साथ 6:30 पे। ग्राम जगत का समय रहेगा 7:00। रेडियो हेल्पलाइन सुनिएगा 7:31 पे। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। लीजिए प्रस्तुत है भजन संध्या में कुछ भजन। पहला भजन है हरिओम शरण के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे भजन संध्या। यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। आइए अब सुनते हैं प्रकृति की बात, जिसे हम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: बस्ती के आकाश गुप्ता आज मेरे साथ हैं। इन्होंने अपने सात साथियों के साथ जो कर दिखाया उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में इनके नाम और इनके कार्यों की चर्चा करके आज इनको पूरे विश्व के पटल पे स्थापित किया, जिसकी प्रशंसा बस्ती ही नहीं पूरे देश में की जा रही है। आकाश गुप्ता जी जो बस्ती जनपद के लजघटा गाँव के निवासी है और ये छात्र है, इनके साथ जितने भी लोग उस अभियान में लगे हुए हैं सभी किसी न किसी विद्यालय में 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं के छात्र हैं। आकाश गुप्ता जी आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मनोरमा नदी सफाई अभियान को कब आपने शुरू किया और कहां से प्रेरणा मिली आपको?
1: हमने अपनी मनोरमा नदी की सफाई का अभियान 67 दिन पहले शुरू किया। जब हमने ये शुरू किया तो हमारी नदी इतनी गंदी थी कि उसमें कचरा और उसके बाद ढेर सारी पूजा की सामग्रियां उसमें पड़ी हुई। किसी के यहाँ पे कार्यक्रम होता था तो वे लोग आकर अपना जो भी बाद का सामान होता था उसमें लाके नदी में फेंक देते थे, जिस वजह से हमारी नदी का स्थिति ऐसा हो गया था कि उसमें कोई भी जानवर पानी पीता नहीं था क्योंकि उसकी हालात ही ऐसी थी और कोई भी आदमी वहां पर नहाता भी नहीं था। तो हमने सोचा कि आज से 10 साल पहले जब हमारी नदी इतनी साफ थी, जहां पर सब लोग नहाते थे, जानवर पानी पीते थे, आखिर आज के टाइम पे वो हाल क्यों नहीं? तो हम लोगों ने सोचा कि अगर ये हमारी नदी है तो इसे साफ करने का कर्तव्य भी हमारा है। तो हम लोगों ने 6 से 7 लोगों की टीम बनाई और अपनी नदी सफाई का अभियान शुरू किया। पहले दिन हमें नहीं लगा था कि हम लोग इस नदी को इतना आगे साफ कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने अपनी नदी का अभियान का सफाई जारी रखा और आज हमारी नदी कुछ ऐसी दिखने लगी है जहां पर जानवर आकर इसमें पानी भी पीते हैं और यहां पर लोग आकर नहाते भी हैं और हमारी बहुत प्रशंसाएं भी करते हैं।
0: आकाश जी, यह अभियान शुरू करने से पहले बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि इतने गंदी नदी है, आप कैसे इसको साफ करोगे, या आपका मनोबल भी एक बार कमजोर हुआ होगा कि मैं जो है कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। भाई ऐसी प्रेरणा आपको आई कहाँ से और गांव के लोगों का क्या सहयोग और सपोर्ट रहा आपके साथ?
1: जब हम लोगों ने ये कार्य स्टार्ट किया था तो हमारे गांव के जो लोग थे उन्होंने कहा ये साफ तुम लोग नहीं कर पाएगे क्योंकि ये नदी बहुत गंदी है, इसको साफ करने के लिए सरकार को ही आगे आना पड़ेगा। लेकिन हमने कहा नहीं, हम लोग थोड़ा थोड़ा ही साफ करेंगे लेकिन हर एक दिन काम करेंगे। और हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इतना हम लोग नदी अपना साफ कर लेंगे और लोगों का भी सपोर्ट नहीं रहता था क्योंकि गांव का कोई भी हमें सपोर्ट करने नहीं आता था, कोई भी नहीं कहने आता था कि हम भी तुम्हारे साथ काम करेंगे और तुम्हारी मदद करके नदी की सफाई को आगे जारी रखेंगे।
0: आप जब उस समय नदी की स्थिति उसकी हालात देखे तो कैसा लगा?
1: पहले के टाइम पे नदी की स्थिति बहुत ही खराब थी, तो हम लोग आते थे बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे हम सभी लोग, तो हम सोचते थे कि अगर हमारी नदी इतनी गंदी, हम लोग अगर यहाँ बैठते हैं, यहाँ बदबू आ रही है, तो इसको साफ करके हम लोग यहाँ पर सुकून से बैठेंगे। तो हम लोगों ने इसकी सफाई का काम शुरू किया और इसको साफ किया।
0: करीब 2 महीने चले इस अभियान में, सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या मिली?
1: सबसे बड़ी चुनौती ये रही हमारी नदी में कि हम लोगों ने इसको साफ पूरा किया, 30 से 40 दिन तक हमने इसको लगातार साफ किया, लेकिन फिर 10 दिनों के अंदर इसके अंदर काइया जमा होने लगी और वो काइया धीरे धीरे सड़ने लगी और जिससे बहुत ज्यादा समस्या हमें होने लगी। फिर उसको साफ किया हम लोगों ने और उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे कि आकर वो पूजा की सामग्रियां वापस में डाल रहे थे। उसके बाद इसके अंदर से बहुत सारी कांच की बोतल्स और वो भी टूटे फूटे हालात में मिले। बहुत सारे हमारे टीम मेंबर्स का हाथ कट गया, पैर कट गया और यही सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि लोग आते हैं, कचरा फेंक जाते हैं, उसके बाद सहयोग भी नहीं करते, उसको साफ भी नहीं करते।
0: इस अभियान में गाँव के लोग और भी लोगों का क्या सहयोग रहा?
1: गाँव के लोग आते थे, हमें कहते थे कि हाँ तुम अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अभी तक कोई भी गाँव वाला हमारे साथ नदी में नहीं है। अब आप सोच सकते हैं, कहने की बात अलग होती है, करने की बात अलग होती है। अगर आप हमारे साथ में चलकर नदी की सफाई करते हैं तब तो हम मानेंगे आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम साथी लोग जब से शुरू किए हैं तब से अभी तक काम कर रहे हैं।
0: क्या इस अभियान में जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का कोई सहयोग आपके साथ रहा?
1: हमने एक वीडियो बनाई थी योगी जी को लेकर कि हम लोग अपनी मनोरमा नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने इसको शेयर किया, जिस वजह से हमारी एक दिन में वीडियोस 1 करोड़ लोगों ने देख लिया और योगी जी ने उसको वीडियो देखा भी। और योगी जी से पहले मोदी जी ने मन की बात में हमारी जिक्र किया कि मैं और मेरे 7 लोगों की टीम ने मिलकर अपनी मनोरमा नदी की सफाई का पहल किया है।
0: सफाई अभियान के बाद अब तक मनोरमा नदी को आप देखते हैं तो क्या लगता है?
1: सफाई के बाद मनोरमा नदी हमारी इतनी साफ लगती है कि ये तो एक जैसे लगता है कि चमत्कार टाइप का, लेकिन ये चमत्कार नहीं, ये हमारी 67 से 68 दिनों की मेहनत है जो कि हमने लगातार की है।
0: आपको अभी क्या लगता है, इसमें और कुछ करने की जरूरत है?
1: जी, अभी हमारा काम तो जारी रहेगा जब तक कि हम लोग अपनी मनोरमा नदी का पूरा गांव का हिस्सा जब तक साफ नहीं कर लेते तब तक तो हमारा काम जारी रहेगा, उसके आगे भी सोचेंगे। लेकिन हम चाहेंगे इसमें हमारी सरकार भी मदद करे क्योंकि हम कुछ युवाओं के बस का ये पूरा नदी साफ करना नहीं है।
0: जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात में आपका नाम लिए तो आपको कैसा महसूस हुआ?
1: हम लोग उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के छोटे से गांव लजघटा में रहते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक पटल पे हम लोगों की बात की, हमारे नाम का जिक्र किया, हमारी टीम का जिक्र किया तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारी सफाई का

0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए उत्तर प्रदेश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं अमित कुमार सिंह।

0: अभियान भी अब लोग देख रहे हैं।
1: इसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा सराहना मिलने के बाद आप पर, आपकी टीम पर क्या प्रभाव पड़ा? ऐसा भी आपको लगता है कि ये जिम्मेदारियां और बढ़ गई?
0: हाँ, जिम्मेदारी आप बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि अब जो हम लोग सफाई का काम करते थे 2 से 3 घंटा, अब हम लोगों ने ट्राई किया है कि उसको और बढ़ाने का, और हम लोग अब धीरे धीरे और नदी को और आगे बढ़ते हुए साफ कर रहे हैं। और लक्ष्य तो यही है कि जितना हो सके हम लोग नदी को साफ रखें, जिससे कि जानवरों को और आम आदमी को परेशानी ना हो।
1: आज देश में पर्यावरण संरक्षण और पुनर्जीवन को लेकर काम करने वाले युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: हम यही कहना चाहेंगे, जो भी नेचर ने हमें दिया है वैसे ही हमको उसको संतुलित रखना है, कि चाहे वो नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे नहर हो, चाहे झरना हो, आप लोग उसको ऐसे सुरक्षित रखिए कि उसमें गंदगी ना फैले, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हमारे तकलीफ ना हो।
1: आकाश जी, आपने जिस तरह से साबित किया कि बदलाव के लिए बड़े पद या बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं बल्कि इरादों की जरूरत है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी यह कहानी अपने गांव, शहर, पर्यावरण के लिए कुछ सकारात्मक करने की प्रेरणा देगी।
0: अगर आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको बड़ी मशीन या फिर कोई बड़े यंत्र की जरूरत नहीं है। आप अपने हाथों से पहले ट्राई कीजिए उसको साफ करने का। जब आप अपने हाथों से साफ करेंगे, थोड़ा बहुत हिस्सा साफ होगा, फिर आपका मन करेगा कुछ और ट्राई किया जाए। धीरे धीरे आप लोग और आगे तक सफाई करें। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास सिर्फ हाथ और पैर थे, हम लोगों ने उसी से स्टार्ट किया है। उसके बाद हम लोगों ने ट्राई किया उसमें नाव बनाने का, जिसमें हम लोग थोड़ा नाव बना भी गए थे लेकिन बीच में टूट गया। ऐसे ऐसे हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को ट्राई किया, तब जाके हमारी नदी इतनी साफ हो पाई। क्योंकि आप लोग जब किसी चीज को स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे उसकी आगे की रास्ताएं खुलते जाएंगी।
1: क्या ये आपको उपकरण से, जिसकी चर्चा मन की बात में मोदी जी ने किया, ये युवा जो है पर्यावरण या जल संरक्षण को लेकर के जागरूक है, इनके पास फावड़ा और जाल और ये ग्लव्स लेकर के ये नदी के सफाई अभियान को कर रहे हैं, क्या इस सफाई अभियान में आपको किसी ने कोई किसी तरह का सहयोग किया उसमें?
0: हम लोग जब वीडियो डालते गए उसके बाद लोगों ने इतना सपोर्ट किया, हमने उसमें अपना QR डाला जिसमें लोगों ने काफी सपोर्ट दिया, जिससे हम लोगों ने बूट्स मंगाए, ग्लव्स मंगाए और बहुत सारी चीजों को मंगाए। और बहुत सारे लोग हमारे एड्रेस पे कुछ सामान भी भेज देते हैं, जिससे हमारी मदद हो जाती है। तो ऐसे ही हमारा काम चलता रहा।
1: आपने कहा कि जब से हमने इस अभियान को शुरू किया तब से हम लोगों ने YouTube, Instagram और Facebook के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जोड़ा और इस अभियान को और सफल बनाने के लिए, नदी के सफाई के लिए हमने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया और हमसे बहुत सारे लोग जुड़े। कितने लोग इससे प्रेरित हुए?
0: जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे तो 0 फॉलोअर थे, लेकिन अभी के टाइम पे अगर बात की जाए तो हमारे इंस्टाग्राम पे 63,000 फॉलोअर हो चुके हैं, फेसबुक पे 50,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं और यूट्यूब पे 10,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों का सपोर्ट हमारे साथ रहा, लोगों ने हमें काफी ज्यादा सपोर्ट किया, जिससे हम लोग आज इतना ज्यादा सफल हो पाए।
1: आप जिस तरह यह कार्य करके यह साबित किए बदलाव के लिए बड़े इरादों की जरूरत है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। आकाश जी, इसके बाद आपका क्या मिशन होगा?
0: अभी जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो हम लोग नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में बरसात का मौसम आने वाला है तो नदी का पानी काफी ज्यादा रहेगा, जिसके अंदर हल्के उसको सफाई नहीं की जा सकेगी। तो हम लोग कोशिश करेंगे नदी के किनारे का जितना भी फील्ड है उसको हम लोग वृक्षारोपण करेंगे, जितना हो सके पीपल, बरगद, पाकड़, जामुन, ये सब पेड़ बैठाएंगे।
1: इंस्टाग्राम और फेसबुक के तहत लोगों को जोड़ करके क्या लगता है आपको कि क्या इससे लोग आपसे जुड़ रहे हैं? क्या इससे आगे और भी आपको काम करने के लिए और भी लोगों का साथ मिलेगा?
0: निश्चित सी बात है, सब लोगों का सपोर्ट मिलेगा। और जब तक ये नदी सफाई नहीं होगी पूरी, तब तक ये काम चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर वृक्षारोपण भी होगा, हमारी नदी का भी घाट भी बनना है, हमारी नदी पर अभी जहाँ बरगद का पेड़ है वहां चबूतरा भी बनना है। और जब तक ये बन नहीं जाएगा तब तक ये कार्य चलता रहेगा। जब हमने इसको पहले दिन से स्टार्ट किया था तब से लेकर अभी तक हमें काफी ज्यादा लोग जाने लगे हैं, जैसे कि अभी विधायक जी ने कल परसों में आकर हमारे साथ मिलकर नदी की सफाई किया, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि अब ये अभियान जो है हमारा बहुत आगे तक जाने वाला है और साफ सफाई का काम तो चलता रहेगा।
1: समाज में कुछ नया करने का आपने एक प्रयास किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बातचीत। संवाद का संचालन कर रहे थे अमित कुमार सिंह। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

से। यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। आइए सुनते हैं भजन संध्या में हरिओम शरण के स्वर में ये भजन।

भजन संध्या। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। आइए सुनते हैं श्रोताओं का मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम लकी 3। लकी 3 में आज के हमारे पहले लकी लिस्नर हैं एडवोकेट वारिस अली खान, संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से। आज आपका जन्मदिन भी है, आपको हार्दिक शुभकामनाएं आकाशवाणी बरेली परिवार की ओर से।

आप लिखते हैं, बहुत पहले विश्वजीत की एक फिल्म आई थी 20 साल बाद। मेरे पिताजी ने बताया था कि पर्दे पर जब शैतान का पंजा जहां दिखाया जाता था तो लोग डर जाते थे, ना जाने कितनों के हार्ट अटैक हो गए। बाद में उस पंजे को छोटा करके दिखाया जाने लगा। अब पंजा पूरे पर्दे पर नहीं आता था। अगर मुश्किल तो आप इसी फिल्म का कोई गीत चला दीजिए।

कार्यक्रम लकी थ्री के अगले लकी लिस्टर हैं ककराला बदायूं के डॉक्टर मसरूर खान। आप लिखते हैं कि मैं जब किसी मंदिर में जाता हूं, देवी शेरावाली का चित्र देखता हूं, तो ये गीत गुनगुनाने लगता हूं। मुझे ये गीत बहुत अच्छा लगता है।

कार्यक्रम लकी थ्री के अंतिम लिस्टनर हैं हमारे आज के छावनी अशरफ खां पानी की टंकी के पास होली चौक बरेली से रामप्रसाद शर्मा बेटी वंदना शर्मा। आप लिखते हैं, फिल्म शोले एक ऐसी फिल्म थी जो आज भी सब पसंद करते हैं। अमजद खान साहब का डायलॉग था, जो डर गया वो समझो मर गया। जय अमिताभ जी, धर्मेंद्र जी सुपर हीरो इस फिल्म के थे और इस फिल्म में सारे सुपरहिट कलाकार थे। डाकू के रोल में अमजद खान खूब पसंद आते हैं और ठाकुर के रूप में संजीव कुमार। धर्मेंद्र जी और हेमा जी की जोड़ी बहुत पसंद आई थी। धर्मेंद्र जी के साथ एक गीत फिल्माया गया है तांगे पे, वो मुझे

0: लकी थ्री, अभी आप सुन रहे थे ये साप्ताहिक कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। अब आप सुनेंगे काव्य पाठ में कवि पी के दीवाना से कुछ काव्य रचनाएं।
1: नमस्कार, मैं हास्य व्यंग कवि पी के दीवाना अपने हास्य व्यंग की रचनाएं प्रस्तुत कर आप लोगों का मनोरंजन करना चाहूंगा। सबसे पहले एक रचना दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि एक कवि सम्मेलन में हमने एक के बाद एक गधे, कुत्ते और बंदर पर कविताएं सुनाई। एक कवि सम्मेलन में हमने एक के बाद एक गधे, कुत्ते और बंदर पर कविताएं सुनाई। संचालक महोदय ने हमारी खिल्ली उड़ाई और बोले, गधे, कुत्ते और बंदर पर तुम्हारी कविताएं सुनकर मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि तुम जानवर हो या इंसान हो। मैंने कहा, आदरणीय, कुछ भी समझ लें, आप भी तो मेरे बड़े भाई समान हो। अगले इतना देखिए, केबीसी को सभी लोग जानते हैं, पार्टिसिपेट करने के लोग बहुत ही आशान्वित रहते हैं, लेकिन अवसर बहुत कम मिल पाता है। इतना देखेगा।

कि सगाई से पहले से ही ट्राई करते करते शादी आ गई। लेकिन केबीसी से फोन नहीं आया। अचानक मंडप में फेरों के समय मित्र के जेब में रखा फोन घनघनाया। मित्र का तो जैसे भाग ही जाग गया। आधे फेरे छोड़कर सीधे मुंबई भाग गया। पर ऐन मौके पर शायद लड़की की बद्दुआ लग गई। फास्ट फिंगरिंग में ही गलत फिंगर दब गई। बैरंग लौट आया, सारा मंसूबा आंसुओं में बह गया। करोड़पति बनने के चक्कर में पति भी नहीं बन पाया, बेचारा कुआरा ही रह गया। आप लोग देख रहे होंगे, आजकल बंदरों की बड़ी समस्या है। आए दिन घटनाएं होती रहती हैं बंदरों की वजह से। मैं रचना दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि आजकल बंदरों से लोग परेशान हैं। उनकी हरकतें देख हैरान हैं। एक रोज एक बंदर मेरे घर के अंदर बेखौफ घुस आया। मेज पर रखे केले, सेब और अमरूद को हाथ तक नहीं लगाया और सीधे बगल में रखे मेरे पर्स को ही उठाया। मैंने कहा, तुम तो बंदर हो फल खाओ, पैसे तुम्हारे किस काम के, पर्स मत ले जाओ। लेकिन वो पर्स ही लेकर भाग गया, पर बाहर निकलते ही नगर निगम की टीम के हाथ में आ गया। दो दिनों बाद वही बंदर हमें फिर से दिखाई पड़ा। और सीधे मेरे घर की ओर बढ़ा। मैंने पूछा, तुमको तो नगर निगम ने पकड़ लिया था, आज फिर कैसे आ गए? बंदर बोला, तुम्हारे पर्स में रखे पैसे मेरे काम आ गए। उस दिन पकड़े जाने के बाद मैंने नगर निगम कर्मचारियों की नीयत को बिगाड़ दिया। ईमान को तोड़ दिया था। तुम्हारा पर्स लेकर उन्होंने मुझे रास्ते में ही छोड़ दिया था। अभी बरेली में किन्हीं कारणवश नेट सुविधा को बंद कर दिया गया था। और आज के समय में नेट की क्या अहमियत है सभी लोग जानते हैं। हर चीज, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, काम, अन्य कार्य हो, सभी कुछ नेट पर ही निर्भर करते हैं। इवन घर पे बैठे बैठे अगर आपको टीवी भी देखना है, वो भी नेट से ही संचालित होता है। तो उसके बंद होने पर क्या प्रभाव पड़ा, मैं आपके समक्ष एक खास व्यंग्य रचना दे रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा कि इंटरनेट बाधित होने का असर किसी को हुआ या नहीं हुआ? मुझे तो हुआ। नेट न आने पर फ्री होने से जब हम पति पत्नी ने एक दूसरे को गौर से देखा और छुआ, पहले तो पत्नी रही मौन फिर बोली आप कौन? मैंने सकपका कर कहा, अरे जाने जाना, तुमने नहीं पहचाना, मैं तुम्हारा पति दीवाना। हालांकि वो मुस्कुराई, पर मेरी आंखों के सामने अंधेरे छा गए जब वह बोली, आज ऑफिस से जल्दी कैसे आ गए? मैंने कहा, ऑफिस से तो मैं 4 वर्ष पहले ही रिटायर हो चुका हूँ, मगर इंटरनेट न आने के कारण मुझे तुम और तुम्हें मैं आज दिखा हूँ। वरना नेट होने पर तो दिन रात हाथों में मोबाइल और टीवी भी ऑन रहता है। किसी को पता ही नहीं रहता कि घर में कौन कौन रहता है। यदि हर घर का ऐसा ही हाल हो जाएगा तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब पड़ोस में, परिवार में और घर में कौन कौन रहता है पूछे जाने पर शायद ही कोई ढंग से बता पाएगा। एक मैंने बिल्कुल अछूता विषय लिया है, हालांकि इस बात को सभी लोग जानते हैं, मैं समझता हूँ हर कोई इस बात को जानता है, और वो बात ये

है कि वॉशिंग मशीन में जब हम लोग कपड़े धोते हैं तो उसमें कपड़े उलझ जाया करते हैं। हास्य व्यंग का कवि हूँ, मैंने इस विषय को लिया और कविता बनाई। देखेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि

0: अन्य कामों के साथ कपड़े भी धोता है। इसलिए सभी पतियों को मेरी नेक सलाह यही है कि पत्नी से बनाकर रखना ही सही है, क्योंकि पत्नी चाहे तो पारिवारिक विषम परिस्थितियों में भी अपने को ढाल सकती है, और अगर अपनी पे आ जाए तो ऐसे भी अपनी भड़ास निकाल सकती है एक रचना मैं और आपके समक्ष दे रहा हूँ कि आजकल रचनाएं बड़ी चोरी हो जाया करती हैं, पता ही नहीं चलता कि कौन किसकी रचनाएं पढ़ रहा है। मैं सीधे सीधे रचना पा रहा हूँ कि एक कवि सम्मेलन के दौरान एक कवि पर आरोप लगाया गया, बात बढ़ी तो अदालत तक पहुंचाया गया, पूछने पर कि क्या इन्होंने किसी की रचना चुराई है, जवाब मिला नहीं, और ऑनर इन्होंने किसी की भी रचना नहीं चुराई है, बल्कि हम सभी में यही एक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मौलिक रचना सुनाई है और हमारी कवित प्रतिभा को ठेस पहुंचाई है। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे काव्य पाठ में हास्य कवि पीके दीवाना से कुछ हास्य काव्य रचनाएं। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
2: FM 100.4 MHz यानी आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम, अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई न कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है AIR@gmail.com।
3: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30

FM 100.4 MHz यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम अनुरोध गीत आपकी पसंद आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है airbareli@cbs.gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए airbareli@cbs.gmail.com।

संध्या के 6 बजे हैं। आइए सुनते हैं युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी आबिदा के साथ। प्रस्तुति है गौरव सक्सेना जी की।

गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्रोग्राम युववाणी में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त, आपकी हमसफर आबिदा फातिमा। तो मैं आपसे करने वाली हूं कुछ गुफ्तगू, देने वाली हूं ढेर सारी जानकारी और सुनवाने वाली हूं कुछ खूबसूरत नगमे भी। अरे हाँ, नगमों से याद आया, क्यों ना आज अपने प्रोग्राम की शुरुआत इस खूबसूरत से नगमे के साथ की जाए। इंजॉय कीजिए।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: भारत सरकार ने देश भर में 21वीं पशुधन गणना आरंभ कर दी है।
3: सरकारी कर्मचारी आपके घर भी आते ही होंगे। सभी पशुपालक अपने पशुओं की सही जानकारी दें ताकि सरकार आपके लिए बेहतर योजनाएं बना सके।
2: याद रहे, अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 की 21वीं पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा संग्रह किया जा रहा है। कोई भी पशु छूटने ना पाए।
3: मेरे पशु मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी।
2: पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा देश हित में जारी।
4: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
5: को आई एम हियर। इसे मोबाइल चार्ज करना,
6: दिमाग चार्ज कर अपना।
7: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
6: देखा
5: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
7: अब क्या करोगे?
5: फ्री वाईफाई है ना?
6: बुद्धू सुधर जा।
7: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
5: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
7: RBI कहता है
8: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
9: आप बने हुए अपने दोस्त एंड होस्ट आबिदा फातिमा के साथ और सुन रहे हैं प्रोग्राम युववाणी। और आज तारीख है 5 जून। मौसम में थोड़ी तपिश है लेकिन हमारे हौसलों में बहुत ठंडक है। आज जहां पूरी दुनिया पेड़ पौधों को गले लगा रही है, अपने घरों में लगा रही है, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस मना रही है, वहीं आज एक और बहुत बड़ा बहुत ज़रूरी अंतर्राष्ट्रीय दिन है जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए समंदर की लहरों की गहराइयों में गोता लगाते हैं और जानते हैं सब कुछ इंटरनेशनल डे ऑफ द फ्लाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग के बारे में। आसान शब्दों में कहें तो फ्रेंड्स, जैसे जमीन पर चोरी डकैती होती है ना, वैसे ही एक चोरी हमारे समंदरों के अंदर चल रही है। इसे कहते हैं IUU फिशिंग, यानी कि इसके बारे में और जाने तो एक होती है इलीगल यानी कि अवैध, बिना परमिशन या सरकारी नियमों को ताक पर रखकर चोरी छिपे मछलियां पकड़ना। एक होता है अनरिपोर्टेड, यानी मछलियां तो पकड़ ली लेकिन सरकार या अथॉरिटी को बताए बिना ही। और इसी में एक आता है अनरेगुलेटेड, यानी कि जिन समुद्री इलाकों में कोई कड़े कानून नहीं है वहां जाकर अंधाधुन मछलियों का शिकार करना। सो शॉकिंग फैक्ट फ्रेंड्स ये है कि दुनिया भर में पकड़ी जाने वाली हर 5 में से एक मछली इसी चोरी के रास्ते

से आती है और इससे हर साल अरबों डॉलर का नुकसान होता है। इस तारीख के पीछे जो एक बड़ा लीगल कनेक्शन है, जो हमारे ऐसे लिस्नर्स हैं जो वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको जो कि बहुत पसंद आने वाला है। दरअसल हुआ ये था कि 5 जून 2016 को संयुक्त राष्ट्र की एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू हुई थी, जिसे PSMA यानी कि पोर्ट स्टेट मेजरेस एग्रीमेंट कहा जाता है। इसका काम था विदेशी जहाजों को अवैध मछलियां लेकर बंदरगाहों पर आने से रोकना। इसी ऐतिहासिक दिन की याद में हर साल 5 जून को ये दिवस हम मनाते हैं। अब क्यों जरूरी है, अब आप सोच रहे होंगे, ये लड़ाई तो ये जरूरी है इसलिए अगर सारी मछलियां बिना सोचे समझे पकड़ ली गई तो समुद्र का जो पूरा लाइफ सर्किल है वो बर्बाद हो जाएगा। और इसी के अलावा जितने भी गरीब मछुआरों के पेट का भी तो सवाल है, क्योंकि जो छोटे और ईमानदार मछुआरे हैं सदियों उनके हिस्से की जो मछलियां हैं वो ये बड़े बड़े अवैध जहाज चुरा ले जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम ये लड़ाई लड़ें। फिलहाल अभी जरूरी है हम आपको सुनवाएं ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: भारत सरकार ने देश भर में 21वीं पशुधन गणना आरंभ कर दी है।
3: सरकारी कर्मचारी आपके घर भी आते ही होंगे। सभी पशुपालक अपने पशुओं की सही जानकारी दें ताकि सरकार आपके लिए बेहतर योजनाएं बना सके।
2: याद रहे, अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 की 21वीं पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा संग्रह किया जा रहा है। कोई भी पशु छूटने ना पाए।
3: मेरे पशु मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी।
2: पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा देश हित में जारी।
4: वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम युवाणी में, और आप बने हुए अपने दोस्त एंड होस्ट आबिदा फातिमा के साथ। और जी हाँ, मैं समझ रही हूँ आपको और मुझे दोनों को ही बेसब्री से इंतजार है नजराना शाम सेगमेंट का। तो आइए नजराना शाम सेगमेंट में सुनते हैं ये पहली पेशकश।

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम युवाणी और अभी हमारे युवाणी प्रोग्राम में चल रहा है सेगमेंट नजराना शाम। तो आइए नजराना शाम में सुनते हैं ये एक और पेशकश।
1: गीत की लत मोहे ऐसी लागी

आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम युववाणी। और दोस्तों, इस मौसम में प्यास लगने का इंतजार मत करिए, पानी से अपनी पक्की दोस्ती कर लीजिए हर आधे घंटे।

घंटे में पानी पीते रहिए। और हाँ, सिर्फ सादा पानी अगर बोरिंग लगता है ना, तो घर में नींबू पानी, छाछ, लस्सी या ORS का घोल बनाकर रखिए। ये आपके दिमाग को ठंडा रखेगा और सिर दर्द को छू मंतर कर देगा। और इन दिनों हैवी और तला भुजा थोड़ा सा खाना खाने से बचिए, क्योंकि वो पेट में जाकर और गर्मी पैदा करता है। अपनी डाइट में खीरा, ककड़ी, तरबूज और खरबूजा शामिल करिए। इनमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, जो बॉडी को अंदर से एयर कंडीशनर जैसा फील देता है। फिलहाल अभी हम आपको फील देने वाले हैं चलते चलते इस प्यारे से सॉन्ग का।

और साथियों वक्त हो चला है आप लोगों से विदा लेने का। तो हमारा आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा अपने प्यारे प्यारे पत्रों के माध्यम से। हमारा बधाई वाणी अनुभाग द्वारा के निदेशक आकाशवाणी बरेली, हमारा पिन कोड नंबर है 243001। और अब दीजिए अपने दोस्त आबिदा को इजाजत इस उम्मीद के साथ कि कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।

अभी आप सुन रहे थे युववाणी आबिदा के साथ, प्रस्तुति थी गौरव सक्सेना की। यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। आइए सुनते हैं किसान भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम ग्राम जगत, भैया हरद्वारी लाल वर्मा के साथ। प्रस्तुति है मिथिलेश श्रीवास्तव की।

0: ग्राम जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी अपने भैया और बहनों को आपके भैया हरद्वारीलाल वर्मा की ओर से राम राम। कैसे हो भैया और कैसी चल रही है आपकी खेती बाड़ी? हम उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ही होंगे और ग्राम जगत कार्यक्रम लेकर आपके भैया हरद्वारीलाल वर्मा आपके बीच आ चुके हैं, तो थोड़ा सा वॉल्यूम और बढ़ा लीजिए ताकि जो हमारे भैया पास पड़ोस में बैठे हैं वो आप सुन सकें। आज हम कार्यक्रम में क्या क्या लेके आएंगे ये भी आपको बता दें। आज चर्चा करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस पर, साथ ही साथ आपको सुनवाएंगे अनुभव भेंट वार्ता। वार्ताकार जो हमारे कार्यक्रम में सुनील कुमार जी, और इनसे बातचीत की है धारा सिंह भैया ने। साथ ही साथ आपको प्यारे से लोकगीत से कराएंगे मनोरंजन। विशेष जो भेंट वार्ता है आज हमारे कार्यक्रम में वो है पर्यावरण को कैसे संरक्षित करें। आज हमारे कार्यक्रम में खास मेहमान हैं डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी, वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार। इनसे हमने बातचीत की है, वो भी आपको सुनवाएंगे। तो शुरू में हमने आपसे कहा था कि हम चर्चा करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस पर। मानव पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। 1972 में पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने के लिए लोग इसके बारे में समझें, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। कोई ना कोई दिवस मनाने के पीछे कारण तो होती है जिससे आम जन को पता चल सके। ये कई गैर सरकारी संगठन, व्यवसायी, सरकारी जो संस्थान हैं उनके द्वारा अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है। जब हमारी धरती हरी भरी होगी तभी हम शुद्ध हवा ले सकेंगे। तो चर्चा तो लंबी है, इसी संदर्भ में हम अब आपको सुनवाने जा रहे हैं क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष भेंट वार्ता, पर्यावरण को कैसे संरक्षित करें। जानकारी दे रहे हैं हमारे कार्यक्रम में डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी, वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ। आइए सुनते हैं। नमस्कार सभी सुनने वालों को हरद्वारीलाल वर्मा का। साथियों, जैसा आप जानते हैं कि समय समय पर जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होती है आपके बीच लेकर आते रहते हैं। साथियों, आपको ये भी बता दें कि आज हमारे कार्यक्रम में है खास मेहमान। जी हाँ, माननीय अरुण कुमार सक्सेना जी, जो शहर विधायक एवं उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यावरण एवं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। आज का विषय है पर्यावरण को कैसे संरक्षित करें। ये तो हमारे भाई जिंदगी की भागम भाग में अपने स्वास्थ्य के बारे में, पर्यावरण के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है और बीमार होते जा रहे हैं। वन और पेड़ स्थापित नहीं कर रहे हैं, ये नए पौधों को नहीं लगा रहे हैं। इन सब बातों को करने के लिए आज हम बातचीत की है डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी, जो वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार में है। सबसे पहले आपका माननीय मंत्री स्वागत है।
1: सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम।
0: सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि वन महोत्सव मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या?
1: देखिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं ग्लोबल राइज ऑफ टेम्परेचर, दुनिया वालों पहले के मुकाबले दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और ये टेम्परेचर जो बढ़ना है ये प्लांट्स को, बहुत से प्लांट्स खत्म हो जाएंगे, एनिमल्स खत्म हो जाएंगे, ह्यूमन बींग की एग्जिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा। तो उनका कहना यह है इसको रोकना है। और ये जो ग्लोबल राइज हो क्यों रही, सूर्य की रोशनी जब पृथ्वी पर पड़ती है तो ये लौटती है, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर एटमॉस्फेयर में 1% से ज्यादा होगी तो ये सूर्य की उन रेस को रोक देती है जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है। और इसको रोकने का तरीका यह है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन कम करें, और कार्बन डाइऑक्साइड जो बन गई है उसको कम करें, और नेचुरल तरीका जो है वो है पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ।

0: हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का आह्वान, एक पेड़ माँ के नाम, माँ से बड़ी चीज दुनिया में दूसरी नहीं होती। और पेड़ लगाना बहुत जरूरी है, पेड़ ऐसी जगह लगाओ जहाँ ट्री गार्ड हो, चारों तरफ तार का बाड़ा हो, बाउंड्री हो, घर के अंदर लगाओ ताकि पेड़ सुरक्षित रह सके और जहाँ पेड़ को पानी भी मिले। जो भी पेड़ लगाए और पेड़ माँ के नाम लगाए तो इस बात का ख्याल रखें उसको पानी मिल रहा है या नहीं। नेचर से और सरकारी अधिकारी तो पानी का इंतजाम करेंगे ही, हमें खुद भी उस पेड़ को जाके देखना चाहिए कि उस पेड़ की क्या स्थिति है। बल्कि ना भी जरूरत हो पानी तो भी एक बोतल पानी की उसको जरूर डाले आए और अपने आप को तसल्ली होगी कि हमने माँ के नाम जो पेड़ लगाया, एक बोतल पानी हर 6 महीने 3 महीने पे जाके खुद जरूर दें और बीच बीच में भी व्यवस्था रखें कि पानी उसे मिलता रहे। और प्लांटेशन जितना ही ज्यादा होगा उतना ही अच्छा, कम से कम पेड़ कटें। और इसके लिए जरूरी यह है हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और जो पेड़ लगे हैं उनकी सुरक्षा करें। हमारे मुख्यमंत्री जी इस बात पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि जो पेड़ लगे हों वो बचें और पेड़ बढ़े।
1: क्या माननीय मंत्री जी इसके लिए अभियान चलाया जाता है अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के लिए? अभियान चलेगा तो कब से चलेगा?
0: देखिए इसका अभियान शुरू हो जाएगा 5 तारीख विश्व पर्यावरण दिवस, उस दिन मोदी जी पेड़ लगाएंगे, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी पेड़ लगाएंगे और तमाम जिलों में और ब्लॉक में जगह जगह कार्यक्रम होंगे जिसमें पौधारोपण किया जाएगा। लेकिन ये पौधारोपण संकेत होगा, ज्यादा पौधारोपण जुलाई के महीने में जब बारिश हो जाएगी तब किया जाएगा, लेकिन सांकेतिक 5 जून से ही शुरू हो जाएगा। और हमारा खास बात ये होगी हम जन सहभागिता से पेड़ लगवाएंगे, आम जनता के सहयोग से लगवाएंगे, नौजवानों से पेड़ लगाएंगे, छात्रों से लगवाएंगे, महिलाओं से लगाएंगे, सरकारी कर्मचारियों से, किसानों से, मजदूरों से, सबसे लगवाएंगे और सबके सहयोग से वृक्षारोपण कार्यक्रम हमारा जरूर सफल होगा।
1: क्या सरकार प्रत्येक वर्ष जो वृक्ष लगवाती है आपके मंत्रालय द्वारा किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए जो भी लगाएंगे वृक्ष, क्या निशुल्क वृक्ष उपलब्ध कराए जाते हैं?
0: जी हाँ, निशुल्क वृक्ष उपलब्ध कराए जाएंगे और हम लोगों से कहेंगे आइए लगाइए, विधायकों से कहेंगे लगवाइए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगाइए, सड़क के किनारे लगाइए, नदी के किनारे लगाइए, नगर पालिका के पार्कों में लगाइए और नेशनल हाईवे पे लगवाएंगे, हर जगह पेड़ लगवाएंगे।
1: कुछ भाई हमारे वृक्ष लगाना चाहते हैं तो वो कहाँ और किस जगह संपर्क करें?
0: देखिए जो भाई पेड़ लगाना चाहते हैं उनके पास जगह नहीं है जहाँ लगाएं, वो अपने यहाँ के ग्राम पंचायत से संपर्क करें, नगर पालिका से संपर्क करें, नगर निगम से संपर्क करें और इस तरह से वो पेड़ लगाएं। मैं समझता हूँ नगर निगम में बहुत पार्क हैं वहाँ लगेंगे। उसके अलावा हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संपर्क करें, वो भी जो पेड़ लगाएंगे और वो आपको जगह बताएंगे। हम तो ये चाहते हैं कि आम जनता को जगह हम देंगे, पेड़ हम देंगे, जनता आए और पेड़ लगाए और पेड़ की रखवाली भी हम लोग करेंगे। और किसानों से हम कहते हैं अपने खेत की मेड़ पे पेड़ लगाओ, हर खेत पे मेड़, हर मेड़ पर पेड़। अगर खेत पे मेड़ होगी तो पानी रुकेगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। उसके अलावा खेत की मेड़ पे अगर टिम्बर लगाएं तो पेड़ सीधा ऊपर जाएगा और किसान को आदत से आय मिलेगी और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का भी पैसा मिलेगा।
1: जो किसान भाई जो वृक्ष लगे हैं या वन लगे हैं अगर वो काटते हैं तो इसमें क्या कोई दंडनीय अपराध माना जाता?
0: देखिए ऐसा है, अगर किसी के यहाँ कोई कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनके काटने पर रोक है उनको परमिशन लेकर काटा जा सकता है, लेकिन ज्यादातर पेड़ ऐसे हैं जिनमें कोई परमिशन की जरूरत नहीं, किसान अपने आप काट सकता है।
1: क्या आपका वन एवं पर्यावरण मंत्रालय है इसमें रोजगार की कितनी संभावना है?
0: देखिए ऐसा है, अभी हमारे यहाँ लगभग 2,500 लोगों की भर्ती हुई है जिसमें फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर और तमाम पोस्टों पे हुई है वन एवं पर्यावरण विभाग में। और इसके साथ ही साथ पेड़ लगाने का काम हम मजदूरों के डेली वेजेस पे कराते हैं, गड्ढा खुदाई का काम कराते हैं और इस तरह से हम लोगों को रोजगार देते हैं, किसानों को भी रोजगार देते हैं। और लकड़ी जो होती है काटी जाती है, जब पेड़ बड़े हो जाते हैं तो उसको भी रोजगार मिलता है, लकड़ी प्लाई फैक्ट्री में जाती है वहाँ भी रोजगार मिलता है।
1: और तमाम तरह के जो फर्नीचर वगैरह बनते हैं
0: जी वो भी फर्नीचर का काम होता है, वो सब लकड़ी के जितने भी काम होते हैं उससे लोगों को बहुत रोजगार मिलता है। लकड़ी के खिलौने बनते हैं, दरवाजे लगते हैं, खिड़कियां बनती हैं, छतें बनती हैं, तो लकड़ी का बहुत काम होता है। हम चाहते हैं लोग अपने घरों में लकड़ी का काम करें और पेड़ों से उसके अलावा हमें फल मिलता है, पेड़ों से फूल मिलते हैं, पेड़ों से हमें बहुत मिट्टी का कटान रुकता है, पेड़ों से फायदे ही फायदे। सबसे बड़ी बात तो यह है जो चीज़ इंसान के लिए बेकार है वो पेड़ के लिए फायदेमंद है और जो पेड़ के लिए बेकार है वो इंसान के लिए फायदेमंद है। पेड़ निकालता है ऑक्सीजन।

0: ऑक्सीजन हमारे लिए फायदेमंद, हम निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ के लिए फायदेमंद।
1: जी जी, चलते चलते हमारे जो साथियों से इस समय आपको सुन रहे हैं, हमारे श्रोता सुन रहे हैं, कोई और अपील करना चाहते हैं आप?
0: मैं चाहता हूँ सभी लोग मिलके वृक्षारोपण अभियान को एक पेड़ माँ के नाम, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उनके आह्वान पर पेड़ जरूर लगाएं, और जो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं पेड़ सुरक्षित जगह लगाओ, ऐसी जगह लगाओ जहाँ पेड़ की सुरक्षा हो और पानी का इंतजाम हो, और जो पेड़ अपनी माँ के नाम लगाएं कम से कम 2-3 महीने बाद एक दफ़ा ज़रूर देख आएं कि वो पेड़ सही चल रहा है या नहीं।
1: अरुण कुमार सक्सेना जी, वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार, पर्यावरण को कैसे करें संरक्षित, आपने बहुत ही बेबाकी से अपनी राय रखी और श्रोता हमारी आपकी बात को बहुत ही गौर से सुन पाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सभी को श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ।
2: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य,
3: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
4: अभी हमारे भाई सुन रहे क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष भेंट वार्ता, पर्यावरण को कैसे संरक्षित करें, इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे थे डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी, वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार। जैसा कि इन्होंने बताया, अधिक से अधिक हमारे भाई वृक्ष लगाएं, पर्यावरण को शुद्ध बनाएं और हरियाली लाएं, यही हमारा और आपका संकल्प होना चाहिए। अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक और वार्ता, भेंट वार्ता, कृषक अनुभव। इसमें सुनील कुमार जी से बातचीत कर रहे हैं धारा सिंह जी। सुनील कुमार ग्राम लखीमपुर तहसील मीरगंज बरेली के रहने वाले हैं, आइए सुनते हैं इनके अनुभव।
5: किसान भाइयों, हम अपने कार्यक्रम में समय समय पर अनुभवी कृषकों को कार्यक्रम में आमंत्रित करते रहते हैं। आज की इस कड़ी में अनुभवी कृषक हैं हमारे स्टूडियो में, आप हैं सुनील कुमार गंगवार जी, ग्राम लखीमपुर, ब्लॉक शेरगढ़, तहसील मीरगंज, जिला बरेली से। सुनील कुमार जी, आपका हमारे कार्यक्रम स्वागत है।
6: सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार।
5: हमारे कार्यक्रम में जो अनुभवी कृषक आते हैं, अपनी खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बातचीतों को, कृषि से संबंधित उनके कार्य या व्यवसाय या पशुपालन संबंधी अपने अनुभव हमारे कार्यक्रम में साझा करते हैं। खेतीबाड़ी का कार्य आपका पौराणिक, यानी के पूर्वजों से ही चला आ रहा का।
6: हाँ, पूर्वजों से, दादा परदादा से ही चला आ रहा।
5: विशेषकर आपके क्षेत्र में कौन कौन सी खेतियां होती हैं?
6: हमारे क्षेत्र में गन्ना सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि हमारे गांव के पास में किच्चा नदी है, तो इसलिए वहाँ गन्ना सबसे ज्यादा उगाया जाता
5: जी। इसके अलावा अन्य कोई फसलें?
6: और धान भी होता।
5: मोटे अनाज की कोई फसल नहीं होती है?
6: नहीं, मोट की कोई नहीं होती, केवल गेहूं और धान ही उगाया जाता
5: जी।
6: इस समय तो धान की तैयारी चल रही है, खेत तैयार कर दिए गए।
5: अच्छा,
6: और पौध डाली जा रही है।
5: देखिए, खेतीबाड़ी का आपका एक अपना अनुभव है, काफी समय से आप खेतीबाड़ी कर रहे हैं, कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात जो आपने हमारे कार्यक्रम किसानवाणी से सुनी हो और वो जानकारी सुनने के बाद आपने अपनी खेती में उसका अनुभव लिया हो और उसके आधार पर कोई खेती की हो, ऐसी कोई जानकारी है?
6: हाँ, ऐसी है सर। हमने जो गन्ना किया है वो उसमें देसी घूरा डाला था
5: जी,
6: और दवा थी जो घर पे बनाई थी पापा ने, वो भी आकाशवाणी में ही सुनी थी।
5: अच्छा, वो दवाई का इस्तेमाल जो आपने बता रहे हैं कि आकाशवाणी से कार्यक्रम सुनकर के दवाई तैयार की थी, किस उद्देश्य के लिए, किस काम के लिए तैयार की?
6: क्योंकि वो जो गन्ने को है ना, वो ज्यादा पौष्टिक कर,
5: कुल मिलाकर के गन्ने की बढ़वार और उससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। अच्छा, जैसा कि गन्ने की ही अगर बात चल रही है, तो आज तकनीकी का दौर है,
6: तकनीकी का समय है, अब तो वैसे ही चालू हो गए हैं, उन्हीं से ही गन्ने की जुताई हो जाती।
5: आपके पास खेतीबाड़ी करने के लिए ऐसे कौन कौन से कृषि उपकरण हैं जिससे आप अच्छी खेतीबाड़ी करते हैं?
6: हमारे पास कृषि उपकरण तो नहीं है
5: जी,
6: फिलहाल हम किराए पे कराते हैं और पड़ोसियों से मांग कर भी कर लेते
5: जी।
6: खेत की जुताई वगैरह है तो वो किराए पे करा देते हैं, और गन्ने की जुताई वगैरह जब होती है, घास खरपतवार होते हैं, तो वो पड़ोसियों से लेकर कर दी जाती।
5: देखिए, इस समय जो गन्ने की फसल खड़ी हुई है, बहुत से ऐसे कार्य करने होते हैं कि बरसात शुरू होने से पहले उसमें

0: कर लिए जाएं और समय आने पर उससे अच्छा लाभ मिल सके, मुनाफा मिल सके। तो अभी कौन कौन से कार्य आपके द्वारा किए जा रहे हैं?
1: अभी तो गन्ने में पानी लगाया जा रहा है
0: जी।
1: और खरपतवार की नराई की जा रही है, खुदाई की जा रही है, जिससे कि जब बारिश का मौसम है तो गन्ना बिल्कुल बढ़िया हो जाए।
0: जी
1: जिससे कि जब बारिश आती है तो बारिश में आंधी तूफान आता है तो गन्ना गिर जाता, उससे पैदावार पे फर्क पड़ता।
0: देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपने कोई गन्ना बोया है तो वो किस विधि से बोया है और उसका आगे आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ेगा।
1: हमने तो फावड़े से बोया है
0: अच्छा।
1: और जो हरी चलती है उनसे बोते हैं, जिससे यह है कि फावड़े वाला गन्ना जरा गिरता कम है
0: अच्छा।
1: और उसकी उपज ज्यादा रहती है।
0: अमूमन कितनी जो है खोद लगाते हैं और कितना पानी लगाते हैं?
1: गन्ने में कम से कम 4 तो खोदे लग जाती हैं और पानी 6-7 लग ही जाते हैं, क्योंकि अभी खरार का मौसम है। अगर 8-15 दिन में अगर पानी नहीं लगा तो गन्ना वैसे ही मुरझा जाएगा।
0: कहते भी ये हैं कि अगर गन्ने से अच्छा उत्पादन लेना है तो खोद पानी और
1: हाँ,
0: खोद
1: खोद
0: पानी
1: पानी लगाना ही है।
0: खेती बाड़ी का कार्य करते हैं। देखिए, यही एक अनुभवी कृषक की पहचान होती है और वो खेती बाड़ी में जो अपने काम करते हैं तो वो किसी से सलाह लेकर के
1: हाँ, सलाह
0: या
1: लेकर ही पड़ोसियों से भी सलाह ली जाती है कि इस समय क्या करना चाहिए। पहली बात तो इस समय तो हमें गन्ने में ये देखना है कि कोई बीमारी ना लगे, सबसे
0: जी।
1: मेन तो यही है इस समय। और पानी, दो चीजों का ध्यान रखना।
0: तो इस समय कितने पानी लगा दिए हैं
1: हमने तो 4 पानी लगा दिए इस समय,
0: और
1: खुदा
0: मेड़बंदी?
1: मेड़बंदी भी करा दिए। हाँ,
0: जी, क्योंकि मानसून आने
1: आने
0: वाला है।
1: वाला है और जो खरपतवार है उसकी तो खुदाई भी करा दी है, पर पानी के साथ साथ खरपतवार हर बार हो जाए।
0: आपके अनुभव के आधार पर जरा बताइएगा कि हम अगर फसलों से उत्पादन ले रहे हैं, रासायनिक और देसी खाद दोनों ही इस्तेमाल करते हैं, किस खाद से ज्यादा अच्छा उत्पादन मिलता?
1: देसी खाद से ज्यादा, क्योंकि
0: अच्छा।
1: देसी खाद का प्रयोग जानवर पालते हैं हम उनका, तो गोबर जो होता है वो हम खेतों में डाल देते हैं, जिससे हमारी खेत की उपज ज्यादा होती है। इस समय तो DAP और यूरिया वैसे
0: कम
1: ही
0: मिल रही है
1: दाम कम मिल
0: किसानों
1: रही
0: को,
1: है।
0: बस समस्या यही है कि लोग अपने खेतों में रासायनिक खादों का भरमार इस्तेमाल करते हैं। अगर हम पुरानी पद्धति के आधार पर नए तरीके
1: नए
0: से
1: तरीके
0: खेती
1: से
0: बाड़ी
1: बनाते
0: करें
1: हैं,
0: तो हमें खाद की किल्लत नहीं
1: नहीं
0: होगी।
1: उठा।
0: खैर, सुनील कुमार जी, एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि गन्ने के साथ साथ जो दूसरी फसलें आप लेते हैं वो कौन सी लेते हैं?
1: गन्ने के साथ साथ गेहूं की फसल लेते हैं और इस समय तो धान की फसल की तैयारी हो रही है।
0: जी, तो कौन सी पौध डाली हुई है?
1: 1509 डाली है इस समय।
0: इस प्रजाति का कुछ खास कारण जिससे कि यही प्रजाति आपने बोई है?
1: ये प्रजाति इसलिए हुई क्योंकि ये महंगा बिकता है,
0: और उत्पादन
1: उत्पादन बीघे में 4 क्विंटल हो जाता
0: इससे अच्छा उत्पादन
1: है। अच्छा,
0: मिल सके, इसलिए आपको अपने खेतों में कौन कौन से
1: तो
0: काम करने
1: इस समय
0: पड़ेंगे?
1: हमने अपने खेतों में देसी खाद डालकर खेत की जुताई करवा दी है और पौध हमने परसों डाल दिए है, बीज शोधित करके पौध डाल दिए खेत में परसों और पानी भी लगा दिया है। अब केवल उसको तैयार करना है।
0: जो बीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके घर का था या शोधित बीज ही लेकर के आए थे?
1: नहीं, शोधित बीज लेके आए थे।
0: क्या फायदा होता है इससे?
1: इसी होता है कि खेतों में बीमारी कम लगती है और उससे उसकी उपज ज्यादा होती है।
0: चलिए,
1: उन्नत
0: तो
1: किस्म के बीज से यही फायदा होता है।
0: अच्छा, आपसे एक और बात यहाँ जानना चाहूंगा कि देखिए, हर किसान अपने खेतों में बहुत मेहनत करता है और ये उम्मीद के साथ करता है कि उसे फसल से अच्छा उत्पादन मिल जाए, लेकिन जब उत्पादन उसके हाथ में आता है, उसके घर पर पहुंचता है, तो वो अपनी मेहनत के आधार पर उत्पादन नहीं पाता है। क्या समझ में आता है आपको?
1: तो इससे बड़ा दुख होता है, क्योंकि पूरी साल हमने मेहनत करी और हमारे लिए जब कुछ नहीं मिलता है तो मन बड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि महंगाई का जमाना और खर्चा बड़ी मुश्किल से होता
0: तो क्या चूक रह जाती है, कुछ समझ में आता है?
1: है। चूक तो देखो, हर कोई भी व्यक्ति जब खेती करता है तो पूरी जान लगा देता है उसमें करने में, क्योंकि हमको अच्छी उपज लेनी है, क्योंकि उसमें पैसा बहुत लग रहा है। तो ये होता है कि अच्छी उपज के साथ साथ जब हम उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो हमको अच्छा पैसा देखने को मिलेगा।
0: जी, सुनील कुमार जी, क्या आपको ये नहीं लगता है कि जब हमें उत्पादन मिला और हमें पूरा उत्पादन नहीं मिला तो एक सोचनीय प्रश्न होता है कि हमने सारे जतन किए, समय से खाद पानी उर्वरक वो किया और नहीं मिला, तो कहीं ऐसा तो नहीं है आपने अपने खेतों की मिट्टी की जांच नहीं कराई,
1: हाँ, ये भी होता है, खेतों की मिट्टी की जांच करानी चाहिए समय,
0: जिससे कि ये पता चल जाए कि अगर
1: हमारे
0: हमारे
1: मिट्टी
0: खेत
1: में
0: में,
1: कौन से पोषक तत्व की कमी है।
0: तो आप मिट्टी की जांच कराते हैं?
1: नहीं, हमने तो अभी तक नहीं कराई है,
0: क्या कारण रहा है ऐसा कि
1: क्योंकि
0: मिट्टी के?
1: हमारे जो खेत है उसमें अच्छी पैदावार होती है।
0: अच्छा।
1: अभी तक हमारा गेहूं है वो 4 क्विंटल बीघे का कटा है और धान हमने 4 का भी कटा, इस कारण हमने अपने खेत की मिट्टी की जांच नहीं कराई, क्योंकि हम जानवर पालते हैं तो समय समय पर उसमें देसी खाद हर साल डाल देते हैं।
0: जी।
1: अभी

0: धान की बुवाई का समय, तो हमने उसमें देसी खाद पहले से ही डाल दी।
1: चलिए, बहुत अच्छा है कि आप इस तरह से अपनी खेती बाड़ी करते हैं और हर प्रयास करते हैं कि खेतों से अच्छा उत्पादन मिल जाए। साथ में क्या कोई पशुपालन वगैरह भी करते हैं?
0: हाँ, एक गाय है एक भैंस। उसका
1: तो
0: ये कि हमारी जो डेली का खर्चा होता है वो दूध से चल जाता।
1: इस समय दोनों पशु, गाय और
0: हाँ,
1: भैंस, दूध
0: गाय
1: दे रहे हैं।
0: और भैंस दोनों दूध दे रहे हैं। सुबह का दूध हम दूधिया को दे देते हैं।
1: हाँ, ठीक भी है कि
0: हाँ,
1: अगर
0: उसे
1: हम दूध दे रहे हैं तो उससे जो पैसा मिल रहा है वो हम अपनी खेती बाड़ी में और
0: खेती
1: घर के
0: बाड़ी में और
1: खर्च
0: घर के
1: में,
0: खर्चे में काम आ जाता है।
1: एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है कि अगर खेती में हमारी कोई भी फसल है उसका हम बीमा कराएं, या हमारे घर पर जो भी पशु है उसका हम बीमा कराएं, जिससे कि असमय होने वाली हानि से हम बच सकें।
0: हाँ,
1: ऐसा
0: अगर
1: भी कोई प्रयास करते हैं?
0: पशुओं का बीमा करा दिया है,
1: अच्छा।
0: खेती का बीमा नहीं कराया, क्योंकि एक बार जब फसल हमारी मारी गई थी तो हमको पैसा मिल गया था बिना बीमा के, क्योंकि गेहूं थे हमारे तो गेहूं 2 एकड़ के बिल्कुल बेकार हो गए थे।
1: नहीं, ये तो देखिए सरकार की ये योजना है कि वो आकलन कराती है कि अगर
0: हाँ,
1: किसान के लिए किसी प्रकार से कोई नुकसान हुआ है उसका कारण जान करके उसका मुआवजा दिया जाता है।
0: मिल गया
1: अच्छी
0: था।
1: बात है कि आपको मुआवजा मिल गया, लेकिन फिर भी जो सरकार का एक किसानों के हित में कार्य है कि फसलों का बीमा कराना चाहिए, तो अवश्य ही कराना चाहिए। सरकार का ये भी ध्यान है कि वो किसानों के हित की बात करे, किसानों के मतलब की बात करे। तो बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो किसानों के लिए दी जा रही हैं। कौन सी ऐसी योजना है जिसका लाभ आपने अब तक लिया है?
0: जो किसान सम्मान निधि है किसानों को मिलती है, उसका हमें लाभ मिल रहा है।
1: कितनी किस्तें लगभग आपको मिल चुकी हैं?
0: लगभग 8-10 किस्तें मिल चुकी हैं हमें।
1: जी, तो ये योजना आपके हिसाब से कैसी है?
0: ये योजना बढ़िया है, क्योंकि इसका एक साथ जो पैसा मिलता है वो हम किसान भाइयों के काम आ जाता है, जिससे अपनी फसल को अच्छे से तैयार कर सकते।
1: तो सुनील कुमार जी, बहुत ही अच्छा है कि आप सूझबूझ के साथ खेतीबाड़ी का काम करते हैं, पशुपालन भी करते हैं, मेहनत करते हैं और उसका लाभ आपको मिलता है। आज आप हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए और अपनी खेतीबाड़ी के अनुभव किसान भाइयों के साथ साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
3: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
4: अभी हमारे भाई सुन रहे कृषक अनुभव भेंट वार्ता। हमारे कार्यक्रम में थे सुनील गंगवार जी, इनसे बातचीत कर रहे हमारे भैया धारा सिंह, जो ग्राम लखीमपुर तहसील मीरगंज जनपद बरेली के रहने वाले थे। हम उम्मीद करते हैं ये भेंट वार्ता सुनकर हमारे भाई जरूर लाभान्वित होंगे। अब हमारे भाई सोच रहे होंगे कि हरदुरैलाल भैया कोई मनोरंजन नहीं करा रहे, तो हम एक प्यारा सा गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं जिसकी फरमाइश आप सभी लोगों ने भेजी है। कस्बा मीरगंज से, यानी बिजली घर से, हमारे बहुत ही पुराने और नियमित श्रोता हैं कल्लू भाई मिस्त्री, मोहम्मद नईम, मोहम्मद फहीम, मोहम्मद नसीब, मोहम्मद दानिश। इनके साथ में है वावर अजीम, अनामिया फातिमा इन और वाहिद हुसैन, मास्टर मोमिन। साथ में है इनके आदर्श दिवाकर, लव दिवाकर, यशपाल दिवाकर, ओमिंद्र पुरी गोस्वामी, राजीव पुरी गोस्वामी और इनके बहुत सारे साथी। आप हैं ग्राम दूनी नगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया, सत्येंद्र कठेरिया और विशाल, संगम, वैभव, आदर्श, आदित्य और इनके साथ में हैं गुड्डू, आदर्श, आदित्य और इनके तमाम साथी। ग्राम नलनगरिया तहसील मीरगंज बरेली से शिका गंगवार, संजू गंगवार, शीतल गंगवार, शिवा गंगवार, मीना देवी गंगवार, हर्षरूप गंगवार। आप सभी लोगों ने सुनना चाहा ये गीत जो आपके रेडियो सेट पर भेज रहे हैं।

वक्त का तगाजा है, अब समय नहीं आपसे और बातचीत करें और आपका मनोरंजन कराएं। तो इसी वायदे के साथ कल यानी इसी कार्यक्रम में फिर आपके बीच होंगे। तब तक के लिए हरद्वारी लाल वर्मा आपसे चाहते हैं अनुमति। भैया बहनों, राम राम।

0: ग्राम जगत, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम भैया हरद्वारी लाल वर्मा के साथ। प्रस्तुति थी मिथिलेश श्रीवास्तव की। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। अब आप सुनिएगा कृषि पाठशाला।
1: कृषि पाठशाला में हमारे सब भैया बहनों को बहुत बहुत स्वागत है। भैया बहनों, आज हमारी बातचीत को विषय है सह फसली खेती को लाभकारी कैसे बनाएं। और जब विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे कार्यक्रम में हमारे आज के मेहमान यानी कि जो दो कृषक भाई हैं वो कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, उनसे उनको परिचय जानते हैं। भैया आपको नाम कहाँ है, कहाँ से कार्यक्रम में शामिल हुए हैं?
2: मेरा नाम सुरेश चंद, ग्राम चेना, तहसील नवागम, जिला
1: जी। आप भैया?
3: नमो वीरान, जिला बरेली, तहसील नवागम से।
1: जी, दोनों कृषक भाइयों को बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आज हमारे बातचीत का विषय है सह फसली खेती को लाभकारी कैसे बनावे, तो सुरेश चंद जी इस विषय पर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपकी कुछ शिक्षा दीक्षा के बारे में भी जान लेना चाहेंगे कि जो आपकी पढ़ाई लिखाई भाई उस समय कहाँ तक भाई?
2: मैंने हाई स्कूल करा था
1: जी। और उम्र की बात करें तो उम्र कितनी हुई चली हुई?
2: उम्र मेरी 48 वर्ष है
1: जी। और पप्पू भाई, आपकी उम्र कितनी हुई, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक भाई आपकी?
3: हमने तो भाई करी नहीं, थोड़ी 5वीं तक करी थी, उम्र 40 साल की होगी
1: जी। दोनों लोग खेतीबाड़ी कर रहे हैं। हाँ। तो जैसे कि जो हमारी बातचीत का विषय है सह फसली खेती को लाभकारी कैसे बनावे, तो सुरेश चंद जी सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो सह फसली होती है वो क्या होता है?
2: सह फसली खेती, जैसे गन्ना बोया हमने, गन्ने के साथ में हमने लेटा बो दिया
1: जी, यानी एक फसल के साथ में दूसरी फसल करने को सह फसली खेती कहते हैं। पप्पू भाई, सह फसली खेती करने से लाभ क्या होता है?
3: लाभ तो जी जो है

0: बहुत से होते हैं। इसमें जो है लाई ऊपर से वैदे लाई पक जाती है, और जो है तहीं जो है नमक खोद पानी लगा के खाद वगैरह लगा देते हैं, अच्छी होती है।
1: और जाके साथ साथ जैसे जो कोई पानी हमने गन्ना को लगाओ तो लाई को भी लग
0: लाइयों को
1: जाता
0: भी
1: है।
0: लग गया, लाइयों को लग जाता है।
1: खाद लगाई लाई को तो
0: हाँ
1: गन्नों को
0: गन्नों
1: लग
0: को भी
1: गो,
0: लग हाँ गन्नों
1: लाइयों
0: को
1: को
0: लग
1: लग
0: गया।
1: गो, एक खाद पानी से डबल मुनाफा प्राप्त हो जाता है। तो खेती बाड़ी आप दोनों लोग करते हैं, कौन कौन सी फसलें खड़ी हैं खेतों में इस समय?
0: इस समय में हमारे में पेड़ी खड़ी है,
1: अच्छा, का का काम करने पड़ रहा है इस समय पेड़ी में?
0: पेड़ी में खुदाई है, दवाई है, ये सब
1: पानी है,
0: पानी है।
1: गर्मी भी खूब पड़ रही है, लू चल रही है, तपन खूब हो ही रही है, ऐसे में तो पानी को वैसे ध्यान रखने पड़ रहा होगा।
0: हाँ पानी का और थोड़ी बहुत लग रही, कोराजिन की स्प्रे लगाने पड़ रही है।
1: अच्छा, खेतन में देसी गोबर की खाद डालते हो आप?
0: हाँ।
1: सुरेशन जी, आपके यहाँ कौन कौन सी फसलें हैं?
2: हमारे गन्ना, 2 एकड़ गन्ना है हमारे पास, पेड़ी भी है, नौलग भी है,
1: जी
2: और दोनों में बराबर पानी और की खुदाई चल रही है।
1: तो जो आप बता रहे हो कि गन्ना आपके खेतों में खड़ा हो, जहाँ से पहले आपने कोई जाके संग में मिश्रित खेती करी, मतलब सह फसली खेती करी,
2: हाँ हाँ बिल्कुल करी।
1: कौन सी फसल
2: जो
1: रही?
2: नौलग गन्ना बोया था उसके साथ में हमने लैटा बोया था, लैटा किया था,
1: अच्छा,
2: लैटा
1: तो
2: भी अच्छा हुआ था, गन्ना भी अच्छा है।
1: अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि सह फसली खेती करने से एक फसल को उत्पादन कम मिलता है, ऐसा कुछ है?
2: ना ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, दोनों फसलें सही हो जाती हैं।
1: अच्छा, मतलब ये ध्यान रखने हैं
2: ध्यान रखना है,
1: कब पानी देने हैं, कब खाद देने
2: कब
1: हैं,
2: खाद देना है,
1: कोई रोग बीमारी लग रही है तो
2: हाँ
1: उसको भी ध्यान
2: उसकी
1: रखने पड़ता
2: उसका
1: है।
2: ध्यान भी रखना है।
1: पप्पू भाई, आपने गन्ना के साथ में कोई सह फसली खेती करी?
0: हाँ करी थी,
1: का लगाओ?
0: बामे जुमा भिंडी लगाई थी, तभी भिंडी उजार दही, अब
1: अच्छा,
0: पेड़ी में गाड़ी भिंडी उजार दही।
1: अच्छा, अब गन्ना है को बड़ो
0: हाँ पेड़ी बड़ी हुई।
1: जी, तो अब बाकी जो है खुदाई वगैरह आप
0: हाँ
1: कर रहे
0: खुदाई
1: हैं।
0: और पानी और स्प्रे लग रही, कोरा जिन की है, सुंडी लग जाती है बहुत।
1: तो जो सह फसली हम खेती करते हैं, चूंकि और फसलें करते हैं वो एकल फसल होती है, जैसे हमने गन्ना बोया तो गन्ना की देखभाल करते हैं, या कोई और फसल लगी है जैसे हमने गेहूं काटे तो गेहूं है खड़ो वो है, अब हम धान की तैयारी कर रहे हैं तो धान हमने खाली बो दो, तो इस तरीका से जो एकल फसल होती है बाकी हम एक तरीका से ध्यान रखते हैं, लेकिन जो सह फसली जो हम खेती करते हैं वहां में कोई विशेष ध्यान रखने पड़ता है सुरेश पाल जी?
2: हाँ, उसमें ध्यान रखना पड़ता है, ये सह फसली में दोनों का ध्यान रखना पड़ता है, और एक होती है तो एक का ध्यान रखना पड़ता है, एक में एक का ध्यान है और डबल है तो डबल ध्यान रखना पड़ता था।
1: कोई दूरी वगैरह, जैसे कोई हम फसल बो रहे हैं तो पहले से हमें दूरी बना के चलने पड़ती है कि भाई दूसरी फसल, जैसे कुछ लोग गन्ना में सिपाही लगाए देते हैं।
2: सिवाली लगाते हैं तो थोड़ी दूरी रखते हैं, उसकी दूरी यानी फिट या इंच से उसकी दूरी रख देते हैं।
1: जी अच्छा, कुछ लोग हमने देखी कद्दू वर्गीय, जैसे खीरा है, तुरई है, लौकी है, खरबूजा है, तरबूजा, ये भी गन्ना में
2: हाँ,
1: लगाए
2: जे भी
1: देते हैं,
2: गन्ना में कर देते हैं
1: आपने कभी लगाओ?
2: ना, हमने तो साहब ने बिल्कुल नहीं लगाया है,
1: अच्छा
2: लेकिन
1: अच्छा
2: लगे हुए देखते हैं, गांव में लगाते हैं।
1: हाँ
2: पिछली बार भी क्या नाम है, तरबूजा किया था हमारे बराबर वाले ने।
1: तो जो बराबर बात ने करो, अगर ऐसी आप भी अगर सह फसली खेती में जो खरबूजा है, तरबूजा है, लौकी है, तुरई है, इस तरीके से करो।
2: हाँ, और गन्ना भी साहब बढ़िया हुआ था और तरबूज भी बढ़िया हुए थे।
1: तो अगर आप करें तो आपको फायदा ना
2: हाँ,
1: हो,
2: ना होगा क्यों नहीं होगा,
1: फिर आप क्यों ना करते हैं?
2: अब ऐसा है साहब, जैसे किसी पर निर्भर रहता है, और जैसे हम तो गन्ना में हमने लैटा बो दिया तो अपने लैटा पे हम निर्भर रहते हैं, और कोई कहता हम लैटा नहीं बोएंगे, उसमें हम तरबूज कर देंगे तो अपने तरबूज पे।
1: मतलब अपनी इच्छा पर निर्भर है। अच्छा, आप बता रहे हैं कि स्प्रे करने पड़ रही गन्ना की फसल में, है
0: हाँ
1: रोग बीमारी कोई कीट वगैरह लग रहा हो तो
0: हाँ
1: बाकी ले, तो स्प्रे जो आप कर रहे हो का ध्यान रखते हो स्प्रे करते समय?
0: उसमें जो है जो सुड़ी वगैरह जो है लगती है तो उसमें पानी के संग में लगानी पड़ती है,
1: पानी में कैसे लगाते हो,
0: पानी में पानी भर के उसके बाद में स्प्रे लगाते हैं गन्ना ऊपर,
1: काय में पानी भरते हो?
0: खेत में जमीन में पानी भर के उसके बाद में टंकी से स्प्रे करते हैं।
1: हाँ, तो टंकी से आप स्प्रे करते हैं, तो स्प्रे जब करते होंगे टंकी मतलब पीठ पर रखते
0: हाँ
1: होंगे, उसके बाद कोई मुंह पे कपड़ा वपड़ा बांधते हो या ऐसे ही कर
0: हाँ
1: देते हो?
0: नहीं तो कपड़ा बांध के जो है स्प्रे करते हैं।
1: अच्छा, और दस्ताने वगैरह हाथ में?
0: हाँ
1: लेकिन सुरेशन जी, हमने देखे हैं कुछ लोग जैसे माने कोई स्प्रे कर रहे हैं तो वे कोई तमाखू रगड़ रहे हैं, कोई बीड़ी पी रहे हैं।
2: इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे उन्होंने स्प्रे अगर करके हाथ साफ से धो के फिर मल लेते अपने खा लेते।
1: लेकिन गलत है जी भाई, दवाई को आप इस्तेमाल कर रहे हो, कीटनाशक दवाई है, और वो कहीं ना कहीं शरीर में आपकी जाएगी तो नुकसान होगा निश्चित
2: हाँ,
1: है ना?
2: नुकसान तो होगा, लेकिन लोगों की आदत है, वो मानते नहीं है, तो एक वैसे तो मुश्किल बात है करना ही।
1: भाई मुश्किल बात वाली बात ना है कि अगर आप इस तरीके का काम करोगे तो कहीं ना कहीं आपको वो जहरीलो पदार्थ आपके शरीर में पहुंचे और आपको दिक्कत पैदा हो जाएगी।

0: ये काम ना करना चाहिए वहाँ पर।
1: हाँ, करना नहीं चाहिए।
0: कुछ लोग बालकन को संग ले जाते हैं अपने संग में कि चलो लल्ला चलियो टंकी उठवा दियो, और बालक का जो दवाई का डिब्बा होता है वहाँ डोरा बांधो वहीं पर ही अपने खेलना है गाड़ी बना के। बोलो ना कुछ। हाँ, यार
2: जी बात सही है।
0: हाँ। तो ये गलत है ना?
2: हाँ जी गलत है।
0: और कुछ लोग जो दवाई का डिब्बा होता है ऐसे खुले छोड़ जाते हैं, चक्रोड किनारे डाले आते हैं,
2: इसे डाल जाते हैं,
0: वो भी गलत है।
1: हाँ, वो भी गलत है।
0: भाई कोई पशु हमारे जा रहा हो और कहीं उसने चाट लो तो उसे भी नुकसान पहुंचेगा।
1: नुकसान पहुंचेगा।
0: तो इन बातों को ध्यान रखते हैं आप?
1: हम दवाई बिल्कुल ध्यान रखते हैं। हम कोई भी चीज
2: क्या बनाए जमीन में गाड़ देते हैं
0: जी। तो गन्ना की फसल आपके खेतों में खड़ी है, धान की तैयारी?
1: धान की तैयारी है।
2: हाँ तैयारी है धान की।
0: क्या तैयारी चल रही है इस समय?
2: इस समय पौधी डाल रही है धान भिजे का। और
0: कौन से धान की पौध डाली है?
2: ये सिरकी वगैरह मोटे धान की है।
0: अच्छा, सिल्की धान की पौध आपने?
2: हाँ।
0: डाल दी। तो पौध की जवाई वगैरह सही तरीका से कर ली?
2: हाँ सही हो गई। अब जो है उसमें स्प्रे लगेगी दवाई की, उसमें घास जो हो जाती है तो उसमें पौधा जो है घास नहीं रहेगी और उसमें जो है पौधा रहेगा धान का केवल।
0: अच्छा, लेकिन पौध पीली हो तो पड़ जाती है?
2: पीली नहीं पड़ेगी भैया, जिसमें उसमें पानी भर कर तहीं स्प्रे लग जाएगी घास की।
0: अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जिंक तत्व की जब कमी होती तो पौध पीली पड़ जाती है, या पानी कहीं ज्यादा भर जाता है तब
2: पानी पानी लगाने पड़ता है।
0: अच्छा, जो पानी की बात चल रही है सुरेश चंद जी, तो कुछ लोग सुबह पानी लगाते हैं या फिर शाम को पानी लगाते हैं पौध में, किस समय सही रहता है पानी लगाना?
1: पेड़ में पानी लगाना शाम को सही रहता है।
0: ऐसा क्यों?
1: ऐसा इसलिए है कि वो छोटी होती है और अगर दिन में जो है पानी गर्म हो जाता है तो तब जाता है।
0: अच्छा, इसलिए शाम को जो है मौसम ठंडा हो जाता है और शाम को पानी लगाना उचित रहता है। तो आपने पौध वगैरह डाली है? नहीं डाली
1: है। हाँ डाल दी।
0: अच्छा, आपने कौन से धान की डाली है?
1: हमने सरबती की डाली है।
0: सरबती? सरबती तो खानों में बहुत बढ़िया धान लगता है।
1: सरबती की हम साल जुबे सरबती ही लगाते हैं।
0: अच्छा, सरबती तो पुराना धान है, खाने में काफी बढ़िया
1: है। खाने में भी बढ़िया है।
0: तो जो खान के हिसाब से ही आप लगाते हो, बिक्री भी कर देते हैं?
1: नहीं नहीं, खान के हिसाब से।
0: अच्छा,
1: एक एकड़ धान है वही वो सरबती लगाते।
0: तो एक एकड़ जो धान है वो आप खान के लिए रोकते हैं अपने घर के लिए? बड़ो परिवार है का बात?
1: हाँ, परिवार में 6-7 लोग हैं।
0: अच्छा अच्छा, आप लोग पशुपालन भी करते हैं?
2: ना हम नहीं। हाँ, करते हम हैं। जी करते हैं भैया।
0: पप्पू भाई आप पशुपालन करते हो?
2: ना हम नहीं करते हैं।
0: ऐसी क्या बात है, पशु क्यों ना पाल रहे हो?
2: पशु का अब लड़कियां हैं 3 में पढ़ रही हैं, कोई बीए में है, कोई इंटर में है, कोई 10वीं में है।
0: अच्छा। हाँ। मतलब थोड़ी व्यस्तता ज्यादा है।
2: हाँ।
0: लेकिन जो आप बता रहे हो कि बेटी घर पे है पढ़ रही है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए दूध दही घी मट्ठा ये तो बहुत जरूरी है।
2: अब सवेरे को चली जाती है पढ़न संजालों के, हम काम करते हैं गन्ना खेती में, इसके मारे कौन खवाबे प्यावे।
0: अरे भैया तो एक भैंसिया पाल लो, कम से कम दूध देगी, बाबू गोबर हो ले जाए खेत में डालो, जब तुम्हारे पास गोबर ना हो तो देसी खाद कहाँ से मिल पाएगी आपके लिए?
2: अब बालकी पढ़ रही है, बालकी फिर घर पे काम पर जाएगा, इसके मारे चली जाती है टाइम से।
0: जी सूर्यचंद जी, आप पशुपालन कर रहे हैं?
1: हाँ, हम कर रहे हैं।
0: कौन कौन से पशु हैं?
1: हमारे पास 2 भैंसे हैं और एक भैंस दूध दे रही है, एक गाभिन है।
0: तो पशुपालन से तो फायदा बहुत सारे हैं।
1: और फायदा साहब, हम तो जो है अपने जो है खेतों में दादा डालते हैं देसी खाद।
0: अच्छा, तो देसी खाद तो खेतन के लिए एक तरीका से कहें कि बहुत बढ़िया रहती है,
1: और ना ज्यादा रोगी लगता है ना कोई बीमारी लगती है।
0: और खेती में जो है जो हमारी भूमि है जान बनी रहती है,
1: जान बनी।
0: अच्छा, पहले लोग हरी खाद हो तो लौट देते टाइम पर आए,
1: हरी खाद लौट देते,
0: पटसन लोबिया वगैरह
1: वो भी लौट देते थे। पहले अक्सर जो है इसी को ज्यादा लौटते थे, ढांचा बोया और उन्हें बस पलट दिया।
0: लेकिन अब ऐसा ना कर रहे हैं, क्या बात है?
1: अब किसान मान लो किसान की जो है उल्टी बात होती जा रही है, यानी कि पहले जब सारे लोग करते थे तो सारे लोग करते थे, अब कोई लोग नहीं करता है तो कहते हैं तो कोई नहीं करता है।
0: तो हमें अगर अच्छी फसल लेने है, अपनी भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने, तो हमें तो करने पड़ेगा ना,
1: हमें करने पड़ेगा।
0: हमें सबसे का मतलब हम अपने खेती देख रहे हैं तो हमें करना चाहिए, या कोई और कारण है?
1: कारण कुछ नहीं है।
0: अच्छा,
1: किसान को आप जानते हो, किसान की तो यही चाल होती है कि जब सारे किसान करेंगे वही काम किसान करेगा।
0: तो अब जैसे आप पशुपाल रहे, पप्पू भैया तो पशुपाल ही ना रहे हैं, जी क्यों ना पाल रहे हैं फिर?
1: उनके सामने मजबूरी है कुछ।
0: पहले हम देखते हमारे किसान भैया खूब तादाद में पशु पालते, काफी पशु होते, लेकिन आज पशु कम पाल रहे हैं, कहीं ना कहीं चारागाह भी कम होगा और जो हमारे जोते हैं वो भी लगभग छोटी हो जा रही है, और कुछ लोग पशु पालना ना चाह रहे हैं। यारे कौन करे, दूध मोल लेके तो खानो पसंद है।
1: नया योबा जितना भी है ये नहीं पालना चाह रहा।
0: तो जो हम बात हमारी चल रही है सहफसली खेती की, तो जैसे आपने बताया कि गन्ना में लेटा कर ले, तो और कौन कौन सी फसलें पप्पू भाई करी जा सकती हैं?
2: हमें गन्ना में जो है भिंडी है और जो है खरबूजा है, तरबूजा चाहे जी लगा दो।

0: खीरा है
1: हाँ
0: ये लगा
1: हाँ
0: दूँ, बहुत बढ़िया होती है खेती, गन्ना भी हो जाता है।
1: तो ये कहीं से कोई, जैसे कोई और किसान कर रहे हैं तो वहाँ जैसे देखने जाने पड़ता है कि भाई, अरे उनने जैसे आप बता रहे हैं कि एक हमारे जो पड़ोसी किसान हैं उनने अपने खेत में तरबूजा
0: हाँ
1: खरबूजा
0: तरबूजा
1: लगाओ,
0: लगाया
1: और
0: था।
1: बता रहे हैं कि आप बड़ी अच्छी उनको उपज मिली बाकी।
0: हाँ बढ़िया उपज मिली, गन्ना भी अच्छा हुआ और तरबूजा भी बढ़िया उसमें।
1: कुछ लोग सेवाली भी तो लगाते हैं,
0: हाँ सेवाली भी लगा लेते।
1: सेवाली से भी अच्छा फायदा हो जाता है।
0: सेवाली भी हो जाती है, गन्ना भी हो जाता है।
1: अच्छा, जैसे माने सेवाली किसी किसान भैया ने लगाई और सेवाली में लग गई सूढ़ी और गन्ना सही है, तो ऐसे में क्या करने पड़ा है फिर
0: उसकी जो है स्प्रे करना पड़ती है उसमें,
1: सेवाली पे,
0: सिवाली पे
1: बाकी प्रभाव करना पर तो कोई पड़ा है ना।
0: गन्ना पर नहीं पड़ता,
1: अच्छा, और पानी अगर हमने लगाओ तो सेवाली और गन्ना दोनों को मिल
0: दोनों को लग
1: जाएगी,
0: रहा
1: तो
0: हो।
1: इस तरीके से जो है डबल मुनाफा प्राप्त हो जाता है।
0: हाँ
1: अच्छा, पहले जो है हमारे किसान साथी अपने खेत में उड़द है, मूंग है, ऐसी फसलें भी करते,
0: हाँ ऐसी जो कर लेते थे,
1: अब ना कर रहे हैं।
0: अब जैसे कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, अब भी कर रहे हैं ऐसी बात नहीं, अब भी कर रहे हैं,
1: कम कर रहे हैं।
0: कम कर रहे हैं।
1: अच्छा, लेकिन जहाँ से जो है हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़िया बनी रहती। अच्छा, पहले पप्पू भाई खेत खाली रहते।
0: हाँ, आप जो है मूंग बह देते हैं, गेहूं काट के तुनता जो है मूंग बह देते हैं,
1: हाँ
0: बह जाती है जब तक धान लगता है तब तक।
1: अच्छा,
0: हाँ, फिर मशीन से जो है खंड जगह
1: किसी समय खाली नहीं मिलेगा आपको, खेत खाली नहीं छोड़ना है क्यों, और फसल
0: ना
1: चक्र भी बहुत कम अपना रहे हैं हमारे किसान साथी, तो कुल मिला के जो है सहफसली खेती करने से है फायदा।
0: फायदा
1: हाँ,
0: है जी, फायदा है,
1: फायदा, क्योंकि एक फसल की जो लागत है वो आपको हम समझते हैं कि बिल्कुल बच जाती होगी।
0: हाँ एक की लागत में दो दो फसलें हो रही हैं।
1: मिर्च के संग में हमने तो सूरजमुखी लगी भी देखी है,
0: हाँ
1: होती है सूरजमुखी की जो है फसल ऊपर निकल जाती है,
0: हाँ, नीचे
1: मिर्च
0: नीचे
1: जो
0: रह
1: है
0: जाते हैं,
1: नीचे रह जाती
0: नीचे रह
1: है।
0: जाती है।
1: तो आप कौन कौन सी फसलें करते हैं सह फसली रूप में?
0: जी जो है जामे जो है भिंडी जो है लगा देते हैं गन्ना में, और पहले लाई बह देते हैं, बाद में जो है भिंडी गाड़ देते हैं, सह फसली इससे खेती कही जाती है। हाँ, तीन फसलें हो जाती हैं एक बार में।
1: तो खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन करना भी बहुत
0: बहुत
1: जरूरी है,
0: जरूरी
1: क्योंकि
0: है,
1: जो
0: बहुत
1: कहते हैं कि
0: जरूरी,
1: खेती के बिना जो हमारे पशु अधूरे हैं और पशुओं के बिना हमारी जो है
0: खेती
1: खेती
0: अधूरी है,
1: अधूरी है,
0: खेती
1: क्योंकि कुछ
0: अधूरी
1: काम
0: है।
1: ऐसे होते हैं जो पशुओं से हम अपने खेतों में कराए लेते हैं, बाकी जैसे जो दुधारू पशु हैं वे हमारे दूध देते हैं जिनसे हम दही है मट्ठा है घी है ये सब बना के अपने खा पीते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं।
0: स्वस्थ रखते हैं,
1: गर्मी काफी तेज पड़ रही है और ऐसी गर्मी में हमें काम भी करने पड़ रहा है, भाई काम तो करना ही है, खेती
0: काम
1: बाड़ी
0: तो भाई
1: काम है, तो
0: करना
1: सब
0: पड़ेगा
1: लाग
0: भाई।
1: लिपट के जो अपने करते हैं, तो पप्पू भाई का
0: हाँ,
1: ध्यान रख रहे हो ऐसी गर्मी में काम में?
0: अबे इसमें इस गर्मी में जो है गन्ना खोदते हैं और होने पे ये गर्मी में चले जाते हैं खोद खाद के। हाँ,
1: कुछ अंगोछा अंगोछा सर पर बांध ले
0: सर
1: तो
0: पर जो
1: ना।
0: है अंगोछा बांध के जाते हैं, पानी संग लेके जाते हैं, थोड़ी दूर पर खेत पड़ता है। हाँ,
1: अच्छा, पानी वाली बात कही कि पानी संग लेके जाते हैं, हमने देखी पानी ले जाकर रखो तो गर्म पड़ जाता है पानी।
0: गर्म पड़ जाता है, पेड़े के नीचे सराही में रख देते हैं, फिर गर्म पड़ जाता, थोड़ा बहुत पड़ जाता, वही पी लेते हैं।
1: आपका ध्यान रख रहे हो भैया,
0: गर्मी में साहब इतना ध्यान रख रहे हैं कि सुबह से बढ़ते जाते हैं और 8:30 बजे घर आए,
1: क्योंकि गर्मी तेज है,
0: गर्मी
1: फिर होता दोपहर से, तो
0: उधर उधर से 4 बजे निकलते हैं घर से और 1-2 घंटे बस।
1: उधर शाम को तो अपने थोड़ा ठंडो मौसम हो जाता है, थोड़ा अबेर सबेर हो जाता है, उनको दिक्कत ना आए,
0: कोई दिक्कत
1: लेकिन चूंकि
0: नहीं।
1: यहाँ पशु पाल रहे हो तो पशुओं को देखभाल करने आए के,
0: हाँ
1: या घर पर जो अपने परिवार के लोग हैं जो माताएं बहनें हैं वो भी सानी उनी कर देती हैं।
0: हाँ घर पे जैसे अपना कोई काम हो तो वो कर देती हैं,
1: जैसे
0: ऐसा
1: खेत
0: भी
1: से
0: है।
1: अवेयर हो गई तो अपने
0: हाँ
1: देखी कि अपने थोड़े बहुत बालकों को लगा कहीं कुट्टी उट्टी काट ली, इस तरीके से अपने
0: चारा जो है काट लाए, खान दिया उन्हें, बस बच्चों ने कर दिया काम।
1: और अपने आए के अपने कसी रखी, नहाए धोए, और फिर अच्छा जो कार्यक्रम हमारे आकाशवाणी के रेडियो पे जो जाते हैं उनको भी सुनते हैं आप?
0: हाँ उनको सुनते हाँ,
1: हैं।
0: उनको सुनते हैं भाई। हाँ,
1: कौन कौन से कार्यक्रम आप सुनते हैं?
0: ये बरेली हेलो फरमाइश जो है जो सुनते हैं,
1: और सूर्यचंद जी आप?
0: हाँ हम भी जी सुनते हैं,
1: तो बढ़िया लगता है कार्यक्रम
0: हाँ
1: आपको?
0: बढ़िया, खूब बढ़िया लगता है, खूब हाँ,
1: बढ़िया
0: बहुत
1: लगता
0: बढ़िया लगता है।
1: मनोरंजन भी होता है खूब अपने,
0: हाँ
1: जैसे गन्ना खोद का है हारे थके हैं,
0: हाँ
1: थोड़ा
0: हारे
1: अपने
0: थके
1: गीत संगीत
0: हैं।
1: देखो, तो कहते हैं गीत संगीत से थकान दूर हो जाती है, तो
0: हाँ
1: थोड़ी है अपने नहा ले और बाकी बात खाना खाने बैठे हैं तो कोई ढोला आ रहा हो या कुछ और में गीत
0: हाँ
1: बज रहा हो तो अपने सुन के अपने मनोरंजन हो जाता है,
0: हाँ
1: तो बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिला के हम तो ये कहेंगे कि जो हमारे किसान साथी हैं जो खेती बाड़ी कर रहे हैं उसके साथ साथ में सह फसली खेती अगर करें तो वे अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं और सह फसली खेती करके अपनी आमदनी को और अधिक बढ़ा सकते हैं, अपने परिवार को विकास अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और बहुत सारे जो प्रयास हैं जो आपने बताए हैं कि इस तरीके से हमारे किसान साथी जैसे गन्ना में खरबूजा तरबूजा इनको करके कर सकते हैं, आप
0: हाँ
1: बता
0: कर
1: रहे हो गन्ना
0: लेते
1: में
0: हैं,
1: लाई लाइटा भी आप बो लेते
0: हाँ
1: हैं, कुछ लोग सिवाली भी करते हैं,
0: शिवाली
1: तो
0: करते
1: इन
0: हैं
1: फसलों
0: बिल्कुल।
1: करके जो है हमारे किसान साथी अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, अच्छी पैदावार लेके और तरक्की कर सकते हैं। सुरेश चंद जी और पप्पू भाई, आप कार्यक्रम में आए और आपने बड़े ही विस्तार से हमारे सुनने वाले सभी साथियों को ये महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे

0: थे कृषि पाठशाला। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30।
0: सौ 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक आयतन एवं खेती किसानी मीडियम वेव के मीटर पर। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलार पैनल लगवा ले, सोलार पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम महाभियान का किया आगाज, कहा पौधरोपण और जल संरक्षण कर जनता भी निभाए जिम्मेदारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में बायोयुग ग्रीन कमांड 2026 का किया शुभारंभ, कहा वायु प्लास्टिक का इस्तेमाल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में है बड़ा कदम। बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहाताल प्रदेश का 13वां रामसर स्थल घोषित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपलब्धि पर जताई खुशी। और वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक का आज हुआ समापन, अंतिम दिन ब्रिक्स सदस्य देशों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को मजबूत बनाने पर दिया बल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बृहद पौधरोपण किया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम महाअभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 35 करोड़ पौधरोपण लक्ष्य के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम पौधरोपण महाअभियान 2026 के लोगों का भी अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक अभियान नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचें और पेड़ लगाकर प्रकृति का संरक्षण करने का संकल्प लें।
1: 5 संकल्प हम सबको इस अवसर पर लेने होंगे। एक, हर नागरिक एक पेड़ मां के नाम पर अवश्य लगाएगा, कम से कम एक पेड़, यह हर नागरिक का दायित्व है। दूसरा, पेड़ लगाना ही नहीं उसकी सुरक्षा का दायित्व भी लेना है, हर एक ओर से उसे बचाना है। तीसरा, जल संरक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बनाना। चौथा संकल्प होना चाहिए, सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह रोके, उससे भी हमें पर्यावरण को होने वाले नुकसान के साथ हमें वो करना पड़ेगा। और अंतिम जो संकल्प है वह प्रकृति के अनुकूल जीवन शैली को अपनाना।
0: कार्यक्रम में विश्व बैंक के सहयोग से 2000

0: 741 करोड़ रुपए की लागत वाली उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंध परियोजना का भी शुभारंभ किया गया। साथ ही श्रावस्ती स्थित गुलेरा केन नाला को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री की मौजूदगी में विश्व बैंक और प्रदेश सरकार के बीच एमओयू का हस्तांतरण हुआ। इससे पहले मुख्यमंत्री ने लखनऊ की कुकरेल रेंज में पौधरोपण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महर्षि चरक औषधि वन की भी स्थापना की। यहां उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को सम्मानित भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे। दौरे के पहले दिन उन्होंने बायोयुग ग्रीन कमांड 2026 का शुभारंभ किया। ये पहल पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायोप्लास्टिक को बढ़ावा देने के लिए की गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में गन्ने के मूल्य में अच्छी बढ़ोतरी की गई है और बायो इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गन्ना आधारित बायोप्लास्टिक के इस्तेमाल से न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण होगा बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम होगा।
1: जब हम गन्ने से बायो प्लास्टिक बनाएंगे तो हमारी निर्भरता विदेशों पर कम होगी और हम धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनेंगे। साथियों, पीएलए दुनिया के सबसे सस्ते बायो प्लास्टिक में से एक है और जब यह डिस्पोज होगा तो यह कचरा नहीं खाद बनेगा, फर्टिलाइजर, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाएगा, यानी कि हर तरीके से फायदा ही फायदा, कहीं से कोई नुकसान नहीं।
0: बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुराहाताल को देश का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की इस उपलब्धि पर खुशी जताई है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि भारत ने पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण और आर्द्र भूमि सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। श्री योगी ने कहा कि ये उपलब्धि विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुराहाताल प्रदेश का 13वां रामसर साइट है। लखनऊ में विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने सुराहाताल के रामसर साइट बनने का प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बलरामपुर में 294 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश की पहचान निवेश और सुरक्षा के माहौल के लिए हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आज हर जनपद के समग्र विकास के लिए काम कर रही है।
2: यूपी में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना थके डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य कर रही है। अन्नदाता किसानों के चेहरे पे खुशहाली ला रही है। बहन और बेटियों के स्वावलंबन के लिए कार्य कर रही है। व्यापारी को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है। बेहतरीन कनेक्टिविटी के माध्यम से आज हर जनपद विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा है।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। वाराणसी में आयोजित ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक का आज समापन हो गया। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को और मजबूत बनाने पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब समेत 11 देशों ने हिस्सा लिया। संस्कृति मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव अमिता प्रसाद सरभाई ने बताया कि आज बैठक में भारत की मूल्यवान धरोहरों को वापस लाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा, विकास और संस्कृति के समन्वय के साथ आगे बढ़ने को लेकर भी चर्चा की गई।
3: हमेशा यही कोशिश रही है सरकार की और स्पेशली संस्कृति मंत्रालय की जो हमारे जो भी स्टोलन आर्टिफैक्ट्स हैं या जो स्मगल करके ले गए जाए गए या उसके पहले कॉलोनियल टाइम्स में

0: जाए गए उनको कैसे वापस लाया जाए, क्योंकि वो हमारी धरोहर, तो उसी के ऊपर चर्चा हुई है और कैसे डेवलपमेंट और कल्चर साथ साथ हो, विरोधाभास ना हो उसमें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर आज से विशेष अभियान की शुरुआत हो गई है। अभियान के तहत प्रदेश में भी आज से 21 जून तक जनपदों के प्रभारी मंत्री और जनप्रतिनिधि समाज के प्रबुद्ध वर्ग के साथ संवाद स्थापित करेंगे, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि चौपालों का आयोजन कर जन समस्याओं का निस्तारण करेंगे। इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में वृक्षारोपण कर समेकित जन कल्याण और जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है।
2: भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार ने 5 जून से 21 जून के बीच में कार्यक्रम निर्धारित किया है। आज एक पेड़ माँ के नाम, तो आज यही कहूंगा 12 वर्ष नहीं, इसी तरह 2047 जो उनका सपना है कि 2047 में हमारा विश्व में देश हमारा बहुत आगे रहे, पूरी दुनिया को दिशा दे और आगे बढ़े और गरीबों की सेवा करते रहे।
1: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ में अकादमी सम्मान समारोह में वर्ष 2021 से 24 तक के लिए चयनित कलाकारों को सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित इस समारोह में 51 विशिष्ट कलाकारों को संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कलाओं के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए ये सम्मान प्रदान किए गए। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जनपदों में आंधी बारिश का सिलसिला जारी रहा। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया है, साथ ही पूर्वी जनपदों में तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम महाअभियान का किया आगाज, कहा पौधरोपण और जल संरक्षण कर जनता भी निभाए जिम्मेदारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में बायोयुग ग्रीन कमांड 2026 का किया शुभारंभ, कहा बायो प्लास्टिक का इस्तेमाल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में है बड़ा कदम। बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुराहताल प्रदेश का 13वां रामसर स्थल घोषित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपलब्धि पर जताई खुशी। और वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक का आज हुआ समापन, अंतिम दिन ब्रिक्स सदस्य देशों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को मजबूत बनाने पर दिया बल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
4: आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। आइए सुनते हैं रेडियो हेल्पलाइन। आज का विषय है गुर्दे की पथरी व पेशाब संबंधी समस्याएं और उनका आधुनिक इलाज, शंकाएं व समाधान। विशेषज्ञ हैं यूरोलॉजिस्ट एवं एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज कुमार अग्रवाल।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक
6: नीरज लाइफ केयर एंड स्टोन सेंटर, दीनदयालपुरम, एकता नगर रोड, बरेली।
7: पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में गुर्दे की पथरी, मूत्र रोग और निसंतान दंपतियों के संपूर्ण इलाज का एकमात्र स्थान
6: नीरज लाइफ केयर एंड स्टोन सेंटर, दीनदयालपुरम, एकता नगर रोड, बरेली।
7: अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बरेली शहर का एक ऐसा अस्पताल जहां उपलब्ध है
8: मर्दाना कमजोरी,
7: महिलाओं के मूत्र रोगों,
8: गुर्दे की पथरी,
6: गदूद और बच्चों की पेशाब संबंधी समस्याओं के समाधान बहुत कम खर्च में,
8: उच्च कोटि की विदेशी मशीनों से सुसज्जित,
6: यूरोलॉजिस्ट एवं एंड्रोलॉजिस्ट लिथोट्रिप्सी विशेषज्ञ द्वारा संचालित
8: नीरज लाइफ केयर एंड स्टोन सेंटर, दीनदयालपुरम, एकता नगर रोड, बरेली।
7: हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9837057929। हमारा टेलीफोन नंबर है 0581253-1234।
9: रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मुकेश कुमार पांडे का नमस्कार।

0: और मेरे साथ आज स्टूडियो में एक बार फिर मौजूद हैं बरेली के वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट एवं एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज कुमार अग्रवाल जी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: सारे श्रोताओं को मेरा भी नमस्कार।
0: डॉक्टर साहब नमस्कार के साथ ही आज बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो हम आपसे करने जा रहे हैं, क्योंकि हर बार आप बताते हैं कि भाई गुर्दे में अगर पथरी है तो उसका ऑपरेशन कराना जरूरी है, और ऑपरेशन भी कई तरीकों से करा जाता है। अब तो बहुत एडवांसमेंट हो गया, कई आधुनिक तरीके आ गए हैं, लेकिन आज कुछ अलग ही बात हम आपसे करना चाह रहे हैं।
1: अच्छा बताइए,
0: अगर आपकी अनुमति हो तो।
1: जी बताइए
0: डॉक्टर साहब, आज कुछ ऐसा तरीका बताइए जबकि गुर्दे में पथरी हो और उसका ऑपरेशन ही न करना पड़े, ऐसे ही ठीक हो जाए, क्या ऐसी भी कुछ संभावना है, कुछ ऐसा मेडिकल साइंस में है संभव?
1: आज आपने बीच का प्रश्न पूछा। पहले एक तरफ हम बताते आए हैं कि गुर्दे की पथरी ना बने
0: जी,
1: जिस तरह से उसको जो है आपको ये परेशानी ही ना हो
0: जी, जी।
1: फिर अगर बन रही है तो किस तरह से आधुनिक विधि से हम उसको लेजर से किरणों द्वारा भी इलाज कर सकते हैं
0: जी, जी।
1: तो ये जो बीच वाला जो इश्यू है कि जी बनी है
0: जी
1: और उसका इलाज भी जो है वो बिना ऑपरेशन के या लेजर टेक्निक से किया जाए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है
0: जी।
1: इसमें एक चीज ध्यान रखनी होगी कि कौन सी पथरियां जो हैं
0: जी
1: वो इस लिस्ट में आती हैं जिसका इलाज जो है
0: बिना
1: ऑपरेशन के हो सकता है।
0: अच्छा।
1: कुछ ऐसी पथरियां हैं जो साइज के ऊपर हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि पेशाब की नली जो है 3 से 4 mm की होती है।
0: बिल्कुल।
1: इससे छोटी पथरी होगी
0: जी
1: तो उसको हम दवाइयों से या किसी भी विधि से उसको उसके रास्ते से निकाल सकते हैं।
0: अच्छा।
1: लेकिन अगर वो साइज उससे बड़ा हो गया तो उसमें जो है वो ऑपरेशन या उसको छोटा करना जरूरी हो जाता है
0: जी, जी।
1: तो इसमें मरीज को या पेशेंट को ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जी उसको सिम्टम हो या ना हो अपना बराबर चेकअप कराता रहे
0: जी,
1: और अगर उसको पथरी हो रही है तो उसको जल्दी से जल्दी इलाज के लिए आ जाए।
0: चेकअप कराने से फायदा डॉक्टर साहब जैसा आप बता रहे हैं ये होगा कि पता लग जाएगा कितनी बड़ी पथरी है, उसका साइज कितना है
1: जी,
0: और अगर शुरुआती अवस्था में ही पता लग जाता है तो निश्चित ही है कि फिर जो आप बता रहे हैं
1: वो हो सकता है,
0: वो संभव।
1: क्योंकि ऐसा है कि 3 से 4 mm से पथरी या उससे छोटी पथरी हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि उसमें कोई परेशानी नहीं होती
0: जी।
1: तो मरीज वो कहता है मेरे को तो कोई परेशानी नहीं है, मैं किस चीज का इलाज कराऊं या क्यों अल्ट्रासाउंड या एक्सरे करवाऊं। तो इसमें वो जब बड़ी हो जाती है और परेशान करती है तब तक वो इतनी बड़ी हो जाती है कि जी उसका दवाइयों से या किसी भी नॉन ऑपरेटिव विधि से निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें छोटी पथरियां का इलाज दवाइयों से हो सकता है
0: जी।
1: और मैं तो कहूंगा कि 70 से 80% पथरियां जो हैं वो इस विधि से निकाली जा सकती हैं।
0: अच्छा।
1: अगर जो है वो टाइम से आ जाएं
0: जी, यानी समय पर पहचान
1: जी
0: और समय से इलाज की शुरुआत अगर हो जाती है तो ये बिल्कुल संभव है कि बिना किसी ऑपरेशन के गुर्दे की पथरी निकाली जा सकती है।
1: और आप ये समझिए कि पहले जब हम आए थे
0: जी
1: तो ऑपरेशन की क्या उसमें तो बड़े बड़े ऑपरेशन और चीरे वाले ऑपरेशन करने पड़ते थे। पथरी का साइज है 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm।
0: डॉक्टर साहब आपने तो पत्थर निकाले हैं लोगों के जिस्म से और उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके नाम है
1: जी। वो 85 mm की पथरी एक बच्चे
0: 85 mm
1: जी 85 mm की पथरी एक बच्चे में निकाल, तो उस समय इतनी बड़ी थी जो जागरूकता कम थी।
0: बिल्कुल।
1: इसके बाद में धीरे धीरे अब पथरी का साइज कम होना शुरू हो गया है जब वो हमारे पास आते हैं, नहीं तो पेशेंट जो है जब डॉक्टर के पास में आता है तो साइज आमतौर पे बड़े ही होते थे
0: जी, जी।
1: अब वो धीरे धीरे कम होने लगे हैं। तो अब हम ये मान के चलते हैं कि 50-50% दवाइयों से हो सकती है, 50% की ऑपरेशन की या ऐसी आधुनिकतम विधि से निकालने की जरूरत पड़ती है
0: जी। आम धारणा डॉक्टर साहब ये है कि अगर गुर्दे में किसी को पथरी है तो या तो उसे दर्द होगा
1: जी
0: या पेशाब में कोई समस्या होगी
1: जी,
0: लेकिन एक तरफ आप ये भी बताते हैं कि ये जरूरी नहीं है हर बार गुर्दे में दर्द हो, गुर्दे की साइड में और पेशाब में समस्या हो
1: जी,
0: पथरी फिर भी हो सकती है।
1: बिल्कुल हो सकती है।
0: वो कैसे डॉक्टर साहब?
1: देखिए ऐसा है कि गुर्दे के 3 हिस्से होते हैं
0: जी,
1: उन हिस्सों में छोटी सी पथरी बैठी हुई है और कोई रुकावट नहीं कर रही है तो कोई परेशानी नहीं होती है, पेशाब का जो फ्लो होता है आराम से होता रहता है और कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर वो हट के पेशाब की या गुर्दे की नली में आके फंस जाए
0: जी,
1: तो जैसे होता है ना कि नाली चोट हो जाती है तो पानी आसपास फैल जाता है, अगर कम परेशानी है ये छोटी है तो उसके साइड से निकल जाता है, लेकिन जब पथरी रास्ते में फंस जाती है तो फिर परेशानी शुरू हो जाती है।
0: अच्छा, यहाँ ये बात भी करना बहुत जरूरी है, मुझे लगता है कि चूंकि पेशाब तंत्र की जो संरचना है उसके बारे में आपने हमारे श्रोताओं को कई बार बताया है कि पुरुषों की अलग होती है, महिलाओं की अलग होती है, बच्चों की अलग होती है, तो जो पथरी का साइज आप बता

0: अरे जो बिना ऑपरेशन के निकाली जा सकती है
1: जी
0: महिलाओं में क्या साइज है मिनिमम जो कि बिना ऑपरेशन के निकल सकती है पथरी?
1: देखिए ऐसा है कि साइज तो बराबर का ही होता है महिलाओं में और पुरुषों में
0: जी।
1: परेशानी क्या होती है कि जी कुछ हार्मोन्स की वजह से
0: जी
1: और कुछ अन्य वजह से परेशानी आती है। अब जैसे कि अगर जो है फीमेल जो है प्रेग्नेंट है तो बच्चे का सर है या शरीर का हिस्सा है वो पेशाब की नली पे दबाव रखता है, तो ऐसे प्रेगनेंसी में जो है वो छोटी पथरियों में से भी जो है महिलाओं को परेशानी होने लगती है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जी पथरी और उस समय जो है हम कोई ना तो एच से कर पाते हैं
0: जी
1: ना हम उसका कोई आधुनिकतम ऑपरेशन रखते हैं
0: जी।
1: तो उसमें महिलाओं को जब तक कि जी बच्चा हो नहीं जाता तब तक जो है वो परेशानी झेलनी पड़ती है, कई बार तो अबॉर्शन भी करवाना पड़ता है या टर्मिनेट करवानी पड़ती है
0: जी।
1: तो इसलिए ये बहुत ध्यान रखना है कि जी जो है वो हर पुरुष और महिलाओं के साथ में परेशानी का सबब अलग अलग हो सकता है
0: जी
1: और इसका इलाज जरूरी है।
0: बिल्कुल महिलाओं की बात आपने की है और बड़ा महत्वपूर्ण बात आपने बताई डॉक्टर साहब कि पथरी की वजह से कई बार एबॉर्शन तक कराना पड़ जाता है
1: जी।
0: तो अगर कोई महिला कोई युगल जो है वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं
1: जी
0: तो अल्ट्रासाउंड पहले कराने की जो बात है वो
1: जी
0: काफी हद तक इस मामले में भी मदद कर सकती
1: हाँ,
0: है।
1: इसमें मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जी अल्ट्रासाउंड दो तरह की शरीर में पथरी होती है, एक गुर्दे में होती है और एक गॉलब्लैडर में पथरी होती
0: जी
1: है
0: जी।
1: और दोनों की ही पथरी अगर जो है वो अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे हुए तो ऑपरेशन बहुत ही लिमिटेड उससे हो सकता है, हमें दवाई से ही कंट्रोल करना पड़ता है और वो फिर अगर शुरुआत में ही हो गया तो वो अगले 6 महीने 7 महीने तक जो है वो फिर महिला को जो है ये दर्द या इन्फेक्शन वगैरह बर्दाश्त करना पड़ता है, एंटीबायोटिक खानी पड़ती है
0: जी जी
1: तो ये परेशानी का सबब बन सकता है
0: जी। इसलिए पहले एक जांच हो जाए
1: तो उससे काफी ज्यादा चीजें जो
0: मदद
1: है
0: मिल
1: वो मदद मिल जाती है
0: जी। बच्चों के विषय में डॉक्टर साहब हम जरूर आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आपने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है बच्चे के शरीर से पत्थर निकाला था तो बच्चों में जो पथरी की संभावनाएं हैं या जो बच्चों में रिपोर्ट्स आ रही हैं जो मरीज आ रहे हैं वो किस शिद्दत से आ रहे हैं और वहां क्यों बढ़ रही है पथरी?
1: कि पहले जब हम शुरुआत में हम प्रैक्टिस में आए थे या देखते थे या पुराने भी रिकॉर्ड देखते थे
0: जी
1: 15-16-20 साल से पहले जो है पथरियां बहुत ही कम होती
0: बहुत
1: थी।
0: कम होती थी जी
1: मतलब होती ही नहीं थी मान लीजिए कि
0: जी
1: यार बच्चे में है तो हम और परेशानी सोचते थे पथरी सोचते ही नहीं थे
0: जी।
1: अब आपको आश्चर्य हो रहा कि 2-2 साल के बच्चे 3 साल के बच्चे 5 साल के बच्चे 8 साल के तो 10 साल के तो बहुत ही ज्यादा पथरियों से इतने ज्यादा ग्रसित हो रहे हैं कि जी एक वो अलग विभाव भी बन जा रहा है। उसमें सबसे ज्यादा योगदान जो है वो हमारा खान पान
0: की वजह से ये पथरियां
1: 90% जो है वो फास्ट फूड के शौकीन होंगे
0: जी,
1: कोल्ड ड्रिंक पी रहे होंगे, एक्टिविटी उनकी कोई होगी नहीं, एक्सरसाइज शारीरिक एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है और इससे गुर्दे की डैमेज वही बढ़ती हुई स्टेज है जिस समय की गुर्दा डेवलप हो रहा होता है और परेशानी का सबब बनता है। बच्चों के लिए मैं स्पेशली कहना चाहूंगा कि जी उनका खान पान माँ बाप को भी रखना है बच्चों को भी ध्यान देना है और उसमें जो है गुर्दे की पथरी की जो इंसिडेंस है या जो संभावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है,
0: बहुत ज्यादा बढ़ गई है और बढ़ने की वजह आपने बताई दी डॉक्टर साहब। अब चूंकि बात हम कर रहे हैं गुर्दे की पथरी का इलाज वो भी बिना ऑपरेशन के, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हमारे श्रोता भी ये सोचते हैं कि जब भी डॉक्टर साहब आते हैं, डॉक्टर साहब तो सर्जन है तो सर्जरी की बात बताएंगे
1: जी,
0: लेकिन आज तो विषय बिल्कुल अलग है डॉक्टर साहब, सर्जरी की बात ही नहीं करनी है आज, हमें बताना है अपने श्रोताओं को कि गुर्दे की पथरी बिना ऑपरेशन के कैसे निकाली जा सकती है। आपने बताया कि इसका साइज बहुत महत्वपूर्ण है, इसके अलावा जो पथरी बनने के या ये कहें जिस चीज से पथरी बनती है जो सॉल्ट होता है क्या उसका भी कोई महत्व होता है?
1: वो तो है, इसमें जैसे भी मैंने बताया बच्चों में जो है वो फास्ट फूड कोल्ड ड्रिंक की वजह से बन रही है
0: जी,
1: बाकी और चीजें किसी को यूरिक एसिड से पथरियां बन रही हैं,
0: अच्छा
1: किसी को कैल्शियम ऑक्सलेट से बढ़ रही हैं
0: जी।
1: तो खान पान तो जो है वो संतुलित और जिस तरह से खाना है वो सबके लिए है
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जो पथरियां बिना ऑपरेशन के निकालनी है तो उसके लिए साइज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज जल्दी से पता चले, कई बार छोटी पथरी गुर्दे के उस हिस्से में पहुंची हुई होती है जहां कोई परेशानी नहीं होती है, रुकावट नहीं होती है
0: जी, जी।
1: वहां पे हम उसको किरणों द्वारा तोड़ सकते हैं या फिर हम एक्सरसाइज से बता सकते हैं कि जी वो पेशाब के रास्ते निकल जाए।
0: एक्सरसाइज से भी डॉक्टर साहब ऐसा संभव है क्या?
1: एक्सरसाइज का महत्वपूर्ण ये होता है कि जो चीज बैठी हुई है उसको हिलाना, जैसे कि आप चावल फटकते हैं या चीजें आप सफाई के लिए, तो वो अपनी जगह से हिलती है।
0: अच्छा।
1: और उसके बाद में वो पानी पिया और बाकी जो है कुछ मेडिसिन दी तो उससे निकल सकता।

0: अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे। लोग कहते हैं कि हमें कोई समस्या तो है नहीं
1: जी,
0: न कभी दर्द होता है और न हमें कोई और समस्या है, तो हम क्यों जांच कराएं, जबकि जांच कराने पे कुछ और ही तस्वीर सामने आती है। तो ऐसी भी क्या परिस्थिति होती है, गुर्दे में पत्थरी पड़ी रहती है और लोगों को पता भी नहीं होता?
1: बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके दोनों गुर्दों में बड़ी बड़ी पथरियां हो जाती
0: दोनों
1: हैं,
0: गुर्दों में
1: दोनों गुर्दे फेल हो जाते हैं।
0: जी,
1: और जब मेरे को पहली बार दिखाया, हमने टेस्ट करवाया, हमने कहा तुम्हारे दोनों गुर्दे फेल हैं और तुम्हें दोनों गुर्दे निकलवा के और उसके बाद में ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा।
0: गुर्दे फेल हो जाते हैं
1: जी, बिल्कुल खत्म, उसमें कहीं कुछ नहीं हो सकता। तब वो कहते हैं डॉक्टर साहब, हम तो पहली बार अस्पताल में या किसी डॉक्टर को दिखाने आए हैं, इससे पहले हमें कोई समस्या ही नहीं थी और उनके दोनों गुर्दे फेल हैं और उसका कोई इलाज नहीं, ऑपरेशन से भी वो पथरी निकालने के बाद वो गुर्दे काम नहीं करेंगे।
0: अच्छा, फेल होने की जो बात है डॉक्टर साहब, गुर्दा फेल किस परिस्थिति को, एक किस स्थिति को कहेंगे, क्या होता है शरीर में ऐसा?
1: उसमें जब ऐसे ब्लड यूरिया सीरम क्रिएटिनिन जो है, दो चीजें होती हैं, वो जब बढ़ जाती हैं,
0: अच्छा,
1: और इतनी बढ़ जाती हैं कि जी वो सफाई या डायलिसिस के बिना नहीं निकाली जा सकती, तो हम कहते हैं कि पेशेंट का या मरीज का गुर्दा फेल हो गया।
0: और ये दोनों गुर्दों के साथ एक साथ हो सकता है?
1: डायलिसिस की जरूरत तभी पड़ती है जब दोनों गुर्दे फेल एक साथ हो जाए।
0: जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अगर शुरुआत में ही हम जागरूक हो जाएं और एक छोटी सी जांच करा के ये पता कर लें कहीं गुर्दे में पथरी तो नहीं है, तो शायद इससे निजात मिल जाए। डॉक्टर साहब, आप ये भी बताते हैं कि जो हमारा ये क्षेत्र है, रुहेलखंड का क्षेत्र, ये स्टोन बेल्ट है।
1: जी, जी।
0: इसके पीछे क्या वजह है, स्टोन बेल्ट क्यों कहा जाता है, सबसे ज्यादा पथरी यही क्यों होती है लोगों को?
1: देखिए, पथरी का जो आराम कारण जो है, वो जो मैं कई बार बता चुका हूँ, उसमें ये है कि पानी की मात्रा भी कम है और कुछ उसमें जो है
0: कंटेंट
1: जो है या उसमें जो अंदर डिजॉल्व्ड है उससे होती है। दूसरी चीज, 9 से 10 महीने यहाँ पे भीषण गर्मी होती
0: जी,
1: है
0: जी।
1: फिर जो आदमी बाहर काम पे जाता है तो हर समय पानी की बोतल लेके तो चलता नहीं है, तो उसमें क्या है कि जी पता चला सुबह 8 बजे निकला, उसने अगला पानी जो है वो शाम के 4-5 बजे पिया
0: जी।
1: उससे जो है वो जैसे किसी ग्लास में आपने चीनी डाली, शुरू में तो घुल जाती है
0: जी,
1: लेकिन आप डालते चले जाएं तो फिर वो बैठना शुरू हो जाती है। उसी तरह से जो है अंदर के जो शरीर की गंदगी है, पानी की कमी होने से वो बैठना शुरू हो जाती है गुर्दे के अंदर
0: जी,
1: और वही फिर पथरी का आकार ले लेती है।
0: जी जी, डॉक्टर साहब, यहाँ ये भी जान लेना बहुत जरूरी है, चूंकि बहुत से लोग हैं हमारे यहाँ जिनको पथरी की समस्या हो चुकी है और वो लेजर से या फिर किरणों से किसी तरह इलाज करा चुके हैं, उन्हें दोबारा पथरी बनने की संभावना भी बढ़ जाती है, ऐसा आपने बताया। क्या उन लोगों में जो दोबारा पथरियां बनती हैं, उनको बिना ऑपरेशन के निकाला जा सकता है?
1: पथरी ये नहीं देखती कि मैं पहली बार बनी, दूसरी बार बनी या तीसरी बार
0: जी,
1: वो तो साइज के ऊपर है। दूसरी बार बनी और वो जागरूक है, उसने शुरुआत में ही पकड़ लिया उसका, तो इलाज हो सकता है उसका।
0: जी, क्या बताना चाहेंगे उन श्रोताओं को जो पथरी की समस्या से पहले जूझ चुके हैं, उन्हें क्या खास बातें ध्यान रखनी होगी?
1: देखिए, उनके लिए तो हम सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर उनकी पथरी निकली है और उनके पास है तो उसकी स्टोन एनालिसिस जरूर कराएं कि किस चीज से बनी है। दूसरी चीज जो सामान्य सभी के लिए है कि खानपान सही रखें, पानी ज्यादा पिएं और इस तरह की चीजें ना खाएं जिससे जो है पथरी की बनने की संभावना ज्यादा है
0: जी। और उसके अलावा
1: रेगुलर अपना चेकअप करवा,
0: बिल्कुल एक जांच जो आपने बताई है अल्ट्रासाउंड की, वो बहुत मददगार हो सकती है। यूरिक एसिड की पथरी की बात आपने की डॉक्टर साहब, और यूरिक एसिड के जो मरीज हैं वो कहते हैं कि हमारी उंगलियों में दर्द होता है
1: जी।
0: जो यूरिक एसिड को इसी तरह पहचाना जाता है, उसके बाद लोग जांच कराते हैं, तो पथरी से क्या लेना देना है यूरिक एसिड का?
1: यूरिक एसिड की पथरी जो है वो पेशाब के रास्ते ही यूरिक एसिड निकलता है
0: जी,
1: और जब वो उसका मात्रा शरीर में ज्यादा हो जाती है तो ज्यादा निकलता है गुर्दे में से
0: जी,
1: वही जो है वो जाके स्टोन बन जाता है। और यूरिक एसिड का स्टोन है बिल्कुल ही भिन्न तरीके का स्टोन होता है, वो एक्सरे में भी नहीं आता है।
0: अच्छा,
1: कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन और जो कैल्शियम वाले स्टोन है वो एक्सरे करवाइए तो आ जाते हैं
0: जी,
1: यूरिक एसिड वाले नहीं आते हैं, वो सिर्फ अल्ट्रासाउंड से ही पहचाने जा सकते हैं या फिर उनका सीटी स्कैन किया जाता है
0: जी। अच्छा डॉक्टर साहब, परहेज की जहां तक बात है, तो परहेज में ये कहा जाता है कि साहब जिन फलों में बीज होते हैं या जिन सब्जियों में बीज होते हैं उनको नहीं खाना चाहिए, उनके खाने से पथरी बन सकती है, क्या ये बात सही है?
1: देखिए, उसमें इन सब में जो है कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा ज्यादा होती है
0: जी।
1: कुछ लोग जो है वो भर भर के खाते हैं तब तो ये चीज होती है उन पे लागू, लेकिन जो आम मात्रा में आपने एक सेब ले लिया या आपने जो है एक यूरिक एसिड संयुक्त चीज आपने ले ली, उससे इतनी विशेष परेशानी नहीं होती, पर प्रिवेंशन तो करना ही होता है। कुछ लोग की जो है परिवार में आप देखते होंगे कि सभी लोग बैगन की सब्जी खा रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, उसमें से एक या दो को

0: हो रही है पथरी
1: जी जी
0: तो उसकी बॉडी की शरीर की जो संरचना है, पानी की कमी है और वातावरण जो जैसा है उसकी वजह से भी असर पड़ता है, तो इसमें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अच्छा अब ये और बता दीजिएगा डॉक्टर साहब, जो पहले पथरी से पीड़ित रह चुके हैं, जिनको पथरी हुई है,
0: जी
1: उनको संभावना पथरी बनने की जो होती है वो
0: जी
1: कितने प्रतिशत होती है और क्यों होती है? क्योंकि लोगों का कहना यह, हमने पथरी का इलाज कराया, डॉक्टर साहब ने किरणों से तोड़ दी हमारी पथरी, निकाल भी दी, लेकिन फिर भी दोबारा पथरी बन गई।
0: पहले साल में 60-70% हो जाएगी फिर
1: पहले
0: से।
1: साल में?
0: हाँ पहले साल।
1: अच्छा
0: आगे के सालों में थोड़ी सी कम हो जाती है, तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि पहले साल में ही जो है वो पथरी सबसे ज्यादा फिर से बन जाती है।
1: जी एक श्रोता लाइन पर है डॉक्टर साहब, इनकी बात सुन लेते हैं, क्या
0: जी
1: जानना चाहते हैं।
0: जी
1: रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना परिचय बताइए।
2: हेलो,
1: अपना परिचय बताइए और गुर्दे की पथरी के संबंध में कोई प्रश्न हो तो डॉक्टर साहब मौजूद हैं स्टूडियो में, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।
2: रमेश बोले किशनपुर से।
1: जी रमेश जी बताइए, क्या समस्या है आपकी?
2: समस्या ये है कि जैसे हमारी पत्नी के ना गुर्दे गुर्दे में तो पथरी ना है, उसमें है पित्ते में
1: जी। अच्छा
2: तो हाँ, पित्ते की पथरी और इसकी पथरी जो है दोनों क्या निकल जाती है? पित्ते की पथरी,
0: पित्त की थैली की पथरी जो है ना, वो पित्त की थैली और पथरी दोनों एक साथ निकलती हैं। इसका दवाई से इलाज नहीं होता है, उसका ऑपरेशन करके।
2: अच्छा, जो गुर्दे की जो पथरी है तो क्या बिना ऑपरेशन के निकल सकती है?
0: हाँ, गुर्दे की पथरी जो है वो बिना ऑपरेशन के आधुनिकतम तकनीक लेजर है किरणों द्वारा निकाली जा सकती है।
2: अच्छा, तो फिर दोबारा ना होगी?
0: दोबारा फिर से बनने की संभावना उसी गुर्दे में जो है 60-70% है।
2: अच्छा, तो मतलब ये इलाज क्या महंगा है ज्यादा?
0: नहीं, वो तो पथरी का साइज और बाकी चीजें जांचों पे पता चलता है कि क्या है, तो दिखाना पड़ता है कि कितनी बड़ी पथरी है, कहाँ पे है और कैसी है और कौन सी विधि से निकाली जाएगी।
2: हमारे भतीजे से जो है वो 12 mm की पथरी बताई है गुर्दे में, पथरी है उसको अलग अलग से।
0: हाँ, 12 mm की पथरी तो बड़ी है, वो दवाइयों से तो नहीं निकलेगी, उसको किसी आधुनिकतम टेक्निक से जो है वो पहले तोड़ के निकाला जाएगा, वो एक्सरे और अल्ट्रासाउंड देखने के बाद पता चलेगा।
2: तो मतलब चीरा हो रहा नहीं, आराम से हो जाएगा?
0: हाँ, 12 mm की पथरी के लिए आमतौर पे चीरा नहीं लगता है।
2: हाँ, तो मतलब ऑपरेशन का जो डर लगता है ना लोगों को, डर ना हो।
0: हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ
1: जी,
0: उसमें कई बार उस पथरी के में भर्ती भी नहीं किया जाता है, 2 या 3 घंटे में ऑपरेशन से छुट्टी हो जाती है।
2: घर भी जल्दी आ जाता मरीज?
0: हाँ जी हाँ।
2: चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: धन्यवाद रमेश जी आपका, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया डॉक्टर साहब। चूंकि आज का हमारा विषय गुर्दे की पथरी का है, लेकिन इन्होंने पित्ते की थैली की पथरी की बात की, आपने इन्हें जवाब भी दिया इनके प्रश्न का। डॉक्टर साहब ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं, लेकिन भ्रम रहता है लोगों में कि गुर्दे में अगर पथरी है उसका इलाज आप कर रहे हैं तो पित्ते की थैली की पथरी का भी इलाज आप कर देंगे।
0: नहीं, दोनों की टेक्निक अलग है।
1: अलग
0: जैसे अच्छा। मैंने बताया गुर्दे की पथरी जो है वो दवाइयों से, किरणों से और गुर्दे को बचा के की जा सकती है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन पित्त की थैली की पथरी के लिए जो है वो ऑपरेशन ही एकमात्र विकल्प है, जिसमें पित्त की थैली और पथरी दोनों ही निकाली जाती है।
1: दोनों ही निकाल दिए जाते हैं सर, तो ये तो बिल्कुल अलग बात हुई
0: जी।
1: तो हमारे श्रोताओं को ये भी पता होना चाहिए कि किस तरह की समस्या है, उसका समाधान किसके माध्यम से होगा।
0: बिल्कुल, उसमें फिर जो एक बार पिक्की थैली निकल जाती है तो फिर से बनने की संभावना शून्य हो जाती है।
1: जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी के गुर्दे में पथरी है, कोई समस्या नहीं हो रही और वो कहता है जब समस्या नहीं तो मैं इसका इलाज क्यों करूं
0: जी,
1: आगे चल के क्या हो सकता है ऐसे लोगों
0: जी? जो ऐसे लोगों का जो है अगर रुकावट है तो गुर्दा डैमेज हो सकता है, एक ही गुर्दे में है तो वो डैमेज हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, पेशाब के रास्ते खून आ सकता है, दोनों गुर्दों में है और बड़ी पथरियां हैं तो दोनों गुर्दे फेल हो सकते हैं, डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है
1: जी, यानी जान जोखिम में जा सकती
0: बिल्कुल
1: है, हम ये कह सकते हैं। डॉक्टर साहब क्या कुछ ऐसी दवाइयां आप निश्चित ही होंगी जिनको देकर के आप सही करते हैं
0: जी?
1: मेरा इशारा उन तरीकों की तरफ है जो लोग आजमाते हैं
0: जी,
1: कहीं से पानी में मंत्र पढ़वा लिया तो कोई किसी पेड़ के पत्ते खा लिए, ये प्रयास लोग करते हैं और उससे ये विश्वास कर लेते हैं कि गुर्दे की पथरी खत्म हो जाएगी
0: जी,
1: क्या ये संभव है?
0: देखिए, ऐसी छोटी पथरियां स्वतः ही निकल जाती हैं आपने कुछ भी नहीं किया तो
1: जी,
0: उसी में अगर आपको पता है और आपने कहा कि जी हमने ये खाना खाया और ये पानी पिया और ऐसी चीजें की या ये दवाइयां ली, तो उससे नॉर्मल पथरियां जैसी जो निकलती हैं वो तो निकल ही जाएंगी
1: जी।
0: इसका साइंटिफिक कोई भी वो नहीं है जिसकी बेसिस पे हम ये कह सकते हैं इस चीज से हो
1: जी,
0: साइंटिफिक बेसिस का मतलब होता है कि जो शोध करके ये चीज होती है कि जिसको नहीं है उसके बाद में उसको

0: देख के और साइंटिफिकली प्रूव किया जाए,
1: जी
0: तो वही दवाइयाँ और वही चीज़ें जो हैं वो कारगर होती हैं और लेनी चाहिए, जिस तरह की शोध हो चुका हो
1: बिल्कुल
0: और उस पे जो है हमें पता है कि हाँ जी इससे इतना फायदा होने वाला है।
1: जी,
0: बाकी प्रयास करने से आप अपने ही शरीर से खेल रहे हैं।
1: बिल्कुल। अच्छा, बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। अच्छा, पानी पीने की बात आप बार बार कहते हैं हमारे श्रोताओं से कि पथरी का जो सबसे बेहतर और सबसे पहला इलाज है वो पानी पीना है, पानी पीना चाहिए।
0: जी
1: कितना पानी पीना चाहिए, कैसा पानी पीना चाहिए, आप कई बार बता भी चुके हैं,
0: जी
1: लेकिन
0: जी
1: एक बार हम चाहेंगे फिर हमारे श्रोताओं को बताइए कि पानी पीने का सही तरीका क्या है।
0: देखिए, सही तरीका ये है कि साफ पानी हो,
1: जी
0: निथार के जो है उबाल के, या तो उसके बाद में उसको जो है वो छान के उसके बाद में पीना चाहिए, या आजकल जो आरओ वाटर है
1: जी
0: वो पीना, वो हो जिसमें कि सोल्यूट्स अंदर जो है वो टीडीएस जो है वो सही मात्रा में हो। दूसरा, ये कितना पानी पीना चाहिए, हम ये कहते हैं जितनी देर आप जगे हुए हैं उसमें हर घंटे पे 1 गिलास पानी पी लीजिए।
1: जी
0: तो ये हो गया कि अगर आप 15 घंटे दिन में जगे हुए हैं तो आमतौर पे 15 गिलास पानी पी लीजिए,
1: जी
0: वो चाहे वो 2-3 घंटे के अंतर पे हो, लेकिन ये ऐसा नहीं हो कि सुबह 6 बजे पी लिया और रात में 10 बजे पी लिया,
1: जी
0: दिन में पानी नहीं पिया, तो वो काम इतना नहीं करता है।
1: लोग करते ये हैं डॉक्टर साहब कि सुबह उठे और 4-5 गिलास इकट्ठा पानी पी लिया और ये
0: जी
1: मान लेते हैं कि अब तो ये दोपहर तक के लिए हो गया, अब दोपहर के बाद में देखा जाएगा, तो ये
0: जी
1: गलत
0: तो
1: प्रैक्टिस है।
0: उसमें क्या है कि जी उसी समय ही या उसके 1-1.5 घंटे में वो जितना पानी पिया है वो
1: जी
0: पेशाब के रास्ते निकल जाएगा, फिर बाकी दिन के समय में आपके जो है शरीर में पानी नहीं है।
1: जी सही तरीका यही है कि हर घंटे पे 1 गिलास पानी औसत रूप से
0: वो
1: पीते
0: जाना
1: रहें।
0: चाहिए।
1: जी, और क्या खास बात बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को, चूंकि रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम में आज जो मुद्दा हमने आपसे तय किया है वो ये है कि गुर्दे की पथरी का इलाज, वो भी बिना ऑपरेशन के,
0: जी
1: क्या खास बात बताएं?
0: देखिए, इसमें तो आज हमने बहुत चीजें ऐसी की हैं जो मरीज या पेशेंट खुद करें,
1: जी
0: इसमें डॉक्टर का जो है वो इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं
1: बिल्कुल
0: है
1: बिल्कुल
0: इसमें। चाहे वो ये हो कि जी वो पथरी ना बने,
1: जी
0: चाहे वो पानी पीने का, चाहे वो खान पान का, चाहे वो टेस्ट का, चाहे वो सही तरीके से इलाज का, तो इसमें डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये तो जो है वो लोगों को आपस में ही करने के और
1: जन
0: अपने
1: जागरूकता
0: शरीर,
1: के लिए ये
0: जी
1: बात
0: जी
1: कही गई है।
0: हाँ,
1: जी
0: इसमें ये नहीं है कि जी आज पथरी का कैसे इलाज हो,
1: बिल्कुल
0: ठीक है, उसको ना बने या बने तो शुरुआती उसमें कैसे इलाज हो सकता है।
1: जी, कुछ पेशाब संबंधी और भी समस्याएं जुड़ी होती हैं सर, अगर
0: जी
1: किसी को पथरी हो जाती है,
0: जी
1: पथरी अपनी जगह है, गुर्दे में नुकसान करती है,
0: जी
1: उसके अलावा पेशाब का तो लंबा रास्ता होता है, इसमें
0: जी
1: और क्या क्या समस्याएं पथरी की वजह से होती हैं, ये भी हम चाहते हैं हमारे श्रोता जान लें।
0: ये बहुत बड़ी पथरी हो, बहुत लंबे टाइम तक फैली हो, तो वो अंदर की संरचना को भी डैमेज करती हैं,
1: जी
0: तो कई बार उसमें खून आ सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों को कैंसर भी हो सकता है।
1: कैंसर तक हो जाता है।
0: जी, तो इसलिए ये जो है ये पथरियां जो है हर तरह की समस्या
1: की
0: की
1: वजह
0: सकती
1: बनती
0: है।
1: हैं।
0: जी
1: जी डॉक्टर साहब, जो एक बड़ी आधुनिक और जरूरी बात है, हम चूंकि बात भले ही बिना ऑपरेशन के कर रहे हैं पथरी के इलाज की, लेकिन फिर भी मेरे मन में ये बात आ रही है बार बार कि मैं आपसे उस विधि के बारे में एक बार जरूर बात कर लूं जिसमें बिना किसी चीरा, बिना किसी टाके के, बिना मरीज को छुए आप पथरी का इलाज करते हैं, विशेष तौर से गुर्दे की पथरियां, बड़ी बड़ी पथरियां निकाल देते हैं।
0: अभी जैसे अभी हमने श्रोता से बात की थी कि
1: जी
0: उनके साथ में 12 mm की पथरी थी, तो उसमें जो है वो हम कोई भी इलाज जो है उसमें किरणों द्वारा किया जाता है,
1: जी
0: एडमिट भी नहीं किया जाता मरीज को, 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर उसकी छुट्टी भी हो जाती है।
1: 3 से 4 घंटे में डॉक्टर साहब,
0: जी,
1: ये कैसे संभव है?
0: बाहर से ही हम किरणें उसको देते हैं,
1: जी
0: पथरी पे फोकस करते हैं, और सेमी रोबोटिक टाइप चीज होती है, जैसे कि जी उसमें बाहर से ही सब कुछ होता है,
1: जी
0: और उसके बाद में रेस देने के बाद में पेशाब के रास्ते ही जो है वो कण टूट के निकल जाते हैं,
1: यानी पथरी जो बड़ी पथरी है वो छोटे टुकड़ों में टूट
0: हो
1: जाती
0: जाती
1: है।
0: है, रेते जैसी हो जाती है, बालू जैसी,
1: जी
0: और उसके बाद में पेशाब के रास्ते निकल जाती है।
1: डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि 3-4 घंटे में ही मरीज घर चला जाता है, तो ये सब करने में कितना समय आपको लगता होगा, जो इस तरह का ऑपरेशन है जो किरणों के द्वारा आप बता रहे
0: उसमें
1: करते हैं?
0: 45 मिनट से 1 घंटा
1: अच्छा, और उसके 2 घंटे बाद मरीज को घर भेज
0: भेज
1: देते हैं।
0: देते हैं।
1: तो देखिए, आधुनिक चीजों का ये फायदा है और आज मेडिकल साइंस ने जो तरक्की की है उसके पीछे की जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो यही हैं कि कम समस्या तुरंत समाधान,
0: जी
1: और उससे भी बेहतर यह है श्रोताओं कि आपको अगर गुर्दे की पथरी से बचना है या अपने गुर्दों को बचाना है, मैं तो ये कहूंगा, तो आप जागरूक हो, समय पर इलाज कराएं और उससे पहले समय पर जांच कराएं,
0: बिल्कुल
1: तभी आप बिना ऑपरेशन के, मैं तो ये कहूंगा कि गुर्दे की पथरी का इलाज बिना खर्चे के कर सकते हैं।
0: जी, बिल्कुल।
1: जी डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे श्रोताओं को बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, विशेष तौर से गुर्दे की पथरी पेशाब संबंधी बीमारियों के

0: जो इलाज है उसके विषय में बताया, और आज बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि बिना ऑपरेशन के गुर्दे की पथरी ठीक की जा सकती है।
1: बिल्कुल जी,
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नमस्कार।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक
4: नीरज लाइफ केयर एंड स्टोन सेंटर, दीनदयालपुरम, एकता नगर रोड, बरेली।
5: पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में गुर्दे की पथरी, मूत्र रोग और निसंतान दंपतियों के संपूर्ण इलाज का एकमात्र स्थान
4: नीरज लाइफ केयर एंड स्टोन सेंटर।

0: नीरज लाइफ केयर एंड स्टोन सेंटर, दीनदयालपुरम, एकता नगर रोड, बरेली।
1: अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बरेली शहर का एक ऐसा अस्पताल जहां उपलब्ध है
2: मर्दाना कमजोरी,
1: महिलाओं के मूत्र रोगों,
2: गुर्दे की पथरी,
0: गदूद और बच्चों की पेशाब संबंधी समस्याओं के समाधान बहुत कम खर्च में,
2: उच्च कोटि की विदेशी मशीनों से सुसज्ज,
0: यूरोलॉजिस्ट एवं एंड्रोलॉजिस्ट लिथोट्रिप्सी विशेषज्ञ द्वारा संचालित
2: नीरज लाइफ केयर एंड स्टोन सेंटर, दीनदयालपुरम, एकता नगर रोड, बरेली।
1: हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9837057929। हमारा टेलीफोन नंबर है 0581253-1234।
3: रेडियो हेल्पलाइन, अभी आपने सुना स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आधारित ये कार्यक्रम। आज का विषय था गुर्दे की पथरी व पेशाब संबंधी समस्याएं और उनका आधुनिक इलाज, शंकाएं एवं समाधान। विशेषज्ञ थे यूरोलॉजिस्ट एवं एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज कुमार अग्रवाल। 100.4 FM पे आकाशवाणी का केंद्र है बरेली। अब आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में विविध भार क्षमा कीजिएगा, अब आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम लखनऊ केंद्र से। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है रात्रि के 8 और इसी के साथ अब प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष भेंटवार्ता जलवायु के लिए वर्तमान समय। प्रोफेसर राम लखन सिंह से डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी की भेंटवार्ता लीजिए, प्रस्तुत है।
1: की रचना में हम देखते हैं कि प्रकृति विविध स्वरूप हमें दिखाती है, रंग बदलती है और इस रंग में समाहित होते हैं हमारे जीवन दर्शन। जब हम अपने जीवन दर्शन की बात करते हैं तो निश्चय ही हमारे जो जीवन के रंग हैं वह भी समाहित हो जाते हैं। जलवायु के लिए आपने देखा कि समय समय पर तमाम तरह के कार्य किए गए हैं, सामाजिक तौर पर, सरकारी तौर पर, और सांस्कृतिक विरासत जो हमारी रही है उसमें भी हमें काफी कुछ देखने को मिलता है। विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है पूरे विश्व में। विश्व पर्यावरण दिवस की क्या अहमियत है, क्योंकि हमारा जो जीवन है, हमारा तात्पर्य जो मानव सभ्यता है, उतना ही नहीं बल्कि संपूर्ण जीव जगत में यह किस तरह से प्रभावित करता है और क्यों आवश्यकता पड़ गई, जानेंगे समझेंगे। डॉक्टर प्रोफेसर राम लखन सिंह साहब, विश्व प्रसिद्ध आप वैज्ञानिक हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में आपने काफी कुछ कार्य किया हुआ है। डॉक्टर साहब, तो आपका स्टूडियो में पुनः स्वागत करते हुए जानना समझना चाहेंगे कि पर्यावरण दिवस को हम लोग मनाते क्यों हैं?
2: ये बहुत ही मूल प्रश्न है आपने जो किया है। और वास्तव में पर्यावरण दिवस एक बार 1972 में स्टॉकहोम में कॉन्फ्रेंस हुई विश्व पर्यावरण पर
1: जी,
2: और उसमें ये विचार आया कि हम लोग पर्यावरण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और कोई एक ऐसा दिवस निश्चित करें जिस दिन हम पूरे विश्व में एक साथ मनाएं। और लगभग 122 देशों ने उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए और उस समय से हम लोग 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ये जो विश्व पर्यावरण दिवस है इस वर्ष, वो एक्चुअली पूरे विश्व में अलग अलग देशों में मनाया जाता है, तो इस वर्ष ये अजरबैजान के बाकू शहर में मनाया जा रहा है। और उसके पीछे कारण यह है कि अजरबैजान पर्यावरण संरक्षण में काफी उत्कृष्ट भूमिका निभा रहा है। तो इस प्रकार से हम इस 5 जून को पूरे विश्व में एक साथ पर्यावरण दिवस मनाएंगे और उसके बारे में लोगों को जागरूक करेंगे।
1: जब किसी देश विशेष की बात करते हैं, जैसा कि आपने अजरबैजान का नाम लिया, तो सबकी अपनी संस्कृति है, सभ्यता है, और साथ ही साथ उस क्षेत्र में किए गए जो आधुनिक कार्य हैं वह कितने स्तर के हैं यह भी काफी कुछ निर्भर करता होगा। इंडस्ट्रीज तमाम हैं तो प्रदूषण भी उसी तरीके से बढ़ जाता है। तो क्या यह थीम देश स्तर पर भी सोचने की आवश्यकता है या विश्व परिदृश्य में ही सोच करके पर्यावरण दिवस को मनाने का?
2: वास्तव में अभी जो अजरबैजान में हम लोगों ने थीम ली है

0: विश्व पर्यावरण दिवस के लिए, वो है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट। इसका मतलब है कि प्रकृति से हम प्रेरणा लेकर के और पर्यावरण के लिए हम लोग कार्य करें। हम लोग अवेयरनेस या जानकारी देने या सतर्क करने की बजाय अब हम लोगों का जो फोकस है इस पर्यावरण दिवस पर ये है स्केलेबल, मतलब जिस चीज को हम लोग मेजर कर पाए, हम लोग नाप पाए उस दृष्टिकोण से कि रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे जो ऊर्जा जो है ग्रीन एनर्जी जिसको हम कहते
1: जी
0: हैं, जैसे सूर्य की ऊर्जा है, उस प्रकार से, या किस प्रकार से हम शहरों का विकास करें, किस प्रकार से हम कूड़े को मैनेज करें, किस प्रकार से पानी को मैनेज करें, हवा के प्रदूषण को किस प्रकार से मैनेज करें, तो उसको जिन पैरामीटर्स के द्वारा, जिन मानकों के द्वारा नाप सकते हैं, अब वो नाप करके और किस प्रकार से वर्ष प्रतिवर्ष हम उनमें प्रगति करते हैं।
1: दूसरा पहलू इससे जुड़ा यह है कि जो हमारी जलवायु है, गर्मी जाड़ा बरसात, मोटे तौर पर हम यही समझते हैं, यह परिवर्तन जो होता है वह पर्यावरणीय स्थिति के आधार पर ही होता है। तो क्या हम यह भी समझें कि जलवायु जो हमारी अलग तरह का व्यवहार कर रही है वह भी इसी कारण से अगर है, तो फिर क्या कुछ इस दृष्टि में आप नजर डाल सकते हैं?
0: वास्तव में हम लोगों को आज की दृष्टि में जिस प्रकार से चीजें बदल रही हैं, जिस प्रकार से टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिस प्रकार से AQI, आप जानते होंगे
1: जी
0: कि शहरों के प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हो रही है, तो उसमें हम तीन प्रकार से काम कर सकते हैं। एक तो ग्लोबल स्तर पर, विश्व स्तर पर हम लोग काम कर सकते हैं, दूसरे देश के स्तर पर हम लोग काम कर सकते हैं, और तीसरे जो है वो लोकल, जो हम स्थानीय स्तर पर हम काम कर सकते हैं, और चौथा अगर आयाम इसमें और जोड़ दें, इंडिविजुअल स्तर पर हम एज ए ह्यूमन बीइंग, हम अकेले या हम अपने परिवार के साथ क्या कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लोगों को स्ट्रेटजी इसके लिए एक बनानी होगी, योजना बनानी होगी।
1: ये तो घरेलू या फिर सामाजिक स्तर पर या देश स्तर पर कहें कि यह बात होती है, लेकिन हम जानते ही हैं कि 1/3 हिस्सा जो है पृथ्वी पर वो जल का है।
0: पानी है जी,
1: तो समुद्री जो इलाके हैं, समुद्र ही है पूरा का ये फैला हुआ 1/3 क्षेत्र में, तो वहां तो हमारी चलेगी नहीं, वो तो सामुद्रिक क्षेत्र है। जितना कुछ समुद्र से हमें मिलता है और हम समुद्र को दे सकने की स्थिति में होते हैं, क्या वहां भी गैप बढ़ता चला जा रहा है?
0: हाँ जरूर बढ़ता चला जा रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए, जब कार्बन बहुत अधिक मात्रा में आ जाता है वातावरण में, तो वो तापमान को बढ़ाने लगता है। एल नीनो जो प्रभाव है उसका एक बार हम जिक्र जरूर करेंगे।
1: जी
0: एल नीनो प्रभाव जो है, जैसा आपने कहा कि जो समुद्र है हमारा 1/3 जो हिस्सा है हमारी पृथ्वी का, वो एल नीनो इफेक्ट जो है वो समुद्र में जो पैसिफिक सागर है अधिकतर, वहां पर जो टेम्परेचर बढ़ता है, वहां पर गर्मी होती है, और उस गर्मी की वजह से उसका प्रभाव इधर एशिया पर और ऑस्ट्रेलिया पर इतना काफी पड़ता है। और आपने देखा होगा कि एल नीनो का ही प्रभाव है कि अभी हम लोगों के यहाँ जो बरसात इधर जाड़े के समय में होनी चाहिए थी, वो बरसात नहीं हो
1: नहीं
0: पाई,
1: होती।
0: इसकी वजह से जो तापमान है बहुत बढ़ गया। और आपने देखा कि कई सारे हमारे देश के कई हिस्सों में 47 और 48 डिग्री टेम्परेचर चला गया है, यहां तक कि अपने लखनऊ में भी टेम्परेचर 44 डिग्री के आसपास तक
1: बिल्कुल
0: जा चुका
1: बिल्कुल
0: है, या थोड़ा सा उससे ज्यादा जा चुका है। तो वो एलनीनो जो प्रभाव है वो हमारे पूरे वातावरण को प्रभावित करता है, और अभी जो अनुमान है लगभग नवंबर तक ये एलनीनो प्रभाव पड़ने वाला है, और इसकी वजह से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बरसात में भी लगभग लगभग 20% कमी आने वाली है, और उसकी वजह से फसलों पर बहुत प्रभाव पड़ने वाला है, जीव जंतुओं पर पड़ने वाला है, मनुष्यों पर पड़ने वाला है, और पूरे के पूरे वातावरण और पर्यावरण पर वो प्रभाव पड़ने वाला है जो तापमान बढ़ने की वजह से। तो उस प्रभाव को हम किस तरह से कम कर सकते हैं, उस प्रभाव से हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, इन चीजों पे हम लोगों को आज की समय में और अधिक ध्यान देना होगा।
1: बिल्कुल, वर्तमान समय में काफी कुछ ध्यान देने की आवश्यकता है इस तरफ, जो पहलू इससे जुड़ा हुआ है, निपटा कैसे जाए?
0: वास्तव में हम लोगों को एक ओवरऑल, मतलब पूरे आमूल चूल, या इसको कह सकते हैं कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए। जैसे इसके लिए हमें जो कृषि करते हैं उसमें ऐसी फसलें बोएं जो तापमान को सह सकें, या ऐसी फसलें बोएं जिसमें पानी कम हो, घरेलू स्तर पर या म्युनिसिपल स्तर पर भी हम लोग पानी को बचाने का प्रयास कर सकते हैं। हमारे अपने देश में जैसे सिक्किम है, वो पहला ऑर्गेनिक जो है
1: फार्मिंग
0: वो
1: करता है।
0: स्टेट है, और वहां पर केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड पूरी तरह से बैन है। इसी प्रकार

0: केरल में काफी फॉरेस्ट है, 79% फॉरेस्ट कवर है। इसी तरह से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में फॉरेस्ट कवर, मिजोरम में 85% फॉरेस्ट कवर है, इसी तरह से अरुणाचल में 79% फॉरेस्ट कवर है। तो इन चीजों को देखते हुए हम लोगों को सोलर एनर्जी अधिक प्रयोग करना चाहिए, अपने रोजमर्रा की चीजों को हम लोगों को कम करना चाहिए। जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हम लोग कम से कम चीजों को प्रयोग करें, जैसे ऑयल के बारे में उनका ज्यादा वो है। तो इस प्रकार से हम अपने पुराने समय में जो हमारे वैदिक सभ्यता है उसमें जो कहा गया है कि कम से कम उसमें जो है आप गुजारा करिए और अधिक से अधिक बचाइए, उसको देश को दीजिए, जिससे कि सारे लोग सुखी हो सकें, सारे लोग संपन्न हो सकें।
1: डॉक्टर साहब, आपने आज के इस विश्व पर्यावरण दिवस पर महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष भेंटवार्ता, जलवायु के लिए वर्तमान समय। प्रोफेसर रामलखन सिंह से भेंट की डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी ने। और इसी के साथ ही आज का हिंदी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

घर आंगन में है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।

मीडियम वेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय है 8:10। आइए सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं अमृता नंदी के गाए गीत एवं भजन।

अभी आप सुन रहे थे अमृता नंदी के गाए गीत एवं भजन। श्रोताओं, इसी के साथ ही आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम आप यहीं समाप्त होता है।

0: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका? कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया? जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
1: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है 8:30 और इसी के साथ आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में आपको अब सुनवाने जा रहे हैं परदेश फिल्म का गीत। आवाजें हैं सोनू निगम, हेमा सरदेसाई और शंकर महादेवन की। गीत को लिखा आनंद बख्शी ने और धुन बनाई नदीम श्रवण ने।

अभी आप सुन रहे थे परदे इस फिल्म का गीत। आइए सुनते हैं ताल फिल्म का गीत। आवाजें हैं अनुराधा श्रीराम, सुजाता मोहन, सोनू निगम और ए आर रहमान की। गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के और संगीत ए आर रहमान का।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, समय होने को है रात के 8:45। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों, आज हमारे लिए विकास जितना जरूरी है उतना ही अहम है हमारे विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
0: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और

0: शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो

0: मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
2: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमेरिकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
2: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपने इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
3: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में

पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत

0: हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर कर्नाटक महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

इस समय रात्रि के ठीक 9 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके लिए। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। आइए सुनते हैं नौशाद साहब का संगीत, शकील बदायूनी के बोल, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें। फिल्म का नाम है कोहिनूर।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म काला बाजार से लिया है। गायक स्वर मोहम्मद रफी का है, गीत रचना शैलेंद्र की और संगीत SD बर्मन का है।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म का नाम है चौदहवीं का चांद और स्वर मोहम्मद रफी का, शब्दकार शकील बदायूनी हैं और संगीतकार रवि हैं।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर और मुकेश को सुनिए, फिल्म का नाम है बरखा। राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। फिल्म अनाड़ी का दो गाना सुनिए। स्वर लता मंगेशकर और मुकेश के, गीतकार हसरत जयपुरी हैं और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

लता मंगेशकर और मुकेश को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था अनाड़ी। और आइए अब सुनते हैं फिल्म जिद्दी का गीत, आवाज लता मंगेशकर की। इसे प्रेम धवन ने लिखा है और संगीत में ढाला है खेमचंद प्रकाश ने।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था जिद्दी। इसे प्रेम धवन ने लिखा था और धुन बनाई थी खेमचंद प्रकाश ने।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी, आशा भोसले, उषा मंगेशकर और हेमलता की आवाजें। फिल्म का नाम है जीने की राह। गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे हैं और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।

इस गाने के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आन मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। उस बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

सोनम कपूर, जिनका पूरा नाम है सोनम कपूर आहूजा, 9 जून 1985 को मुंबई में जन्मी बॉलीवुड के झकास हीरो अनिल कपूर की बेटी

0: My name is Lakhan, my name is Lakhan, sajno ka sajan, mera naam hai Lakhan.
1: तो चलिए सोनम कपूर की इस खूबसूरत जर्नी की शुरुआत करते हैं। उनकी डेब्यू फिल्म थी सांवरिया, जो आई साल 2007 में। संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में उनके साथ थे रणवीर कपूर। फिल्म ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल न किया हो, लेकिन सोनम की मासूमियत ने सबके दिलों में अपना घर कर लिया।
2: कम

इसके बाद सोनम ने दिल्ली सिक्स में काम किया, जहां मसक कली गाने ने तो जैसे हर गली मोहल्ले में धूम मचा दी थी। और इसी के साथ सोनम ने दिखा दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर की दुनिया में ही नहीं, बल्कि एक कामयाब अभिनेत्री का हुनर भी रखती हैं।

अब बात करते हैं साल 2010 की, जब आई उनकी एक बेहद स्टाइलिश फिल्म आयशा। इस फिल्म को सोनम ने खुद प्रोड्यूस किया और इस फिल्म ने उन्हें फैशन आइकन बना दिया।

इसके बाद उन्होंने रोमांटिक और अभिनय शैली के तमाम अलग अलग फन को बारीकी से पर्दे पर उतारा। ये फिल्में थीं आई हेट लव स्टोरीज, थैंक यू और मौसम।

वैसे अगर हम देखें तो सोनम कपूर की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म है रांझना। रांझना की जोया ने हमें रुलाया, हंसाया और दिखाया कि सोनम कपूर एक सीरियस कलाकार भी हैं। धनुष के साथ उनकी केमिस्ट्री ने फिल्म को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया। प्यार मोहब्बत और रोमांटिक कल्ट फिल्म में इस फिल्म का अपना एक अलग स्थान है।

आई राशि प्रोडक्शंस की फिल्म प्रेम रतन धन पायो। यहाँ सलमान खान के साथ सोनम ने स्क्रीन शेयर की। भव्यता, संगीत और पारिवारिक भावनाओं से भरपूर इस फिल्म में सोनम की सादगी ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया।

भाग मिल्खा भाग में सोनम कपूर ने बीरो का किरदार निभाया, मिल्खा सिंह की पहली प्रेमिका, जो उसकी युवा उम्र की मासूमियत और भावनात्मक संघर्षों का अहम हिस्सा बनती हैं। ये भूमिका भले ही स्क्रीन पर सीमित समय के लिए थी, लेकिन इसके महत्व को बिल्कुल भी कम आका नहीं जा सकता। सोनम ने इस फिल्म में अभिनय के लिए सिर्फ 11 रुपए की प्रतीकात्मक राशि ली, न कोई फीस, न कोई स्टारडम की मांग। उनका ये फैसला इस बात का प्रमाण है कि सोनम केवल एक कमर्शियल एक्टर नहीं, बल्कि एक संवेदनशील और जुनूनी कलाकार भी हैं, जो सिनेमा को उसके शुद्ध रूप में समझती और निभाती हैं। बीरो के किरदार में सोनम ने पंजाब की परंपराओं, संस्कृति और भावनाओं को बेहद सादगी और सच्चाई के साथ पर्दे पर उतारा। उनका अभिनय न केवल कहानी में गहराई जोड़ता है, बल्कि दर्शकों को ये महसूस भी कराता है कि अभिनय सिर्फ ग्लैमर नहीं, बल्कि समर्पण और संवेदना का भी नाम है। इस भूमिका के जरिए सोनम कपूर ने ये साबित किया कि जब कहानी दिल को छू जाए तो कलाकार अपनी सीमाओं से परे जाकर सिर्फ कला के लिए काम करता है, बिना किसी भव्यता की अपेक्षा के।

मैं मस्जिद क्यों जाता, मेरा यार खुदा है।

आई फिल्म संजू, जहां रणबीर कपूर के साथ उन्होंने निभाया रूबी का खूबसूरत किरदार। ये रोल भी छोटा था लेकिन फिल्म की इमोशनल गहराई को बढ़ाता है।

बाद फिल्म मिर्जा आई। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारत की वीर बेटी मिर्जा भनोट को दी गई एक सच्ची श्रद्धांजलि थी। सोनम ने इस किरदार को जिस संवेदना, साहस और सादगी के साथ निभाया, उसने दर्शकों के दिलों को छू लिया। उन्होंने मिर्जा की निडरता, मानवीय संवेदनाएं और बलिदान को इस तरह पर्दे पर उतारा कि वो किरदार अभिनय से कहीं आगे जाकर एक जीवंत अनुभव बन गया। इस फिल्म में सोनम ने पूरी तरह से साबित कर दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं है बल्कि एक गंभीर और समर्पित कलाकार भी हैं, जो सच्ची कहानियों को आत्मा से जी सकती हैं। मिर्जा के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, स्पेशल मेंशन सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और प्रशंसा मिली, जो इस बात का प्रमाण है कि सिनेमा में उनका स्थान सिर्फ एक स्टार के रूप में नहीं बल्कि एक सशक्त कलाकार के रूप में भी है।

अनुष्का जैसी संवेदनशील फिल्म के बाद सोनम कपूर ने वीरे दी वेडिंग जैसी मॉडर्न बोल्ड और फ्रेश कहानी के जरिए अपनी अभिनय रेंज का एक अलग ही रूप दर्शाया। इस फिल्म में उन्होंने एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला का किरदार निभाया जो आज की पीढ़ी की सोच और संघर्षों को ईमानदारी से सामने लाती है।

बाद 2018 में वो दिल्ली के उद्यमी आनंद आहूजा की शरीके हयात बनी, जो उनकी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। उनकी शादी भी उतनी ही सरल, खूबसूरत और रियल थी जितना उनका व्यक्तित्व। आज सोनम कपूर एक एक्ट्रेस के साथ साथ एक सोशल आइकन भी हैं। वो अक्सर महिलाओं के हक, फैशन और सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार रखती हैं। वो अब एक बेटी की माँ भी बनी हैं, जिसका नाम है वायु, और इस नए फेज में भी वो उतनी ही ग्रेसफुल लगती हैं, उतनी ही खूबसूरत लगती हैं।

0: कपूर एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो सामाजिक जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेती हैं। महिलाओं के मासिक धर्म से जुड़े टैबू हों, LGBTQ+ समुदाय की स्वीकार्यता या मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषय, सोनम हर बार खुलकर अपनी बात रखती हैं। उन्होंने पैडमैन और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे ये फिल्मों में ऐसे मुद्दों को उठाया जिन पर बॉलीवुड अक्सर चुप्पी साध लेता है।
1: फर्राटे वाला फैन, फर्राटे मारे मैन, उड़ जा।

अलावा सोनम जानवरों के अधिकारों की भी मुखर समर्थक हैं। वे पेटा की सदस्य रहीं और कई बार उन्होंने फर और चमड़े के उपयोग के खिलाफ अभियान भी चलाया। सोनम को पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर जैसे खिताब से भी नवाजा जा चुका है। उनके लिए सच्ची सुंदरता सिर्फ पहनावे में नहीं बल्कि संवेदनशीलता और करुणा में भी है। सोनम कपूर को उनके अभिनय और सामाजिक योगदान के लिए कई बार प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। फिल्म निर्जा में उनके दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में स्पेशल मेंशन मिला। साथ ही फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड, आईफा और जी सिने अवार्ड्स में भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब उन्होंने हासिल किया। उन्हें रांझणा, सांवरिया और प्रेम रतन धन पायू जैसी फिल्मों के लिए भी फिल्म फेयर में नामांकन मिला। फैशन और स्टाइल के क्षेत्र की जहां तक बात है उसमें भी वे लगातार मोस्ट स्टाइलिश वुमेन और फैशन आइकन ऑफ द ईयर जैसे अवार्ड्स जीतती रही हैं।

दोस्तों, ये थी सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सोनम कपूर के फिल्मी सफर की दास्तान। एक स्टाइलिश, स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग और संवेदनशील एक्ट्रेस। हम उम्मीद करते हैं कि सोनम आगे भी हमें ऐसे ही दिलचस्प किरदारों में दिखती रहेंगी।

0: तो ये था आज के फनकार कार्यक्रम, जो केंद्रित था सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सोनम कपूर पर। स्वर संगीता श्रीवास्तव का, शोध आलेख और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है रात्रि के 10 और इसी के साथ प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट से। सबसे पहले आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में मुकद्दर का सिकंदर, इस फिल्म का गीत।

अभी आप सुन रहे थे मुकद्दर का सिकंदर। इस फिल्म का गीत और इस गीत को गाया था लता मंगेशकर ने। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में दुश्मन फिल्म का गीत।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने सुना छोटी सी बात इस फिल्म का गीत। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अमर अकबर एंथोनी फिल्म का गीत, आवाजें मोहम्मद रफी, मुकेश किशोर कुमार और लता मंगेशकर।

अमर अकबर एंथोनी इस फिल्म का गीत अभी आपकी रेडियो सेट तक पहुंचा रहे थे मोहम्मद रफी, मुकेश, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। आइए सुनते हैं रविंद्र जैन को चितचोर फिल्म के

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
2: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाश।

0: फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
3: मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है रात के 10:30 और इसी के साथ प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित राजेंद्र प्रसन्ना का राग मारवा में बांसुरी वादन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे पंडित राजेंद्र प्रसन्ना का राग मारवा में बांसुरी वादन। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन

का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।